मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है. प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना. सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करते याद, कहे कबीर दादास की कौन सुने फरियाद.

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से

0: उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है, जाको मिलत नहीं कोई पारा, सकल जगत को आप रचावे सबका पालनहारा।

मनदाता मन लालची, मन राजा मन रंग, जो ये मन हरि सो मिले तो हरि मिले निशंक।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन के विचार।
1: राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का बहुआयामी व्यक्तित्व था। उन्होंने अपनी वाणी से भाषा, साहित्य, समाज, संस्कृति और जीवन के अनन्य विषयों पर सुविचारित चिंतन समय समय पर प्रस्तुत किया था। भाषा और साहित्य के संदर्भ में उनका कहना है कि हर मुल्क और हर सभ्यता का उसकी भाषा से उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना उसकी आब और हवा से। मुल्क की भाषा और साहित्य ही हर एक मुल्क की तरक्की के गवाह हैं। भाषा ही वो खुराक और वो हवा है जिस पर देश के हर एक बच्चे की विचार शक्ति परवरिश पाती है। टंडन जी ने बताया था कि हमें हीनता का वायुमंडल बनना नहीं चाहिए, बुद्धि और विवेक से काम लेना है। हमारी भाषा में मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती सबके शब्द प्रयुक्त होंगे और हमारी भाषा इन नए शब्दों से प्रौढ़ होती जाएगी और उसकी भाषा शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे हिंदी मंच पर कोई सांप्रदायिक भावना न हो, कोई भी ऐसी भावना पैदा न हो जिससे हमारी राष्ट्रभाषा के उत्थान में हानि पहुँचे। इस दृष्टि से हम ईसाई, यहूदी, मुसलमान, पारसी सब भाइयों का आदर करेंगे। टंडन जी की दृष्टि में जब कभी युग का परिवर्तन हुआ है, सजीव साहित्य के द्वारा ही हुआ है। सृष्टि के आदि से ये क्रम चला आया है, आज भी फिर वही काम आपके सिर पर है। ये कोई नवीन काम नहीं है, इतिहास इसका साक्षी है। अपने प्राचीन साहित्य की ओर दृष्टि डालिए तो आप देखेंगे कि एक ओर भगवान कृष्ण को हो उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, उनके जीवन के रहस्य को देखिए। युवा अवस्था से ही उन्होंने उस समय की प्रथाओं को दूर करने में कितना क्रांतिकारी काम किया था। बड़े होने पर उन्होंने गीता के आदेश और उपदेश द्वारा रण क्षेत्र की सूरत में, रण के सिद्धांतों में ही अमिट परिवर्तन कर दिया। अशोक के शासन में भी साहित्यिकों ने ही जाति के जीवन में परिवर्तन किया था। आपको भी आज अपने साहित्य से ऐसा ही काम लेना है। आजकल लेखक जो कुछ लिखते हैं उसमें उनका निज का हृदय बहुत कम रहता है। उनके लेख और हृदय में आज अंतर है। लेखक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। आजकल लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर लेख लिखना जानते हैं, गद्दी और मसनद लगाकर लिखते हैं, परंतु युग परिवर्तनकारी लेख इस प्रकार से नहीं लिखे जा सकते। वाल्मीकि, व्यास और कृष्ण ने इस प्रकार गद्दी मसनदों पर बैठकर अपने लेख नहीं लिखे थे। भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में अपना सबसे ऊंचा और गुह्य उपदेश दिया था। आज इस बात की आवश्यकता है कि लेखक गण मैदान में आवें, देश की दशा का अनुमान करें, जनता के साथ उनके कष्टों का स्वयं अनुभव करें, तब वे जो कुछ लिखेंगे उसका कुछ और ही प्रभाव पड़ेगा। लेखक लोग जब आप बीती कहेंगे तब वो कुछ और ही बात होगी। टंडन जी के विचार से वाणी की सार्थकता इसी में है कि वो आकाश में सीढ़ी बांधकर मनुष्य को उस स्थान पर चढ़ा दे जहां से वाणी का उद्भव हुआ है। यदि

0: प्राणी ने मनुष्य को लुभाकर नीचे कीच में घसीट कर डाल दिया तो उसका सौंदर्य कुलटा का सौंदर्य है, जो भोग लिप्सुओं के हृदय को क्षण भर के लिए भले ही लुभा ले किंतु वो उच्च पुरुषों के सामने आदर नहीं पाता। आप अपनी वाणी का ऊंचा आदर्श रखें। वो पवित्र कुल की पुत्री है, उसका श्रृंगार नैसर्गिक मालती और मल्लिका से ही कर उसका पूजन करें। सुनारों के भड़कीले आभूषणों को दूर ही रखें। भारतवर्ष के इस परिवर्तन काल में ऐसे उपासकों की आवश्यकता है जो अपनी वाणी से वास्तविक स्वतंत्रता का नाद देश में भर दें। नगर, ग्राम, जंगल और पहाड़ों से घृणित दुर्बलता और निवीर्यता को निकालकर महाशक्ति की मूर्ति जनता के हृदय में स्थापित कर उसके पवित्र पूजन के लिए नृत्य और गान करें। निस्सार और नीचे गिराने वाले रसों और उन्हीं के समान पोच संचारी भावों, विभावों और अनुभावों को छोड़ दिव्य नए रसों का प्रादुर्भाव कीजिए। उनके उपयुक्त संचारी भावों से उनको संचरित कीजिए, उनके उपयुक्त विभावों से उनका पोषण कीजिए और तब उनके परिणाम स्वरूप महत अनुभवों का दर्शन कर कृतार्थ होइए। इस साहित्य कानन में जो रिक्त स्थान है वहां इस समय ऐसे ही वीर प्रतिभा संपन्न आकाश मार्गगामी साहित्य निर्माताओं की आवश्यकता है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन के विचार। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर शिशिर कुमार से अरविंद कुमार उपाध्याय की बातचीत। विषय है दलहनी फसलों में शस्य क्रियाएं।
2: समय समय पर हमारे सभी अपने बीच में जानकार भैया हरे के खेती किसानी के विशेषज्ञ हरे भैया के बुलावा जाता है और उनसे कुछ नई चीज का जानकारी ली जाता है। तो आज दलहनी फसलन में कौन कौन शस्य क्रिया है, कैसे हमारे सभी अपन उपज बढ़िया कीन जाए, ये सब कर जानकारी देवे के खातिर डॉक्टर शिशिर कुमार जी आए बाटे। आप विशेषज्ञ हैं शस्य विज्ञान का, आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहले ये जाना जाए कि दलहनी फसल के बुआई में इस समय अगर विलम्ब हो गया बाटे तो का हम किसान भाई अभी भी बुआई किया जा सकत है?
3: जी बिल्कुल, अभी भी हम दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। खास करके हमारे यहाँ दलहनी फसलों की बुआई का जो समय है वो जुलाई माह या कह लीजिए कि मानसून आने के बाद से शुरुआत हो जाती है बुआई की। लेकिन अभी भी जो हमारी खरीफ फसलें हैं उसमें मुख्य फसल हमारी अरहर है, उड़द है, मूंग है, इन फसलों की बुवाई हम कर सकते हैं। अरहर की बुवाई के लिए खास करके कुछ प्रजातियां हैं जिनकी बुवाई हम कर सकते हैं। उसमें एक बाहर प्रजाति है, एक PDA 11 प्रजाति है। इसकी बुवाई हम अगस्त माह में क्या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक भी कर सकते हैं
2: जी।
3: और बुवाई करते समय ध्यान रखें कि 20 दर की मात्रा हमको थोड़ी सामान्य से बढ़ा के प्रयोग करनी होगी। खास करके 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करें। और जो पंक्ति की दूरी है, सामान्य बुवाई में हम लोग 45 से 60 सेंटीमीटर तक की दूरी रखते हैं। क्योंकि हम लेट विलंब से बुवाई कर रहे हैं तो इस समय जो है हमको पंक्ति की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जिससे कि पौधों की संख्या खेत में ज़्यादा हो सके। दूसरा, अगर मूंग की बुवाई कर रहे हैं तो मूंग की बुवाई के लिए भी अभी उपयुक्त समय है। खास करके हम अगस्त माह के तीसरे सप्ताह तक भी बुवाई कर सकते हैं। और इसके लिए खास करके कम दिन की प्रजातियों का प्रयोग करें। उसमें मालवीय जन कल्याणी, मालवीय जन प्रिया, विराट, शिखा प्रजाति प्रमुख हैं और बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें
2: जी। तो ये हिसाब से कीन जाए तो मूंग को बुआई बढ़िया हमारे सभी अगस्त माह के तीसरे सप्ताह तक भी कीन जा सकत है। दूसरी बात आवत है डॉक्टर साहब उर्द के बुआई के बारे में, तो उर्द के बुआई का उचित समय का है और अगर ये समय हमारे सभी बुआई कीन जाते हैं तो कौन कौन प्रमुख प्रजाति हैं जोने को बुआई करके हमारे सभी पैदावार बढ़िया लीन जाए, एक बारे में थोड़ा बताएं।
3: हाँ, उर्द की बुआई का समय चूँकि अब निकल रहा है धीरे धीरे, अतः अगर जिन भाइयों की बुआई अभी नहीं हुई है तो अतिशीघ्र बुआई कर लें और खास करके 10 अगस्त तक आवश्यक रूप से इसकी बुआई कर लें। और इसके लिए जो उत्तम प्रजातियां हैं वो शेखर 2 है, आज़ाद उर्द 2 है, IP 12-1 प्रजाति है। इनकी जो बीज दर है वो 12

0: से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें तथा बुवाई से पूर्व बीज का शोधन कार्बेंडाजिम 50% WP 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लें, जिससे आगे चल के बीमारियों का प्रकोप कम हो।
1: जी, अगर ये जो आप बताए हैं उस संस्तुत प्रजाति का हमारे सभी प्रयोग की जाए तो निश्चित रूप से उर्द की बुआई अगस्त महीना में भी करके हमारे सभी पैदावार बढ़िया ली जाए। एक तीसरा बात जो सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब, वो है अरहर की बुआई। अरहर की बुआई तो देखा ही जाता है कि आषाढ़ में ही शुरू हो जाता है और बहुत से किसान भाई सावन में भी एकर बुआई करते हैं, लेकिन देखे में ये जाता है कि एक पौधन का गलन बहुत ज़्यादा हो। आपसे हमारे सभी जाना चाहे कि चूंकि वर्षा वाला दिन है, बरसात का दिन है, तो इस समय अरहर के बुआई हमारे सभी कैसे की जाए और कौन कौन प्रजाति का अपने खेती किसानी में उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए कि पौधा भी स्वस्थ रहे और पैदावार भी बढ़िया रहे।
0: खास करके जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल निकास संभव नहीं होता है, वहाँ पे अरहर की बुआई मेढ़ पे करें। मेढ़ पे करने से उत्पादन अच्छा मिलता है तथा जो गलन की समस्या होती है उससे भी छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ में खास करके कुछ गलन की समस्या आती है जिसको हम कहते हैं कि कुछ रोग लग जाते हैं फसल में, जैसे एक उकठा रोग होता है, उकठा रोग की वजह से भी गलन की समस्या होती है पौधे जो है, और उकठा किसी भी समय पे भी फसल में आक्रमण करता है जिससे कि पौधे की जड़ गल के खत्म हो जाती है, पोषक पदार्थ ऊपर नहीं पहुंच पाते। इसके लिए आवश्यक है कि शोधन करने से पूर्व ट्राइकोडर्मा जो कि जैविक फफूंदी नाशक है उससे बीज का शोधन अवश्य करें। बीज लगभग दवा आपकी 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज में मिला के उसके बाद में बुआई करें। साथ ही साथ में अगर जहाँ पे जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आक्रमण ज्यादा होता हो, ऐसे क्षेत्रों में भूमि का शोधन भी ट्राइकोडर्मा से किया जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप अगर मेढ़ पे बुआई करें इन क्षेत्रों में जहाँ पे जल निकास की संभावना कम होती है या वर्षा ज्यादा होती है, तो फसल की जड़ में हवा की उपलब्धता ज्यादा होती है जिससे कि जड़ की वृद्धि ज्यादा होगी और साथ ही साथ जो फफूंद से लगने वाले रोग हैं जैसे उकठा रोग है तो इसका भी प्रभाव फसल पे कम होगा, फसल ज्यादा उत्पादन देगी।
1: जी, चाहे मूंग हो, उर्द हो या अरहर हो, जितनी भी दलहनी फसल है इस समय के, उन सब कर एक सामान्य जो समस्या आवत है किसान भाइयों के खातिर, वो खरपतवार का समस्या आवत है। कहे से कि बरसात का मौसम है, मुख्य फसल के अलावा खेत में खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपसे हम किसान भाई ये जानना चाहे कि अपने दलहनी फसल में हमारे सभी खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
0: दलहनी फसलों में खास करके खरपतवार सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और डर की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि हमारे पास में अधिक खरपतवार नाशी पहले नहीं थे दलहनी फसलों में इस्तेमाल करने के लिए। तो दो तीन बातें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि यदि आप बुवाई कर रहे हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ज्यादा खरपतवार होते हैं, तो बुवाई के बाद, बुवाई के 3 दिन के अंदर पेंडीमिथालिन एक खरपतवार नाशक दवा आती है, उसका छिड़काव खेत में कर दें। लगभग 500 लीटर पानी में घोल बना के खेत पे छिड़काव करें। लेकिन अब ऐसी भी स्थिति है कि अगर बाद में भी खरपतवार खेत में उगते हैं तो उनका भी नियंत्रण संभव है। जैसे कि आपका अरहर की फसल है तो अरहर में आप 20 से 25 दिन के बाद में भी खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक दवा आती है आपकी क्विजिलोफाप जो कि 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। दूसरी इमेजा थाइपर है, उसकी भी मात्रा 750 से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बना के खेत में छिड़काव करें तो खरपतवारों को रोका जा सकता है।
1: और मूंग में खरपतवार नियंत्रण के खातिर हमारे सभी का किन जाए?
0: मूंग चूंकि कम दिन की फसल है, इसमें खरपतवार चूंकि फसल तेजी से बढ़ती है तो खरपतवारों का प्रकोप उतना नहीं होता, लेकिन चूंकि खरीफ का मौसम होता है इसमें घास फूल के खरपतवार ज्यादा निकलते हैं। इसके लिए फिनाक्सा प्रॉब मिथाइल एक दवा आती है जो कि 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप अगर छिड़काव करते हैं बुआई के 20 से 25 दिन पे तो खरपतवारों को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। वैसे ही आप मूंग के साथ साथ में उड़द की जो फसल है उसमें भी आप इमेजा थाइपर दवा का छिड़काव कर सकते हैं बुआई के 15 से 20 दिन बाद में, लेकिन दवा की मात्रा 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें और कुशलता पूर्वक छिड़काव करें खेत
1: जी।
0: से।
1: अब डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण बात हम किसान भाइयों के दिमाग में ये रहते हैं और हमारे सभी समस्या से निजात भी पावा जाना चाहते हैं कि जैसे अरहर है, मूंग है, उड़द है, ये समय का जो महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, इनमें हमारे सभी कीट नियंत्रण कैसे की जाए, इसके बारे में थोड़ा आप बता दें।
0: बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं इनमें कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है।

0: है। खास
1: जी
0: करके अगर हम अरहर की फसल को ले लें तो अरहर की फसल में हमारा पत्ती लपेटक कीट, बालदार सूनी, फली भेदक कीट ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में अगर हम देखें तो पत्ती लपेटक कीट ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके लिए नियंत्रण के लिए, चूँकि ये पत्ती को बीच में रोल बना के बैठ जाता है, वो अंदर ही अंदर खाता रहता है, तो इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट दवा 30 cc 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करें। और यदि फली भेदक कीट का प्रकोप हो, जब फली बनने लगती है तो फली भेदक कीट का प्रकोप अवश्य होता है, तो
1: जी
0: इसके लिए हम रासायनिक नियंत्रण अगर करते हैं तो इमिडाक्लोरपीड 17.85 SL 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं पौधे में।
1: हाँ डॉक्टर साहब, आप आयन और दलहनी फसल में कौन कौन सस्य क्रिया हैं जो ने कि कह के हमारे सभी बढ़िया पैदावार ले जा सकत है, उसके बारे में बढ़िया जानकारी दी है। जानकारी देवे के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करें, और यदि फली बेधक कीट का प्रकोप हो, जब फली बनने लगती है तो फली बेधक कीट का प्रकोप अवश्य होता है, तो
1: जी
0: इसके लिए हम रासायनिक नियंत्रण अगर करते हैं तो इमिडाक्लोरपीड 17.85 SL 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं प्रतिदिन।
1: हाँ डॉक्टर साहब, आप आयन और दलहनी फसल में कौन कौन शस्य क्रिया हैं जोने कि कह के हमारे सभी बढ़िया पैदावार ले जा सकत है, ओकरे बारे में बढ़िया जानकारी दी है। जानकारी देवे के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दलहनी फसलों में शस्य क्रियाएं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिशिर कुमार से अरविंद कुमार उपाध्याय की बातचीत। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अखिलेश को। विषय है बरसात में होने वाले प्रमुख त्वचा रोग व उनका होम्योपैथिक उपचार।
1: बरसात के मौसम में हम देखते हैं मौसम गर्म होता है, नमी, चिपचिपाहट, पसीना बहुत ज़्यादा होता है और वो सूखता नहीं है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम नित्य प्रति स्नान करें और हो सके तो कोई ना कोई एंटीसेप्टिक साबुन या कोई लोशन पानी में डाल करके उससे स्नान करें और रोज़ साफ तौलिए से पूरे बदन को अच्छी तरीके से पोंछ करके और हल्के सूती एवं ऐसे वस्त्र धारण करें जिसमें हवा का आदान प्रदान होता रहे, जिससे कि हमारी त्वचा की देखभाल अच्छे से, उसका एरेशन हो और वो स्वस्थ रहे। खास करके अंतः वस्त्रों को, जैसे हमारी अंडरवियर, बनियान, इन चीज़ों को हमें रोज़ अच्छे से तरीके से धोना चाहिए, उसे धूप में सुखाना चाहिए और हो सके तो उसको आयरन करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन स्किन तक नहीं पहुँचेगा और हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे। स्किन को जहाँ तक हो सके ड्राई रखने की कोशिश करें, ढीले वस्त्र पहनें और खुली हवा में टहलें, व्यायाम करें, योगा करें ताकि स्किन को पूरी तरीके से ताज़ी हवा का पोषण मिल सके। दूसरा, हमें अपनी स्किन में तेल की मालिश या बालों में तेल का इस्तेमाल बरसात के सीज़न में नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, क्योंकि तेल में चिपचिपाहट होती है और इससे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और उनको प्रॉपर नरिशमेंट, एरेशन नहीं मिलता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस उसमें सेटल होते हैं और वो त्वचा की विभिन्न परेशानियों का कारण बनते हैं। और हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां, जैसे खुजली होना, त्वचा का लाल पड़ना, लाल चकत्ते पड़ना और इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसमें पस, मवाद, ये सब भी देखने को मिलता है, तो एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जो बरसात के सीज़न में हमारी त्वचा से रिएक्ट करते हैं और बहुत तरीके की प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो इसलिए हमें बरसात के सीज़न में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे वस्त्र स्वच्छ हों, शरीर सूखा रहे, हवा का आदान प्रदान होता रहे। जिस जगह पर हम रह रहे हैं, हमारे बिस्तर, हमारे तौलिए, हमारे जितने भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरीके से डिसइन्फेक्ट हों और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन उनके द्वारा शरीर में ना होने पाए। और हमें खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है कि इस सीज़न में हमें तली भुनी चीज़ें, पकौड़े हैं, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं हैं क्योंकि ऑयली चीज़ें स्किन के पोर्स में ऑयल का कलेक्शन करेंगी और वहाँ पर इन्फेक्शन सेटल होगा, जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। तो हमें जहाँ तक हो ताज़ा, हल्का और मिर्च मसाले और तेल से रहित भोजन का सेवन इन दिनों करना चाहिए। पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और शुद्ध पानी नियमित रूप से हम पीते रहें। यौगिक क्रियाएं करें, प्राणायाम करें। सामान्य जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं इन दिनों में, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस फंगल डिजीजेज, जैसे रिंग वर्म है, स्किन रैशेज हैं, अल्टीकेरिया है जो एलर्जिक डिजीज़ होती है, और हर्पीज़, ये सब चीज़ें हमें, घमौरियाँ हैं, छोटे छोटे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं शरीर पर और ये बहुत ज़्यादा खुजली और जलन पैदा करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम अगर इस तरीके से अपनी त्वचा की देखभाल करेंगे और उसे स्वच्छ रखेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है इन बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन यदि किसी तरीके की समस्या उत्पन्न होती है शरीर में तो हमें एक

0: अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे निदान लेना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। बरसात में होने वाले त्वचा रोगों के लिए होम्योपैथिक में कुछ बहुत अच्छी दवाइयां हैं जिनको आप सिम्टम्स के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डलका मारा है, डलका मारा एक ऐसी दवा है जो नमी से होने वाले सारे त्वचा रोगों में सामान्य रूप से काम आती है। इसको हम दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। रस्टॉक्स है, बेलाडोना है, और रिंग वर्म वगैरह के लिए थूजा है, सीपिया है। ये ऐसी दवाइयां हैं जिनका प्रयोग, सल्फर का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये स्किन को बहुत जल्दी हील अप करती हैं और सारी प्रॉब्लम से आपको बचाती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और उनकी सलाह पर आप इन दवाइयों का सेवन करें तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे।
1: बरसात में होने वाले प्रमुख त्वचा रोग व उनका होम्योपैथिक उपचार, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश से इस विषय पर बात। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण में आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आज रात 8 बजे संसद समीक्षा, 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। अब से कुछ देर बाद 7 बजे सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनिए पंडित गणेश प्रसाद का ख्याल गायन, 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन।

नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम सुनेगा 8:45 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 9:50 पर और रात 7:45 पर। 10:30 पर लोकगीत का कार्यक्रम होगा। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनेगा दिन में 11 बजे और 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे।

1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट, जिसके अंतर्गत सरोज सिन्हा के गाए लोकगीत के साथ सुनिए अनुराधा कुमारी की वार्ता। विषय है वृक्षारोपण आज की आवश्यकता। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 3 बजे। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में गुलाब सिंह यादव और साथी के गाए लोकगीत सुन सकेंगे। युवाड़ी कार्यक्रम सुनेगा 5:15 पर।

6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में दिनेश कुमार और साथी के गाए लोकगीत के साथ सुने विजय शंकर त्रिपाठी का रामायण पाठ। 7:45 पर

संस्कृत कार्यक्रम में सुनिए दीक्षा पांडे का काव्य पाठ। सबरस कार्यक्रम सुनेगा रात 8:30 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा रात 9:30 पर। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: धस्य गहनतायाः महत्त्वम् अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 49,55,55 कोटि उपयोक्तारः यूपीआई इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ, संगीत सतीश भाटिया का।

श्री रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ, संगीत सतीश भाटिया का था। इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से लिए गए भजन, लीजिए सुनिए ये पहली रचना यशोदास की, बोल इंदिवर के संगीत बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम हैसियत।

कार्यक्रम का अगला व अंतिम रचना है हरि दर्शन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज में प्रदीप के बोल हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पढ़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि।
1: प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है।
0: भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
2: हम हरि भजन करेंगे,
3: हरि कीर्तन करेंगे।

0: हरि दर्शन फिल्म की इस खूबसूरत भक्ति रचना के साथ ही फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा। अब 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा तथा कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन कल विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। एक रिपोर्ट।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। श्री मोदी ने सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और आवास की चाबी भी सौंपी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।
3: हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है और मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर, और आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको दे करके जाएगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कहीं कहीं अनियमित बारिश से पैदा हुई सूखे की समस्या और कुछ स्थानों पर अतिवर्षा से संभावित बाढ़ की चुनौती को लेकर कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ हो या सूखा, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, किसानों की फसल और आम जन की आजीविका की रक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री योगी ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले की परिस्थितियों के अनुरूप ही राहत और बचाव की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जन कल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों

0: का अंत्योदय कार्ड बनाने और सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करके परियोजना को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करते हुए युवाओं से कम एक कौशल सीखने की अपील की।
1: मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपील की है कि युवा यह संकल्प लें कि कम से कम एक कौशल सीखकर समाज और प्रदेश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अपना प्रदेश कौशल से जुड़कर न केवल विकसित उत्तर प्रदेश बल्कि $1 trillion अर्थव्यवस्था के निर्माण का पथ भी प्रशस्त करेगा। श्री योगी ने युवाओं को याद दिलाया कि कौशल ही आत्मनिर्भरता का आधार, स्वाभिमान का संबल और विकसित होने की राह पर अग्रसर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले में SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा ताकि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले का राजनीतिकरण न करने के निर्देश भी दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि श्रीराम मंदिर चढ़ावा विवाद अपराध का एक साधारण मामला है और न्यायालय का काम सिर्फ उचित जाँच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जाँच के लिए प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कल मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संवेदनशील स्थानों सहित सभी प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। DGP राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के तय नियमों का पालन कराया जाएगा।
3: इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, कावड़ की हाइट, कावड़ के वॉल्यूम लेवल, डेसिबल और इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, नई व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ कावड़ के श्रद्धालु है उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि कावड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि सबके
0: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में UP T20 लीग के Season 4 के टिकट लॉन्च किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रही है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए, विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष रूप से उन्होंने ख्याल रखा है। स्पोर्ट की नई नीति लागू करके स्पोर्ट्स पर्सन को पुलिस में, अन्य सभी विभागों में सरकारी नौकरी देने का, और हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी है जिसमें कि उनको DSP और तहसीलदार तक नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पीलीभीत जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण आज वहां कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कल तक राज्य भर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

संसद का मानसून सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल एसआईटी के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा। अब 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा तथा कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन राग भटियार। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार भट्ट। तानपुरे पर हैं श्रीकांत वैश्य।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन राग भटियार। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्रवण कुमार भट्ट और तानपुरी पर श्रीकांत वैश्य। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
3: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि

0: सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमज़ोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जाँच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस एतमाद का इजहार किया कि पनामा के वजीर खारजा का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। पनामा के वजीर खारजा के साथ मीटिंग के आगाज में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मजीद तकवीत देगा, जिससे दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहम को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे क्लीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद की माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अगले महीने से पेंशन की रकम 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये माहाना कर दी गई है। कल जारी किए गए एक सरकारी हुक्मनामे में हुकूमत ने कहा कि पेंशन के की इजाफा शुदा रकम फवाइद की बराह रास्त मुंतकली DBT निज़ाम के जरिए तमाम मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर BJP के IT महकमे के इंचार्ज अमित मालविया ने कहा कि मगरबी बंगाल की ये महरूम बिरादरियां कई बरसों से इंतजामी बेतवज्जुही का शिकार रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में BJP हुकूमत बामाना और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है और समाजी बहबूद की पेंशन में 50% के इजाफे का फैसला हुकूमत के इसी विजन का मजहर है। इंतखाबी कमीशन आज कोलकाता में एक बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है, जिसका मकसद डाक के ज़रिए वोट डालने के अमल को मज़ीद जामे, महफूज और आसान बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त से मुतालिक बैन अलाक्वामी इदारे IIIDEM और बैन अलाक्वामी IDEA मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के तमाम 24 इंतखाबी ज़िलों के चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतज़मीन, पॉलिसी साज, माहिरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहिरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के ज़रिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निज़ाम को मज़ीद जामे, आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के ज़रिए वोट डालने का अमल, इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधही की रोकथाम, ऑडिट के निज़ाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निज़ाम और दूर दराज इलाक़ों से वोट डालने के निज़ाम के मुस्तक़बिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सिक्किम में नामची ज़िले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की ज़ेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची ज़िले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम अज़ कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल हैं। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने आज रियासत के

0: पांच जिलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज़ हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज़्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के उहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमन व अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जाँच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के ख़िलाफ़ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकज़ी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फ़ौजी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान को ज़बरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीन अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने यह तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। ख्वातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मानसून इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि बहस मुबाहसे में दलील और सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुल्क के मफाद के लिए काम करने की अपील की। अखबार की एक अहम सुर्खी है, नई दिल्ली में मुजाहरीन के साथ मरकजी वजीर जेपी नड्डा की बातचीत से मुतालिक है। मुजाहरीन की जानिब से सरकार को अपनी मांगों के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। रोजनामा इनकलाब ने ईरान के मौजूदा हालात वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों के लिए जारी नई एडवाइजरी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अकिए अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100

0: 93.3 मेगाहर्ट्ज पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इस कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह। जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम में जुड़ जाइए और सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। राहवीर योजना एक सड़क सुरक्षा योजना की आज हम बात करेंगे। श्रोताओं, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ये एक पहल है जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सुविधा पहुंचाकर लोगों की जान बचाना है।

श्रोताओं, जो लोग साहस दिखाते हैं, सड़क दुर्घटना के दौरान किसी घायल अजनबी को अस्पताल ले जाते हैं, उन्हें राहवीर कहा जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही मौतों को रोकने और गोल्डन आवर में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। योजना का उद्देश्य गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाना है, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। इस दौरान घायलों को समय पर चिकित्सीय सहायता मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

किस्मत है। तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं राहवीर योजना की। जो भी व्यक्ति तत्परता से घायलों को अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, उसे राहवीर की उपाधि दी जाती है और 25,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे राज्य से चयनित राहवीरों में से 10 सबसे योग्य राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोग अक्सर पुलिस के झंझटों के डर से मदद नहीं करते, इसलिए सरकार कानूनी सुरक्षा इनाम दे रही है। बिना सोचे, बिना देर किए, बिना किसी डर के सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहवीर बनने के लिए आपको किसी चिकित्सा प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सहायता करने की इच्छा ही सबसे बड़ी सहायता है।

खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है प्रतिदिन सुबह 8:45 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों बाद।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह,
4: फसा। अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म का नाम सनम रे, आवाज मिथुन और अंकित तिवारी का, बोल और संगीत मिथुन का,

कार्यक्रम के अंत में सुनिए मोहम्मद इरफान की आवाज में एक विलेन फिल्म का ये गीत, बोल और संगीत मिथुन का।

0: सनम रे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए देवरिया और कासगंज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का।
2: एक पेड़ माह के नाम बृहद वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ कृषि मंत्री श्री प्रताप साहू द्वारा नगर पंचायत बरियारपुर क्षेत्र में पौधरोपण कर किया गया।

0: इस दौरान जिले में विभिन्न सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्थलों समेत सरकारी भवनों के परिसरों में पौधे लगाए गए। अपने संबोधन के दौरान कृषि मंत्री ने गांव, खेत, बागीचे, मंदिर, तालाब, अमृत सरोवरों एवं सड़क के किनारे आदि सजीव वृक्ष लगाने की अपील की। वृक्षारोपण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, स्कूली बच्चों, किसानों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों में पौधे भी वितरित किए गए। इसके अलावा जिले के समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, पंचायत भवनों, ग्राम सचिवालयों, चारागार भूमियों एवं तालाबों के तटबंधों सहित विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी भूमियों पर वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ मार्क नाम बृहद वृक्षारोपण अभियान के जिले के नामित नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार प्रथम तथा जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने बैतारपुर विकासखंड के सृजन ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर वृक्षारोपण करते हुए आम जन से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उसका संरक्षण करते रहने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के नेतृत्व में जिले के पुलिस अधिकारियों ने पुलिस विभाग के सभी परिसरों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइन आदि पर पौधरोपण किए। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने महर्षि देवराहवा बाबा सोसासे राज चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा अधूरे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर ट्रामा सेंटर चालू करने का भी निर्देश दिया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का मॉडल जिला बनाने के लिए जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पारदर्शी पूर्वक तय समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी पूर्वक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही उजागर होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले में चयनित आकांक्षी ब्लॉकों को निर्धारित पैरामीटर के तहत संतुलित करने के लिए जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के डिजिटल हाजिरी, कक्षा में निपुण तालिका, शिक्षक संदर्शिका, पठन पाठन की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस व अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का व्यापक व्यवस्था करते हुए पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा
1: सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न तरीके की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शिक्षा विभाग में अब जुलाई महीने में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जहां पे बच्चों को स्कूल आने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर फोकस किया जाए। उसके साथ साथ बच्चों को निपुण भी बनाया जाए, उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं विद्यालयों में और स्ट्रेंथन करने के लिए भी फोकस किया जा रहा है।
0: जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ समय पूर्व सभी तैयारियों को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाढ़ के मद्देनजर सभी आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। बाढ़ विभाग व अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर रखते हुए उसका प्रभावी क्रियान्वयन करें। मार्ग दुर्घटनाओं में हो रही जनहानि को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा उपायों की गौण समीक्षा की। दौरान उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि न हो इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएं। बार बार सड़क दुर्घटना होने वाली जगहों को चिन्हित करते हुए वहां पर आवश्यक संकेतक तथा अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाए। सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ कल्याणकारी शिविर का आयोजन जिले के विभिन्न तहसीलों में किया गया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला प्रोबेशन विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पात्र लाभार्थियों में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र व अन्य उपकरण वितरित किया गया। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीएम डैशबोर्ड शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व विभागीय योजनाओं की प्रगति का प्रतिबिंब है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम नहीं होगी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव, हेपेटाइटिस बी आज के टीकाकरण, आशाओं का लॉजिस्टिक वितरण, BHND सत्रों तथा मशीन डिलीवरी सहित प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों में लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। आगामी 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग अभियान तथा दस्तक अभियान का क्रियान्वयन पूरी तरह से किया जा रहा है। इस दौरान आशा कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है तथा लक्षणयुक्त रोगियों को चिन्हित करते हुए उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर इलाज कराने का सलाह दिया जा रहा है। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी सुधाकर मणि ने बताया कि
2: आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घरों के भ्रमण कर लक्षण युक्त रोगियों को चिन्हित कर रही हैं तथा कुपोषित बच्चों का भी सूची तैयार किया जा रहा है जो स्वास्थ्य केंद्रों पर और अन्य आगे की जाँच के लिए संदर्भित किया जाता है।
3: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का।
4: जनपद कासगंज में 12 जुलाई को वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश लघु

0: उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव एवं नोडल अधिकारी राजेश कुमार ने पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों, अन्य अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधे लगाए। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के वृक्षारोपण महायज्ञ के अंतर्गत जनपद कासगंज को 26,51,800 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे जन सहभागिता से पूरा किया जाएगा। वक्ताओं ने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। जनपद कासगंज में 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के दौरान जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्षा जल संचयन, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा भूजल पुनर्भरण जैसे प्रभावी उपायों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य भूजल संरक्षण, उसके नियोजित विकास, विवेकपूर्ण उपयोग तथा अनियंत्रित दोहन पर रोक लगाने के प्रति आम जन को जागरूक करना है। इस वर्ष भूजल सप्ताह की थीम है जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प। अभियान के अंतर्गत जनपद की सभी ग्राम पंचायतों, विकास खंडों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में 7 दिवसीय सघन जल संरक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम मिशन मोड में संचालित किए जा रहे हैं। जनपद वासियों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने तथा भूजल संवर्धन और जल संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की जा रही है। इस विषय पर साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्त्री पारुल बंसल ने कहा,
1: मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वर्षा जल का अधिक से अधिक संचयन करें, अनावश्यक पानी की बर्बादी रोकें और अपने आसपास जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल सुरक्षा रखने में अपना योगदान दें।
0: जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। 18 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर में धारा 138 NI एक्ट से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में किया गया, जिसमें 4 मामले मौके पर ही सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए। कासगंज में आगामी कावड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी प्रणय सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह द्वारा गंगा नदी के लहरा घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। गहरे पानी वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग, खतरे के संकेतक, नावों, गोताखोरों तथा सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 17 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में खरीफ एवं रबी वर्ष 2026 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज अभियान तथा जनपद स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन पात्र किसानों के पास अभी तक KCC नहीं है, उनकी पहचान कर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, बैंक शाखाओं, पैक्स, FPO और कॉमन सर्विस सेंटर के से विशेष अभियान चलाकर उन्हें KCC से जोड़ा जाए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: विजयलक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। रामपुर रेडियो मरकज से आयशा राहत का आदाब। समिन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास मौजू, जिसका उन्वान है दिल्ली उर्दू, लखनवी उर्दू और रामपुरी उर्दू, जुबान और लहजे का असर।

0: जब बात करते हैं हम रामपुर की उर्दू की, तो दिल्ली और लखनऊ दोनों का ही जिक्र हमारे जहन में आ जाता है, क्योंकि रामपुर जो है एक नवाबी शहर गुजर चुका है। ये वो दौर था कि जब मुगलिया दौर का जवाल हो रहा था, तो जाहिर है कि इसका असर दिल्ली और लखनऊ दोनों पर ही असर आ रहा था। उस वक्त रामपुर के जो नवाब थे, अदब नवाजी की रिवायत को जिंदा रखे हुए थे। यहाँ के नवाबीन, नवाब यूसुफ अली खान साहब और नवाब कल्बे अली खान के दौर में रामपुर उर्दू अदब का सबसे बड़ा मरकज़ बना हुआ था। हालांकि रामपुर की उर्दू कोई अलग ज़ुबान नहीं थी, बल्कि यहाँ दिल्ली की सादगी और लखनऊ की नफासत का एक हसीन इम्तिज़ाज था। इसीलिए रामपुर को अदब का तीसरा स्कूल भी करार दिया गया। सामिन, आज हम इन तीनों मरकज़ों की उर्दू और उनके बाहिमी ताल्लुकात के बारे में बात करेंगे। आज की इस मुबाहिसे में हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन साहब और प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब। आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में समीम कल्ब से खैर मकदम है। ज़ुबान, जो कि एक मौसर ज़रिया माना जाता है हमारे माफिल ज़मीर की अदायगी का, चाहे वो कोई भी ज़ुबान हो, तमाम ज़ुबानों का यही काम है, मगर उर्दू ज़ुबान सबसे मुख्तलिफ है, वो क्यों? आसिफ हुसैन साहब से।
1: बहुत अच्छा सवाल किया आपने मोहतरमा। उर्दू ज़बान मुख्तलिफ क्यों है? देखिए, ख़ास बात उर्दू के हवाले से जो जग जाहिर है, छुपी हुई नहीं है, वो ये है कि जितनी ज़बानें हैं, अलग अलग इलाकों में बोली जाने वाली ज़बानें हैं, अलग अलग कौमों की ज़बानें हैं, उर्दू जो है वो इन तमाम ज़बानों का एक हसीन इम्तिजाज है, एक हसीन गुलदस्ता है।
0: बेशक,
1: लिहाजा इसमें जो चाशनी हम महसूस करते हैं वो दूसरी ज़बानों में हमें नहीं
0: नहीं
1: मिलती है।
0: मिलती।
1: इसमें हम अपने माफ़ी ज़मीर को अच्छी तरीके से अदा कर पाते हैं।
0: जी
1: दूसरी बात यह है कि इसमें क्योंकि मुख्तलिफ ज़बानों का गुलदस्ता होने की वजह से इसमें हमें जो कहना चाहिए बाहमी हम मानी अल्फाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं।
0: जी
1: इसी वजह से गालिबन गालिबन के यकीनी तौर पे जो लोगों को ज़्यादा मिठास महसूस होती है, शीरीनी महसूस होती है और लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, या यूँ कहिए आमतौर पर लोग बोलते हैं वो उर्दू ही होती
0: उर्दू में
1: है,
0: ही बात
1: उर्दू में
0: करते
1: ही
0: हैं।
1: बात
0: जी
1: करते हैं हम। तो यही वजह है कि ये ज़्यादा मकबूलियत इसको हासिल है। जैसे बात चल रही है यहाँ पर के मुख्तलिफ स्कूलों की है,
0: जी
1: तो उन सब का हमें यहाँ पर वो स्कूल जो है वहाँ की जो तहजीब सकाफत वगैरह है
0: जी
1: वो सब ने इसको मुतासिर किया है
0: जी
1: और उसके से मुख्तलिफ लहजे वजूद में आते हैं कबूल
0: सबसे
1: ज़बान
0: अलग है और मुख्तलिफ है।
1: जी।
0: आबिद साहब का ताल्लुक लखनऊ से है और आप माओ के हैं, तो मेरा ये सवाल है कि लखनऊ, दिल्ली और रामपुर की जो ज़ुबानें हैं, उनके जो बाहिमी ताल्लुकात हैं, उनमें क्या फ़र्क है?
2: असल में दिल्ली 18वीं सदी में जिस ज़बान को दिल्ली ने जन्म दिया, और अभी जैसा कि डॉक्टर आसिफ साहब कह रहे थे कि मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ कल्चर के संगम से जो ज़बान वजूद में आई वो उर्दू ज़बान बन के हमारे सामने आई, और उर्दू ज़बान की खसूसियत ये रही है कि इसे आवाम के साथ साथ ख़वास में भी जो है मकबूलियत रही,
0: बिल्कुल
2: और इसीलिए इस ज़बान को उर्दू मुअल्ला भी कहा जाता है। उर्दू मुअल्ला इसलिए कहा जाता है कि मुग़ल शहनशाहों ने, मुग़ल जो है या मुग़ल दरबार में जो लोग थे उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट किया और आवाम में भी जो है इसकी मकबूलियत थी। ऐसा नहीं है कि उर्दू जो है दिल्ली में जो है पनपी, इससे पहले जो है दक्कन में कुली कुतुब शाह या दूसरे जो है फरमानरवाओं ने जो है इसको जो है आगे बढ़ाया, और गंगा जमुनी तहजीब जो इसकी ख़ास जो है पहचान है उसके ज़रिए इसने समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया कि हिंदुस्तान जो है फूलों के गुलदस्ते की तरह से जो है इसका वजूद है, इसकी आबादी है, इसमें ऐसी ज़बान बोली जानी चाहिए जो हर तबके को, हर इलाके के रहने वालों को मुतासिर कर सके। और
0: बेशक,
2: उर्दू ज़बान के अंदर ये खूबी रही कि उसने जिस ज़बान का अच्छा लफ्ज़ था उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे कबूल कर लिया, और उसने ये ख़ास जो है बात रखी उसके चाहने वाले मानने वालों ने कि किसी भी ज़बान के सामने जो है जिस लफ्ज़ को अच्छी तरह से समझ सकता है और अपने माफ़ी ज़मीर को अदा कर सकता है वो जो है उर्दू ज़बान जो है हो जाएगी। और इसीलिए मैं यहाँ पे जो है बात करूँगा, जैसे दहलवी ज़बान की बात होती है, दहलवी स्कूल की बात होती है, और फिर उसके बाद लखनवी स्कूल बना, फिर उसके बाद उसी दहली और लखनऊ से आए हुए तमाम उलमा, शुअरा, उदबा ने, नवाबी ने, रामपुर ने जो है

0: उनकी जो हिम्मत अफजाई की, हौसला अफजाई की, उसकी वजह से यहाँ पर उर्दू का जो एक अलग जो है लबो लहजा बना, वो जो है पूरी दुनिया में जो है मशहूर हुआ। दक्कन से होती हुई दिल्ली आई और दिल्ली में जो है वो सच संवर करके अपनी एक शनाख्त कायम कर चुकी थी। अब लखनऊ के जो है शोहरा के अंदर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम अपनी शनाख्त जो है कैसे कायम करें। लखनऊ की जबान में आई
1: जी,
0: वो यहाँ पर सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि यहाँ के शोहरा ने हमारे उस अदबी दायरे को वसअत दी, और वसअत इस तरह के से दी कि दिल्ली का एक बड़ा शायर, जो गज़ल का बड़ा शायर होते हुए कसीदे का बड़ा, लेकिन उसकी वो हैसियत नहीं हुई जो हैसियत आकर के उसकी लखनऊ में हुई। इसलिए कि वही दिल्ली के शोरा, चाहे वो मीर हों या मुसफ़ी हों या आपके सौदा हों, वो सब हिजरत करके लखनऊ गए, और इन्हीं के तरबियत याफ्ता शोरा, चाहे वो
1: पूरे हिंदुस्तानी में जी फैल गए
0: या और भी दूसरे लखनऊ में भी जो बड़े शोरा हैं, वो इन्हीं के तरबियत याफ्ता। अब जो है लखनऊ के सामने ये थी कि लखनऊ ने ये कहा कि देखिए हम दिल्ली से आए हैं, हम जो है क्या शनाख्त करें। तो एक बड़ी सिन्फ जो है वहाँ पे वजूद में आती है और वो मसनवी है
1: जी।
0: मसनवी हमारे अदब की जो दो बड़ी मसनवियाँ हैं उसी लखनऊ में लिखी गई, चाहे वो सहरुल बयान हो या जो है गुलजार नसीम हो। उसके अलावा एक ऐसी सिन्फ जो रोने रोलाने के लिए मशहूर थी, उसने जो है वहाँ पर अदबी शनाख्त जो है कायम की। इसलिए कि अब तक जो है लखनऊ में यकीनन सौदा भी जो है मरसिए के शायर हैं, मीर भी जो है मरसिए के बड़े शायर हैं, लेकिन उनकी शनाख्त जो है वो एक गज़लगो के शायर की हैसियत से है, एक जो है आपके कसीदे के शायर की हैसियत से है, लेकिन मरसिए को जो अदबी रंग या कहना चाहिए अदबी जो उफोक पे जो है एक तरह से सूरज की तरह चमकाया, वो खलीको ज़मीर ने और बाद में जो है अनीसो दबीर ने जो उसे समझाया। और यही वजह है कि वहाँ पर जो है जहाँ अभी ज़बान के बारे में गुफ्तगू नहीं, थोड़ी सी गुफ्तगू जो है सौदा ने और ने जो है मीर ने की, खान आरजू ने थोड़ी सी गुफ्तगू की, वो भी जो है फैज़ाबाद में जा कर के कर रहे हैं, और इस तरह की शायरी कि बस जो है लफ्जी बाजीगरी का नाम है, यानी
1: मगर उसके बरक्स उन्होंने ये दिखा दिया
0: जो है इन्होंने
1: कि ये जी कि सिर्फ एक की नहीं बल्कि आलम की है जुबान। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। गंगो जमन की ये तहजीब और जो ये जुबान है सिर्फ एक मजहब की नहीं बल्कि पूरे आलम की है। आसिफ साहब आप क्या कहेंगे, हम ये देखते हैं कि जहाँ हमारा इलाका या खित्ता कोई भी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से आगे बढ़ता है तो वहाँ पर लहजा जबान सब कुछ बदल जाता है, इसके पीछे क्या असरात हैं?
2: जहाँ तक लहजे की है
1: जी,
2: जबान तो आमतौर पर नहीं बदलती है, लहजा बदलता है, और लहजा जो है वो किसी इलाके की तहजीब वहाँ की सकाफत से मुतासर होता है, वहाँ के जो अदबी सरपरस्तियाँ उसे हासिल होती हैं उससे मुतासर होता है। मसलन जैसे रामपुर को ले लीजिए आप, यहाँ पर नवाबीन की सरपरस्ती हासिल, तो यहाँ का लहजा जो है वो यहाँ की सकाफत से मुतासर। हम जब लहजा की बात करते हैं तो हमारे कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, उर्दू के अल्फाज हैं, जुबान वही है दिल्ली में बोली जा रही है, जबान वही लखनऊ में बोली जा रही है।
1: देखिए उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिन्हें हम ऐसे आदाब और अलकाब के साथ कहते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी को अगर जनाब भी कहेंगे तो जनाब आली कहेंगे, तुम की जगह आप कहेंगे, लेकिन दीगर जुबानों में ऐसा नहीं है।
2: देखिए इसमें जो इसको यानी कि नफासत के ज़रिए में इसको रख सकते हैं चीज़ को, हम जो हम एक अलकाब को जनाब कहने से बात खत्म हो जाएगी
1: जी,
2: जनाब आली हम कह रहे हैं
1: वो क्यों कहेंगे जी, बात तो इससे भी पूरी हो जाती है।
2: जो यहाँ आई वो ये जो असर है ये आलम लखनऊ की तहजीब का असर है, तो लहजे का असर यहाँ में मिल रहा है, ये भी लहजे का ही कहीं ना कहीं असर,
1: यानी कहीं ना कहीं लखनऊ से हमारा जुड़ाव होता है।
0: देखिए मैं बताऊं, लखनऊ ने अपने आप को देहलवी या रुहेल खंड के असरात से इस तरह अलग किया कि यहाँ पर जो हमारा मगरबी उत्तर प्रदेश या दिल्ली का जो लबो लहजा है उसमें तू और तुम की बात है, तू जो है छोटे को कहा जाता है, तुम जो है बड़े को कहा जाता है, लेकिन लखनऊ ने जो है उसको जो है अपने आप को अलग किया, उसने जो है तुम जो है वो छोटे को और बड़े को जो है आप। दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ जो बोलने का तरीका है, यानी छोटों को भी मुखातब करना, सामईन को मुखातब करना, बंदा परवर, बंदा नवाज, जनाब आली, आप जो है सिर्फ जो है यहाँ कहेंगे कि रोटी खा लो, खाना खा लो, लेकिन वहाँ जो है वो
1: नोश
0: फरमाइए, काम हाजिर है, आप जो है दस्तरखान पे तशरीफ रखिए। तो ये चीज जो है लखनऊ ने जो नफासत जो है जिसका
1: जो नफासत है, शाइस्तगी है और जो नजाकत है वो शायद लखनऊ की ही पहचान है।
0: अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये तीनों दबिस्तान

0: था मेरे उस्ताद जो है अली जवाहर जैदी मरहूम ने, इसलिए कि जहां भी मरकज हैं वो जो है दबिस्तान हो सकता है। और इसी के तहत मैंने दो किताबें लिखी। लखनऊ के बगल में बिल्कुल एक जगह है जैदपुर, मैंने वहां की मरसिया नगारी पे लिखा जैदपुर की दबिस्तान जैदपुर की मरसिया नगारी। अभी मेरी नई किताब आई है दबिस्तान मेरठ की मरसिया नगारी। अब ये कि दबिस्तान कैसे बनते हैं, दबिस्तान क्यों वजूद में आते हैं, रामपुर के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि यहाँ दिल्ली की नुमाइंदगी करने वाला एक बड़ा शायर जो है दाग जो है मौजूद था,
1: जी
0: और दूसरा जो है लखनऊ की नुमाइंदगी करने वाले अमीर और
1: मिनाई
0: जलाल
1: जी
0: जैसे जो है शायर
1: शायर
0: मौजूद थे।
1: यहाँ है।
0: इनके सामने ये था कि ये कैसे अपने आप को इन दोनों जो है बड़े दबिस्तानों से जो है अलग कर सकें, कि यहाँ के नवाबीन जिनका ताल्लुक पुश्तो यानी उनकी जबान जो है पुश्तो थी,
1: जी
0: इसलिए यहाँ के जो लबो लहजा है यहाँ का जो की लफ्जियात जो हैं उस पर पुश्तो और तुर्की जबान के असरात जो है वो मिलते हैं।
1: जी
0: ये जो है दिल्ली में नहीं मिलेगा, ये जो है लखनऊ में नहीं
1: लखनऊ में नहीं
0: मिलेगा।
1: मिलेगा।
0: जैसे मैं जो है एक बात जो है आपको बताना चाहूंगा, जैसे रामपुरी जो रुहेला लहजा है तो इसका असर जो है हमारे कई अजला पर पड़ा।
1: जी
0: आप बदायूं में भी जाइएगा तो ये जो है औरतों की जबान मिलेगी, मर्दों की जबान आपके जो है संभल में मिलेगा,
1: जी
0: मुरादाबाद में भी मिलेगा, बिजनौर में भी ये चीज मिलेगी। उसी तरह जो है पहेलियां जो है, एक चीज और, अब तक हमारी शायरी गजल कसीदा मरसिया मसनवी इन तमाम चीजों के जो गिर्द घूम रही थी, लेकिन रामपुर के दबिस्तान ने एक जो है अलग जो है सिंफ जो है वो दी, वो चार बैत कई चीजों को जो है
1: जी
0: रामपुर की जबान ने जो है दिया। जैसे यहाँ रामपुर की जबान में जो इस्लामी महीने हैं उनके भी जो नाम बदले हुए हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, जैसे मुहर्रम को जो आशूरा कहते हैं, आपके जो है सफर को तेजी कहते हैं, रबीउल अव्वल को बारह वफात कहते हैं, रबीउस्सानी को जो मीरा जी कहते हैं, आपके जमादुल अव्वल को जो मदार कहते हैं, जमादुस्सानी को जो ख्वाजा साहब कहते हैं, फिर उसके बाद शाबान को शब बारात कहते हैं, रमजान को रोजे के महीने कहते हैं, और शव्वाल को ईद या मीठी ईद जो है कहते हैं, ज़ीकात को खाली या ख्याली चांद कहते हैं, ज़िलहिज्जा को बकरीद या जो है आपके कबाब वाली जो है ईद
1: जी
0: कहते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: आपने सही
0: ये
1: कहा, ये
0: चीज जो
1: रामपुर की
0: है,
1: एक अलग
0: हाँ
1: पहचान
0: उसी
1: है।
0: तरह जो
1: जी
0: है यहाँ औरतों और मर्दों के नाम भी जो है अलग अलग जो है वो पुकारे जाते हैं,
1: अच्छा
0: बन्ने खान नन्ने खान
1: जी,
0: चक्के
1: ये एक
0: छज्जे
1: रामपुरी
0: खान
1: लहजा है, ये
0: लहजा
1: रोजमर्रा की बोलचाल
0: रोजमर्रा
1: के।
0: की
1: जी
0: बोलचाल है। इसने जो है बिल्कुल अपने आप को दिल्ली और लखनऊ की
1: से
0: जबान और लहजे से जो
1: जी
0: है अलग जो है किया।
1: दिल्ली की जो सादगी है वो यहाँ मिलती है,
0: जी जी
1: सोजो गदास मिलता है, और जो लखनऊ की जो मुहावरेदार जुबान है
0: हाँ
1: और जो नफासत है वो भी यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ मिलती है। एक और बात आसिफ साहब, पहले के दौर में और आज के दौर में, यानी जुबानों के दौर में, जैसे जैसे वक्त बदला और लोग बदले तो उसमें भी फर्क आया, क्या कहेंगे इस बारे में?
2: देखिए, ज़बानी तो एक ये इर्तका इसमें चलता रहता है, ज़बान हमेशा इर्तका मंजिल में रहती है। हम कहें क्योंकि ज़बान, क्योंकि आप देखिए जो पहले की ज़बान थी और आज की ज़बान बहुत फ़र्क है। अब इर्तका कैसे होता है, इर्तका मतलब ये नहीं कोई नए अल्फाज, उस मतलब नई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ वही रहती है ज़बानी के एतबार से। मान लीजिए जो अल्फाज हम पहले बोलते थे वो पुराने हो गए, अब हमें हमारे साथ मामला आते हैं, हालात बनते हैं, उससे जदीद असलाहत उसमें आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अल्फाज उसमें शामिल हो जाते हैं। ज़बान जो है वो इलाके के एतबार से
1: बदलती जाती
2: बदलती
1: है।
2: जाती है। दिल्ली जो है
1: जी
2: उसकी हैसियत हिंदुस्तान की मरकज़ की हैसियत है, दारुल सल्तनत है वो हमारा आज का, वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के लोग रहते हैं, और आज भी जो अदबी सरगर्मियाँ दिल्ली में होती हैं
1: जी
2: वो और इलाकों में इतनी
1: नहीं
2: नहीं
1: होती हैं।
2: होती
1: जी
2: हैं, तो अदबी सरगर्मियों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
1: जी
2: वहाँ पर आज भी जो लिखने पढ़ने का काम हमारा हो रहा है, जो शायरी वहाँ हो रही है, वो दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आते हैं, बसते हैं और उस पर वहाँ पर वो काम करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जो उसका असर है दूर तक, उसकी धमक कह लीजिए, वहाँ जो कुछ भी होता है अदबी सरगर्मियाँ होती हैं उसके दबाव दूर तक सुनाई हमें देती हैं।
1: देती है, और दिल्ली क्योंकि खास मरकज है तो इसलिए वहाँ पर मैं समझती हूँ सभी जुबानों को ज़्यादा
2: सभी
1: असर,
2: जमानों को जी
1: सभी
2: हाँ
1: असर दिखता है। और लखनऊ की जहाँ बात करते हैं हम, तो वहाँ पर जो पूरा हमारा पूर्वांचल है
2: जी
1: उसके असरात जो होते हैं वो लखनऊ से ही आते हैं, क्योंकि आप तो मऊ से ही हैं।
0: जी जी मैम,
1: तो अभी साहब वहाँ पर क्या है, वहाँ का कैसा माहौल है, वहाँ पर क्या उर्दू के ऐसी ही माहौल है जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखता है दिल्ली में या रामपुर में?
0: मैं आपको
1: तो
0: बताऊं कि दिल्ली और लखनऊ की उर्दू अब मुहाजिरों की मरहूने मिन्नत है। दिल्ली हो या लखनऊ हो, यहाँ के उर्दू के रखवाले आज जो है बिहार के और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो ज़्यादातर जो है वो मदारिस से आते हैं, वहाँ पर अब भी जो है उर्दू पढ़ने का चलन है और वो लोग जो है उर्दू पढ़ते हैं। और आप दिल्ली के चाहे बड़े बड़े शुअरा को देखिएगा, या लखनऊ के बड़े बड़े शोरा।

0: और रुतबा को देखिएगा
1: जी,
0: वो सब जो है मुहाजिर हैं।
1: अच्छा।
0: मैं आपको जो है जैसे एक जो है रुबाई जो है सुना रहा हूँ, अब्बास रजा नैयर जो बुनियादी तौर पे जो है अंबेडकर नगर जलालपुर के रहने वाले हैं और इस वक्त उनका रुबाइयों का दीवान जो है 5 दीवान जो है वो शाया हुआ है जिसमें 2500 रुबाइयाँ हैं, उसकी एक जो है वो मैं दिखाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ कि किस तरह रामपुर ने जो है अपने शनाख्त को बाकी रखा है, जो आप बात कह रही थी कि लखनऊ रामपुर में जो है वो चूंकि वहां तो मुहाजिरों ने कब्जा कर लिया चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो, तो अब जो है उनके एक जो है वो मैं रुबाई सुना रहा हूं। जयराम जी पिजरे में ममोला बोले, आदाब बजा ले लाते हैं मैना बोले, पढ़ ली है परिंदों ने भी घर की तहजीब, दरवाजे पे मेहमान है तोता बोले। अब जो है हमारे यहाँ का जो शायर है
1: जी,
0: जो हमारा फख्र है अजहर इनायती, वो जब उसी लहजे में बात करता है लखनऊ की, चूंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि यहाँ दिल्ली के असरात हैं, लेकिन आज जो यहाँ का सबसे बड़ा शायर है अजहर इनायती, वो जब शेर कहता है तो वो कहता है रास्तों क्या हुए वो

0: शनाख्त को बाकी रखा है। जो आप बात कह रही थी कि लखनऊ रामपुर में जो है वो, चूंकि वहां तो मुहाजिरों ने कब्जा कर लिया, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो, तो अब जो है उनके एक जो है वो मैं रुबाई सुना रहा हूं। जयराम जी पिजरे में ममोला बोले, आदाब बजा ले लाते हैं मैना बोले, पढ़ ली है परिंदों ने भी घर की तहजीब, दरवाजे पे मेहमान है तोता बोले। अब जो है हमारे यहां का जो शायर है
1: जी,
0: जो हमारा फख्र है अजहर इनायती, वो जब उसी लहजे में बात करता है लखनऊ के, चूंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि यहाँ दिल्ली के असरात हैं, लेकिन आज जो यहाँ का सबसे बड़ा शायर है अजहर इनायती, वो जब शेर कहता है तो वो कहता है रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। और फिर एक चीज जो इस शहर की, इस यानी नवाबी शहर की खसूसियत रही है, दास्तान गोई की
1: जी,
0: यानी दिल्ली में भी दास्तान गोई रही, लखनऊ में भी रही, लेकिन यहाँ की दास्तान गोई एक अलग जो है वो रहती है। वो अलग बात है कि वो दास्तानें सब जो है शाये नहीं हो गई हैं, उसको भी जो अजहर इनायती ने अपने एक शेर में जो है वो किया है, रहते थे दास्तानों के माहौल में मगर क्या लोग थे कि झूठ कभी बोलते न थे। तो बुनियादी चीज ये है जो साफ गोई, जो जिंदा दिली, जो रामपुर ने अपनी शायरी के अंदर जो है दिल्ली की उस जबान से जो दाग के वसीले से आई थी और जिसे सैकल किया था अमीर ने और जलाल ने यहाँ पर, उसकी नुमाइंदगी आज भी हमें जो है रामपुर में,
1: क्योंकि रामपुर ने उस रिवायत को कायम रखा जो दिल्ली और लखनऊ से हमें मिली, उसको आज भी जिंदा रखा है, और वही चीज और वही असरात आज हमें हर जगह देखने को अपने मिलते हैं। तो आज की जो ये मुबाइसा था, इससे साफ जाहिर हो गया कि बात चाहे दिल्ली की उर्दू की हो या लखनवी उर्दू की हो या फिर रामपुरी उर्दू की हो, इन तीनों का रिश्ता एक ही दरख्त के अलग अलग टहनियों या शाखाओं की तरह है। हाँ, अगर दिल्ली ने इस जुबान को दिल दिया तो लखनऊ ने इस जुबान को बोलने का सलीका दिया और उसको तहजीब दी। रामपुर ने इसकी आबियारी की हिफाजत की, क्योंकि जब इसके पुराने आशियाने उजड़ रहे थे, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि मुगलिया दौर का खात्मा हो रहा था, तो दाग साहब ने रामपुर का रुख किया और अमीर मिनाई साहब जो कि लखनऊ से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी इसे अपना मस्कन बनाया और यहीं मुकीम हुए। और ये इस बात का सबूत है कि रामपुर ने दोनों रिवायतों को गले लगाया, क्योंकि उर्दू है ही ऐसी मीठी जुबान और इतनी शीरी है कि जो कानों में रस जहाँ घोलती है, ये वहीं दिलों को भी जोड़ती है। शायद कोई ही ऐसी जगह हो जहाँ पर दुनिया के ऐसा कोई खित्ता हो या जगह हो जहाँ उर्दू ना बोली जाती हो, कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। आज की इस गुफ्तगू से साफ जाहिर हो गया कि उर्दू हमेशा जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगी, और इसने खिदमत की है और वो हमेशा खिदमत भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आपने अपने बेशकीमती राय हमारे इस प्रोग्राम में दी। दिल्ली उर्दू, लखनवी उर्दू और रामपुरी उर्दू, जुबान और लहजे का असर। इस मुबाइसे में जो हजरात थे वो थे डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन और प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब। आज का ये मुबाइसा इख्तिताम करने की अपनी मेजबान आयशा राहत को रामपुर रेडियो मरकज से दीजिए इजाजत।
2: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मोहम्मद फिरोज अहमद के स्वर में ये भजन।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मोहम्मद फिरोज अहमद को। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में इनके स्वर में ये भजन।

सुगम संगीत का कार्यक्रम इसी के साथ अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद सुनेंगे आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। ये बैठक संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की एकता का प्रदर्शन करना है। इस दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी को सम्मानित करने के लिए एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न

0: मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी भेंट करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावेर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और आपसी संबंधों में व्यापक सहयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की स्वीकृति दे दी है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भारतीय चुनौती रखेंगे। ओलंपियन तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋतुका शिवानी गड्डे मिक्स डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। किशोर कुमार की आवाज, योगेश के बोल, संगीत आर डी बर्मन का। फिल्म का नाम मंजिल।

अगला गीत सुनिए सुरेश वाडकर अनुपमा देशपांडे की आवाज में, आनंद बख्शी की बोल, संगीत शिवहरी का, फिल्म का नाम चांदनी।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए सोनू निगम सुनिधि चौहान की आवाज में, परशुन जोशी के बोल, संगीत जतिन ललित का, फिल्म का नाम फना।

फना फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक गीत का, और इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं जंग बहादुर यादव और साथी, संगीता राय, शशि बाला जैन। सबसे पहले सुनिए जंग बहादुर यादव और साथी के स्वर में ये देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना जंग बहादुर यादव और साथी के स्वर में ये लोकगीत। लीजिए सुनिए संगीता राय के स्वर में दादरा।

शशिबाला जैन के गाए इस विदेशिया गीत के साथ ही लोकगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार, उसकी कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना। ये कार्यक्रम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान।

0: जतिन खन्ना बचपन का यही नाम था। इनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर ब्रिटिश भारत में हुआ था। फिल्मों में राजेश खन्ना के नाम से ख्याति मिली। ये बॉलीवुड के अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्में बनाई और राजनीति में भी प्रवेश किया। वे नई दिल्ली लोकसभा सीट से 5 वर्ष 1991 से 1996 तक कांग्रेस पार्टी के सांसद भी रहे। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने कुल 180 फिल्मों, 163 फीचर फिल्मों में काम किया, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया। 3 साल 1969 से 1971 के अंदर 15-16 हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड का स्टार का खिताब अपने नाम किया। उन्हें फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और 14 बार मनोनीत किए गए। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी 4 बार आपके नाम रहा, 25 बार आपको मनोनीत किया गया था। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। बात को आगे बढ़ाएं, इसके पहले आइए सुनते हैं उनकी एक सुपरहिट फिल्म का गीत।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा।
0: और ये फिल्म है आराधना।
1: अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मी के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन था आरडी बर्मन का। शक्ति फिल्म के बैनर तले बनी यह फिल्म अपने

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: जब एक बार सुपरस्टार का खिताब लग जाता है तो जाहिर सी बात है फिल्मों में लिए जाने की होड़ मच जाती है। ये ट्रेंड रहा है। कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे दुनिया होती है। लगातार फिल्मों की सफलता ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार का खिताब दिया और ये फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं। एक फिल्म आई थी महबूब की मेहंदी, इस फिल्म के गीत बहुत बहुत बहुत हिट हुए थे। अगला गीत हम आपको इसी फिल्म से सुनवा रहे हैं।

1969 में एक फिल्म आई थी दो रास्ते, इसके गीत पूरे देश में लोकप्रिय हुए और हिंदी भाषी लोग या भारतीय संस्कृति का पोषण करने वाले लोग दुनिया में जहाँ जहाँ भी थे उन्होंने इन गीतों को सराहा। उसी फिल्म से एक गीत हमने चुना है आपके लिए, आइए सुनते हैं।

महबूब प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म आई थी अमर। इसके गीत शकील बदायूनी ने लिखे थे और संगीत निर्देशन था नौशाद का। आइए सुनते हैं इस फिल्म से एक गीत। आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। इसमें पूरा जीवन दर्शन भी है।

ये वो दौर था जिसमें प्रेम कहानियाँ लिखी जाती थीं, जीवन के मूल्य होते थे, प्रेम पर फिदा हो जाना ही नायक का कर्तव्य होता था। जिंदगी की तमाम उतार चढ़ाव को झेलते हुए मोहब्बत ही सर्वोच्च होती थी। मोहब्बत व्यक्तित्व से शुरू होती थी, व्यक्तिगत रूप से, समाज से होती हुई देश तक पहुंचती थी, उसके बाद अगला पड़ाव विश्व होता था। यही भारतीय संस्कृति का मूल भी है। एक फिल्म आई थी सफ़र, जिसके गीत बहुत ही हिट हुए थे। हमने अगला गीत उसी फिल्म से लिया है, जिसे आवाज़ दी है मुकेश ने। गीत के बोल इंदिवर ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है। ये फिल्म MR प्रोडक्शन के बैनर तले बनी थी।

18 जुलाई 2012 को इस सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम से प्रसिद्ध कलाकार की दुनिया से विदाई हो गई, लेकिन बहुत कुछ छोड़ गए अपने पीछे। उनका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत बेहतरीन रहा, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने संबंधों का आखिरी वक्त तक निर्वाह किया, और यही अंतिम गीत संदेश के रूप में। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आपने सुने राजेश खन्ना की फिल्मों के गीत और उनकी जिंदगी के बारे में। उन फिल्मों के नाम हम आपको बता दें जिनके गीत हमने इस फिल्म में आपको सुनवाए: आराधना, महबूब की मेहंदी, दो रास्ते, अमर और सफ़र। अब इस कार्यक्रम को ख़त्म करने की अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान को दीजिए इजाज़त। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दीपक राय की थी।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

इस समय आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र आपकी सेवा में है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अभी आपने सुना चलो इश्क लड़ाएं फिल्म का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाजों में। रचना समीर की थी और संगीत निर्देशन था हिमेश रेशमिया का। अगला गीत फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत निर्देशन OP नैयर का।

आवाज़ सुनते हैं बरसात फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, रचना रमेश शास्त्री की है और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

आया सावन झूम के। कार्यक्रम का अगला गीत तो इसी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सावन को आने दो। अगला गीत इसी फिल्म से सुलक्षणा पंडित और येसुदास की मिली जुली आवाजों में। गीत के बोल माया गोविंद के हैं और संगीत निर्देशन है राज कमल का।

और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाज़ों में। गीत के बोल इब्राहिम आश्क ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

0: मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में एसएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां प्रसारित होगा रात 9:30 पर। सबरस सुन सकते हैं आप रात 8:30 पर।

गार्गी द्विवेदी के गाए भजन सुनिएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर हम प्रसारित करेंगे दीक्षा पांडे का काव्य पाठ। पंचायत घर रोज की तरह शाम 6:30 पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पर चर्चा के अलावा विजय शंकर त्रिपाठी का रामायण पाठ और दिनेश कुमार और साथियों का गाया विकास गीत हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में।

ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट 1:15 पर। इस कार्यक्रम में अनुराधा कुमारी की वार्ता सुनेगा वृक्षारोपण आज की आवश्यकता। इसके अलावा सरोज सिन्हा के गाए लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश 12:30 पर प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर पंडित गोपाल दास का राग शुद्ध सारंग में क्लोरिनेट वादन हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

युवाणी शाम 5:15 पर। युवा श्रोता सुनेंगे सूचना क्रांति के दौर में भ्रांतियां और यथार्थ विषय पर चर्चा के अलावा आज की प्रेरणा पुंज सत्यनारायण भिलेरी के विषय में। गुलाब सिंह यादव और साथियों का ये लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5:00। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग दोपहर 2:30 पर।

विवेक और बुद्धि ये दोनों हमारे सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। यदि हमारा विवेक किसी भी परिस्थिति में हमारा विवेक काम कर रहा है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। याद रखिए, किसी भी मूल्य पर हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित गोपाल दास का राग शुद्ध सारंग में क्लोरियोनेट वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुदर्शन राम और तानपुरे पर श्रीकांत वैश्य। तो आइए सुनते हैं पंडित गोपाल दास का राग शुद्ध सारंग में क्लोरियोनेट वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल दास से राग शुद्ध सारंग में क्लोरिनेट वादन। आपके साथ तबले पर थे सुदर्शन राम और तानपुरे पर संगत की श्रीकांत वैश्य ने। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। अगला कार्यक्रम, हेलो, फरमाइश कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार। इस समय आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र आपकी सेवा में है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं श्रोताओं की फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति मधु कुमार की है।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार,
1: प्रयागराज घोसी हवेलिया से महेंद्र नाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: जी महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मुगले आजम झूठी कहानी के रोए, बड़ी चोट खाई जवानी के रोए।
0: अच्छा महेंद्र जी, आपका जब भी कॉल आता है आप हमेशा, हमने देखा है, पुराने गानों को ज्यादा सुनना चाहते हैं।
1: हाँ मैडम, पुराने गानों को बहुत ही अच्छे लगते हैं और उसमें मिठास होती है गाने में, जो
0: जी,
1: है
0: जी जी
1: सुनने में अच्छा लगता है गाना जो है।
0: जी जी जी,
1: और बहुत बढ़िया लगता है कार्यक्रम में मैडम, आपका सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: प्रयागराज जी को हम।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने हमें इस कार्यक्रम में कॉल की अपनी पसंद
1: के। ले ले थोड़ा सा।
0: हाँ हाँ जरूर ले लीजिए।
1: जी शुभम कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा, दीपिका कुशवाहा।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का मुगले आजम फिल्म का ये गाना, आवाज है लता मंगेशकर की। नमस्कार।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: पवन निषाद निजी कला बंद बुकड़ा सर।
0: जी पवन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का।
0: राज फिल्म का कौन सा गाना है?
1: कोई भी गाना सुनवा दीजिए।
0: तो सारे गाने पसंद हैं आपको राज फिल्म के?
1: हाँ जी मैम।
0: ये पुरानी वाली राज की बात कर रहे हैं या नई वाली जिसमें विपाशा वासुने का?
1: पुरानी वाले,
0: जो सबसे पुरानी फिल्म थी।
1: हाँ।
0: अच्छा अच्छा, तो आपको मोहम्मद रफी की आवाज में हम राज फिल्म का एक गाना सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: नमस्कार।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हटिया तहसील हटिया थाना हटिया गांव मगरा जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद यादव जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनना है मैम।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। नाम तो नहीं लेने किसी के?
1: जी हमारे परिवार वाले हैं
0: जी।
1: हमारे पिताश्री हैं रामचंद्र यादव, हमारे मम्मी का नाम है चित्ररेखा देवी यादव, हमारी तीन दीदियां हैं आंचल यादव, काजल यादव, शिखा यादव, हमारा छोटा भाई अंकित यादव, हमारे दोस्त हैं सुमित यादव, प्रियांशु यादव, हरिओम यादव और साहरलाल यादव।
0: तो आप सबको सुनवाने जा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मधु जी, मैं तुलसीदास प्रयागराज चाका ब्लॉक से बोल रहा हूँ।
0: जी तुलसीदास जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम पिक्चर का गाना सुनना है
0: जी।
1: तेरे तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम मौका के नहीं
0: जी।
1: और कुछ लोगों का नाम लेना चाह रहा हूँ।
0: जी जरूर ले लीजिए।
1: विनोद कुमार यादव, अखिलेश कुमार सिन्हा, चंद्र प्रकाश मिश्रा, दिनकर शुक्ला और जिजावन।
0: तो आपकी
1: विश्राम।
0: अच्छा जी, तो आपकी पसंद का संगम फिल्म का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं। तुलसीदास जी की पसंद है तो लीजिए सुनिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। और मैं हूं मधु, आपके पसंदीदा गीतों को लेकर। हेलो, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गाँव भूपिया माऊ डिलीवर जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी भूपिया से हैं रोशनी जी हमारे पास हमारे साथ, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल हैं सावन का महीना आया है घटा से बरसा है पानी।
0: जी अब बस सावन लगने ही वाला है
1: जी,
0: तो आपने ये गाना इसीलिए सुनना चाहा है
1: जी।
0: तो आपकी पसंद के इस गाने को रोशनी जी हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, बरसात का मौसम है, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके आसपास अगर बिजली के खंभे हैं तो कभी कभी उनमें विद्युत प्रवाह हो जाता है। इससे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसके पास न जाएं या उसको न छुएं। ख़ास तौर से आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखें। बाहर निकलते हैं तो बच्चे को हमेशा अपने साथ रखें, उसको इधर उधर न जाने दें। कभी कभी सड़कों पे गहरे गड्ढे होते हैं, ये भी घातक हो सकते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, उसके बाद इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी लखनऊ केंद्र से। बने रहें हमारे साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान NDA के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से

0: हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में NHPC तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज SS प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, also known as Mangal Milan, at Parliament House Complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi said all those involved in the paper leak case have been arrested, with 13 accused currently lodged in jail.
2: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
2: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है।
1: Mr. Rijiju said Prime Minister Modi also spoke about the free trade agreements that India has signed with several countries. Referring to the ongoing monsoon session of Parliament, the Prime Minister said the NDA will play a constructive and positive role in ensuring the passage of bills. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. over the opposition uproar on various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the House took up motions for election to different committees of the Parliament amid opposition uproar. Presiding Officer Sandhya Ray urged the members to return to their seats and allow the House to function smoothly. Despite her appeal, the opposition members came to the well with placards and carried on sloganeering over NEET and student protests. It led to adjournment of the Lok Sabha till 2 p.m. When the Rajya Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan appealed to opposition members to go to their seats and allow the House to function, but the opposition did not pay heed to his advice. Amid uproar, the Rajya Sabha was also adjourned till 2 p.m. India today summoned the Russian chargé d'affaires Vladimir Ladanov following the attack on the commercial vessel MV Golden Leo on the 19th

0: साल रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। वज़ीर मुमलिकत दानिश आज़ाद अंसारी की पहल पर मरकजी हुकूमत ने हज दरख्वास्त की आखिरी तारीख 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी ने पहली मुकर्रा तारीख के अंदर 19,280 हज दरख्वास्तें वसूल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। अंदाजा लगाया गया है कि आखिरी तारीख तक रियासत से दरख्वास्तों की कुल तादाद 25,000 से 30,000 के दरमियान पहुंच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कई अर्जियों पर समाअत की, जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर अतिया की मुनसिफाना बरवक्त तहकीकात का मुतालबा किया गया था। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि वो इस मामले में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तश्कील 9 पर गौर करे, ताकि तफ्तीश बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुतलका फरीकों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अतिया के मामले पर सियासत न करने की भी हिदायत दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोमालिया बागची और जस्टिस वी मोहिना पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि राम मंदिर की पेशकश का तनाजा एक सादा फौजदारी मामला है और अदालत की वाहिद जिम्मेदारी है कि वो मुनासिब तहकीकात को यकीनी बनाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को मुतला किया कि रियासती हुकूमत ने इल्जामात की तहकीकात के लिए एक SIT तश्कील दी है और रियासती पुलिस अब इस मामले की तहकीकात कर रही है। केस की आइंदा समाअत 27 जुलाई को होगी। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के बेशतर अजला में वक्फे से होने वाली बारिश से नदियों की सतह आब तेजी से बढ़ रही है। लखीमपुर खीरी में दरियाए शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी और कुशीनगर में दरियाए गंडक खतरे के निशान पर पहुंच गई है। बारिश से निजामी जिंदगी भी दरहम बरहम है। पीलीभीत जिले में मुसलसल बारिश की वजह से 8वीं जमात तक के स्कूलों को आज बंद कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने कल तक रियासत भर में मूसलाधार बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मध्यान्ह के 1:15 में और ये समय है ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम पनघट का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

0: जया, अरे ओ जया, अरे हम तुमसे कहा राम राम।
1: अरे अरे जरा ठहरा तो सखी, राम राम तो करी थी तो से गुइया, पर पनघट सुने बैठी सब बहनी लोगन के भी जरा राम राम कह लिया जाए।
0: बिल्कुल, जया और गंगा के राम
1: राम
0: राम।
1: राम। गंगा, देखा सखियन से तो राम राम कह लिया, अब तू तो अपन हालचाल बताए दा हमका।
0: देखा हाल चाल बिल्कुल ठीक बा, और देखा पानी बरसत बा, है ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: काल तो हमार पूरा एकदम अनियार हो गया रहा धाने में, खेते में धान लगावत लगावत।
1: हाँ
0: और अब की बेरी हमका तो लागत बा कि फसल बहुत अच्छी हुए धान के, है
1: हाँ देखा,
0: ना।
1: हाँ देव राजा देखा तैयार है, और देखा बेहन बोए आए गवाह है, तो पानी भी खूब अच्छा जोन है, वर्षा से जा रहा
0: बिल्कुल,
1: है।
0: देखा समय समय पे पानी बरस देते हैं, धान लागत बा जोर शोर से एकदम अपने गांव देश में।
1: हाँ
0: तो अब में लागत है कि धान के फसल अच्छी होए
1: हाँ
0: तो खूब पैसा होए, है
1: और का, तो
0: ना।
1: देखा किसान भैया लोगन के कितना खुशी होए, और देखा पैसा है तो सब है, थोड़ा
0: खुशी
1: बहुत
0: है,
1: हाँ खुशी
0: हम
1: है।
0: तो अपने उनसे कहे देखा धान एक फसल अच्छे से हो जाए तो हमका झुलनी चाहिए अपनी।
1: अपना वो की है कि हाँ तगादा कि भैया हमका
0: बिल्कुल,
1: झुलनी दवाई दिया।
0: देखा
1: हाँ
0: पैसे से और खुशी से संबंध मजे के प्रगाढ़ बा,
1: हाँ
0: है
1: ये तो
0: ना।
1: बात है। देखा गंगा, तू आज ये बात करो थू, तो कस ना आज यही पे बत कही भी कह लिया जाए।
0: बिल्कुल बहनी, देखा पैसे और खुशियों का संबंध आज अपने पनघटे पे यही पे हम सब चर्चा कर जाओ। देखा पैसा और खुशी के संबंध तो बा, लेकिन हर जगह ना है पैसा, खुशी तो देत है लेकिन
1: कुछ पल की,
0: सुकून ना है देत।
1: बिल्कुल सही। देखा पैसा कुछ पल की खुशी के लिए सही है, हमार रोजमर्रा की जो रोजमर्रा की जो जरूरत है
0: हाँ पूरी
1: वो
0: करत
1: पूरी।
0: है।

0: गलत है,
1: बिल्कुल
0: पर देखा पैसा जिंदगी चलावे के खातिर जो उन्हें जरूरी है, एमा कोनो शक वाली बात नहीं गंगा, पर बाकी एक एकर दूसर पहलू भी है। वो पहलू है कि जैसे पैसा खुशियन की पूरी गारंटी नहीं होत, हमार
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल
0: से सोचब है।
1: देखा ये एक ऐसा प्रश्न है बहनी कि जेकर उत्तर हर मनई अपने अनुभव अपने परिस्थिति और अपने सोच के आधार पे देते हैं।
0: बिल्कुल
1: जैसे
0: सही।
1: देखा क्यों कहा था कि पैसा सब कुछ है ना, तो क्यों कहा था पैसा हाथ के मैल है, लेकिन सच्चाई दोनों के बीचे में बकही
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: सही, एक संतुलन माँ
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: तो देखा धन से दवाई खरीदी जा सकता है जैसे बोलू, लेकिन स्वास्थ्य ना है ना।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
1: और
0: सही।
1: धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है,
0: हाँ,
1: लेकिन सच्ची खुशी ना
0: खुशी
1: खरीदी
0: नहीं।
1: जाए सकती।
0: देखा गंगा, पैसा जितना उतना जरूरी, मतलब जितना जरूरी है उतना वही के साथ साथ देखा संतोष, प्रेम, अपनापन और
1: बिल्कुल
0: नेकी भी जरूरी है। पैसा तो जरूरी है,
1: हाँ
0: पर
1: हाँ
0: देखा ये जो मानवता वाले लक्षण है, एहू हम लोगन में होएगा चाहिए।
1: बिल्कुल
0: मन ही सोचते कि धन यदि है तो कोनो परेशानी ना होए, पर देखा ऐसा होत नहीं।
1: बिल्कुल
0: यदि
1: नहीं।
0: मन बेचैन है, देखा खूब पैसा होए अब मन बेचैन है और परिवार में एक दूसरे में प्रेम नहीं है, तो वो धन बताओ कोनो काम के
1: कोनो
0: है।
1: काम के ना है ना, मने धन रखे रखे चला जाता भाई
0: बिल्कुल।
1: दुनिया से।
0: और देखा फिर परिवार में प्रेम ना होए तो फिर का मतलब है। और
1: बिल्कुल
0: देखा जो उन परिवार में अपनापन, सम्मान और प्रेम जो उन होत है, वो
1: बिल्कुल
0: मिलजुल के रहे कि जो उन भावना है, ये पैसा ना ही खरीद सकत।
1: ये बात देखा बहनी एकदम बढ़िया कहो कि आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार संपत्ति बा, फिर भी वे मानसिक तनाव अकेलापन से
0: बिल्कुल।
1: जूझत
0: और
1: हैं,
0: देखो खुशी नहीं
1: खुशी
0: है।
1: ना है ना। और जेकरे पास देखा परिवार बा, वो प्रेम अपनापन सीमित साधन बा उनके
0: बिल्कुल
1: लगे,
0: बिल्कुल।
1: मतलब बहुत बहुत ज्यादा उनके पास सुविधा ना है ना, बहुत सारी चीज ना है ना, लेकिन उनके आपस में प्यार बा, अपनापन बा, संतोष बा, उनका जीवन देखा कितना खुशहाल बा।
0: बिल्कुल। देखा जब लोग थोड़े साधन में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, हाँ, देखा धन मतलब ढूंढ ले का चाहिए। और देखा खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण होता अपने आसपास। यही बात कहे, मतलब हम लोग आज अपने पनघट के माध्यम से अपने सखियन का, अपने भैया लोगन का भी कहे चाहिए थी कि पैसा हमार जीवन के आधार तो है,
1: हाँ
0: पर वो हमार खुशी के आधार नहीं है।
1: बिल्कुल। अगर पैसा खुशी खरीद सके तो हर अमीर व्यक्ति के चेहरे पे हरदम मुस्कान
0: हाँ
1: होते है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: देखा कई बार ऐसा हम तो देखा है गंगा कि लोग जो ना ऊपर से ऐसा लगे थे कि बहुत खुश है, पर जब तू उनका एक किनारे से जाए कि उनका थोड़ा समझा जाना, तो तुका समझ में आई कि ओके मन में कितना दुख भरा है। वो
1: कितना दुख।
0: लोगन के बीच में खुश है थोड़ी पल के लिए, पर देखा अंदर से वो बहुत दुखी है।
1: दुखी है।
0: पर देखा एक ऐसे पैसा के कोई संबंध नहीं है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: है।
0: एक महत्व देखा कहा जाता है ना, देखा माता पिता की ममता, दोस्ती, दोस्ती
1: बिल्कुल।
0: में देखा सच्चाई, मन में सुकून और मुस्कान, कबो जन जन का धन से खरीदा जा
1: बिल्कुल
0: सकते,
1: बिल्कुल
0: कहो भी
1: नहीं
0: नहीं।
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो यही लिए देखा कहा जाता है कि पैसा जिंदगी के सहारा है, बाकी खुशी के असली आधार प्रेम, संतोष और अच्छे कर्म है।
1: बिल्कुल
0: जे मनई का धन के साथे साथे नेकी, दया, ईमानदारी और अपनापन निभावत है।
1: निभावत है बनी। देखा पैसा जोन बना वो खुशी के विकल्प ना है, बल्कि खुशहाल जीवन के एक साधन है।
0: बिल्कुल सही।
1: जब पैसा मने ईमानदारी से कमाते है और सही दिशा में खर्च करते है ना, तो उकरे साथे साथे देखा रिश्ता, संस्कार, स्वास्थ्य और संतोष भी जुड़ते है,
0: बिल्कुल सही।
1: जो उनके जीवन के वास्तव में सुखी बनावत है मने
0: बिल्कुल
1: इनके।
0: सही। देखा गंगा बात ये भी है कि देखा मतलब बात तो बहुत सारी है धन की, जो उन बात है पैसा जो है हमार सब, देखा हर व्यक्ति के जीवन में पैसा जरूरी है और जरूरी रहे भी चाहिए। कैसे कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो उनकी वो
1: बिल्कुल
0: हमार सबकी पूरी करत है,
1: बिल्कुल
0: पर खुश रहे के लिए पैसा की आवश्यकता नहीं है अपने। और देखा यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास जितने लोग हैं उनके बीच जितना हो सके खुश रही, उनका खुश रखने की कोशिश करी, चाहे साधन कम भी हैं। हाँ
1: बिल्कुल। देखा
0: तो
1: पैसा कमा लेकिन रिश्ता मत खोवा, सफलता पावा लेकिन मुस्कान मत खोवा है ना, संपत्ति बढ़ावा लेकिन इंसानियत कभी मत छोड़ा। धन जरूरी है, बाकी खुशियन के असली चाबी तो संतोष, प्रेम, परिवार और अच्छे संस्कार है।
0: बिल्कुल सही।
1: धन से देखा खुशी मिल सकत है, पर सच्ची खुशी खाली अच्छे रिश्ता और अपनापन प्यार से मिलत है।
0: बिल्कुल
1: ओका
0: सही।
1: बनाए के रखा रिश्ते में, मतलब एक प्रगाढ़ता रहा है कि हाँ ठीक है, चला एक टाइम ना खावे खाना तो चल जाए, लेकिन अगर आपस में बातचीत ना है ना, बोलचाल ना है ना, तो मन के अंदर अंदर सालत है ना।
0: देखा गंगा, एक बात याद आई गई कि एक प्रेमी जोड़ा है मान लो, तो कहा जाते कि इका चाहे प्रेम भाव वाली बात

0: कैला, कहा वो कहा थी कि दिखा एक रोटी होए तो आधी तू खाएला आधी हम
1: आधी हम खाएली, बिल्कुल। प्रेम और देखा, प्रेमी जोड़ा होए, पति पत्नी होए, माता पिता हो, ये सब पे लागू होते हैं कि भैया अगर एक आधी रोटी कम मिले, हम आधी रोटी खाए के पानी पी के प्यार अगर रहे तो आदमी हंसी खुशी सोई जाए,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन पेट भरा बा, मने में कोनो बात चलत बा, उनके प्रति दूसरे के प्रति खुन्नस बा, तो तू रात भर बैठ के जागत रह तो नींद ना आए,
0: बिल्कुल सही। और देखा, लेकिन एक बात और भी है, देखा एमा एक बात और भी है, देखा जब रोटी आई है तो पैसा से आई है, हाँ, ध्यान रखेगा,
1: बिल्कुल। तो देखा मतलब एक वो जरूरी है कि निश्चित
0: संतुलन,
1: हाँ संतुलन जरूरी है,
0: संतुलन
1: मने के जिंदगी में संतुलन रहे तो जिंदगी बहुत अच्छी चले,
0: बिल्कुल सही। तो देखा तो
1: देखा हम जाने दे कि तो हम गाँव नहीं सुने के देर हो तो हम देखा इतनी अच्छी अच्छी बात हम सभी की, अब चला तो का बढ़िया से एक ठो गाँव नहीं सुनाई दी सरोज सिन्हा बहनी से, चला सुना जाए,
0: चला सुना जाए बहनी।

0: गंगा
1: हाँ भाई नहीं
0: देखा, तू गीत तो खूब जोरदार सुनाओ।
1: है ना देखा जानकारी के साथ साथ गीत गाना ही होत रहा था तो पनघटे हरियरी बनी रहा था
0: और का देखा, सावन बस आवे वाला है तो हरियर हरियर जो बोला तो ना अपनी बातन से हम सब समझे थे।
1: तो देखा आज अपने पनघटे पे एक वार्ता बा, वृक्षारोपण आज की आवश्यकता।
0: बिल्कुल
1: अनुराधा कुमारी बहनी वार्ताकार हैं तो चला सुना जाए और बहनी हरण भी सुने।
2: हम सभी जानते हैं कि वृक्ष प्रकृति का अनमोल उपहार है। वे न केवल हमें छाया, फल फूल, लकड़ी, औषधियाँ और अन्य उपयोगी सामग्री प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन का मूल आधार प्राणवायु भी देते हैं। वृक्षों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। फिर भी आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ पेड़ों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अतः वर्तमान समय की मांग यही है कि प्रकृति से प्यार करो, वृक्षारोपण स्वीकार करो। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो आधुनिकता, शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जगह जगह जंगलों को समाप्त कर इमारतें, सड़कें और कारखाने बनाए जा रहे हैं। नतीजा यह है कि पर्यावरण असंतुलित हो चुका है। हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया के लगभग 30% जंगल समाप्त हो चुके हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में शुद्ध हवा और पानी दुर्लभ हो जाएंगे। वृक्ष हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, वे हमारे मौसम को संतुलित, मिट्टी को उपजाऊ और जल स्रोतों को संरक्षित करते हैं। एक बड़ा वृक्ष प्रतिवर्ष करीब 100 किलो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और लगभग 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। इसके अलावा वृक्ष जैव विविधता को संरक्षित करते हैं, वे भूस्खलन और मृदा अपरदन को रोकते हैं। गांव और शहरों में हरियाली से मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। पर्यावरण को पुनः संतुलित करने के लिए सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है वृक्षारोपण। यदि हर व्यक्ति वर्ष में केवल एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो कुछ ही वर्षों में करोड़ों वृक्ष धरती पर लगाए जा सकते हैं। वृक्षारोपण से तापमान नियंत्रित होते हैं, वर्षा में सुधार आता है, जैव विविधता बढ़ती है और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता कम होती है। यह केवल सरकार या संस्थाओं का नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह वृक्षारोपण में सक्रिय भागीदारी करे। हमें स्कूलों, कॉलोनियों, खेतों, खाली जमीनों और शहरों में पौधे लगाने चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम केवल पेड़ ना लगाए बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण भी करें। बच्चों को भी बचपन से यह सिखाया जाना चाहिए कि पेड़ ही हमारे सच्चे मित्र हैं, निस्वार्थ, निशब्द लेकिन अत्यंत उपयोगी। वृक्षों को बचाना और लगाना आज केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक संकल्प, एक आंदोलन और एक नैतिक कर्तव्य बन चुका है। यदि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर पर्यावरण देना है तो वृक्षारोपण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हर वर्ष कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, जब अंतिम पेड़ काटा जाएगा तब मानव समझेगा कि पैसे खाकर जीवित नहीं रहा जा सकता। यदि वृक्षारोपण ना किया गया तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा और मानव जीवन अत्यंत कठिन एवं संकटग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हमें

अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। यदि वृक्षारोपण ना हुआ तो धरती और मानव जीवन पर इसके गहरे और भयावह प्रभाव होंगे। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती है। वृक्ष न होने से बारिश और हवा मिट्टी को बहा ले जाएंगी, जिससे उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वृक्षारोपण के अभाव में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी और धरती का तापमान असामान्य रूप से बढ़ेगा। वन्य जीवों का आश्रय स्थल पेड़ ही है। यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो कई जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं। मानव जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वृक्ष ही प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। उनकी अनुपस्थिति से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, जिससे श्वास संबंधी रोग बढ़ेंगे। पेड़ और पौधे ना हो तो कृषि प्रभावित होगी। फल, अनाज और सब्जियां कम हो जाएंगी, जिससे भुखमरी फैलेगी। प्रदूषण, गर्मी और गंदगी बढ़ने से वायरल, बैक्टीरियल और फेफड़ों की बीमारियां अधिक होंगी। बाढ़, भूस्खलन और सूखे जैसी आपदाएं अधिक होंगी, जिससे जन धन की हानि बढ़ेगी। वातावरण में असंतुलन आने से जीवन जीना कठिन होगा, जिससे मानव सभ्यता के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकते हैं। इसलिए कहा गया है, हरियाली है जहां, खुशहाली है वहां। पेड़ है प्रकृति का वरदान, इनसे है जीवन की पहचान। वृक्ष नहीं तो श्वास नहीं। वृक्षों से लकड़ी, फल फूल, औषधियां आदि प्राप्त होते हैं, जिससे आय के स्रोत बनते हैं। कागज, रबर, इत्र और दवाइयां बनाने में वृक्षों का उपयोग होता है। वृक्षों का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी होता है। वृक्षारोपण सामूहिक सहभागिता और पर्यावरणीय चेतना को बढ़ाता है। इसलिए वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ, धरती को फिर से हरा भरा बनाओ। वेदों और पुराणों में वृक्षों का विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को जीवंत प्राणी के रूप में देखा गया है और उन्हें देवताओं के समान पूजा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि में वृक्षों को पवित्र, उपयोगी और जीवनदायी कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया है, वनस्पते वर्धस्वनः प्रजाः पूष्णा पुनातु भूमिम्। हे वनस्पति, तू वृद्धि को प्राप्त हो, हमारी संतानों की रक्षा कर और पृथ्वी को पवित्र बना। ऋग्वेद में वृक्षों को विश्वदेव कहा गया है, अर्थात वे समस्त देवताओं का स्वरूप है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि वृक्षों में भी आत्मा होती है। वृक्षों को प्राणवान जीव माना गया है। उनमें भी चेतना, संवेदना और जीवन होता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गरुण पुराण आदि में वृक्षारोपण को पुण्य का कार्य बताया गया है। पीपल, इसमें विष्णु जी का वास माना जाता है। बरगद, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों का निवास इस वृक्ष में माना गया है। तुलसी, लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है। बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है। आंवला, नीम, अशोक, कदम आदि वृक्षों को भी धार्मिक महत्व प्राप्त है। वृक्षों की छाया, फल, पत्तियां, जड़ें, फूल सभी का धार्मिक दृष्टि से उपयोग होता है। वेद पुराण हमें सिखाते हैं कि वृक्ष केवल संसाधन नहीं बल्कि ईश्वर के स्वरूप हैं। वृक्षों की रक्षा करना, पूजा करना और लगाना, ये सभी पुण्य के कार्य हैं। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण और प्रकृति के साथ एक आध्यात्मिक संबंध है और वृक्षों को धरती के रक्षक के रूप में सम्मान दिया गया है। वृक्ष केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है। वे हमें जीवित रहने में मदद करते हैं और धरती पर जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। इसलिए वृक्षों को संसाधन मानकर केवल दोहन करना गलत होगा। हमें उन्हें संरक्षित और संवर्धित करते रहना चाहिए। वृक्षारोपण केवल एक पर्यावरणीय कार्य नहीं बल्कि यह आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वर्षा की कमी, जैव

0: विविधता के विनाश और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण में ही निहित है। वृक्ष न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, बल्कि मनुष्य सहित समस्त प्राणियों के जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: जय बहनी,
2: गंगा बहनी,
1: देखा कितना बढ़िया से अनुराधा बहनी फरियाए फरियाए बताई ने। पर हमऊ सब जब छुटवार रहे हैं तो जोन दादा नानी कहानी सुनावत रहे कि पहले देखा पीपल के पेड़ में भगवान जी रहा थे, उनका पूजा करे के चाहिए, उनका काटे ना।
2: सही,
1: लेकिन देखा असल रीजन का रहा कि पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन बहुत मात्रा में रहा था।
2: बिल्कुल,
1: तो ऐसे कुछ विज्ञान के रीजन भी हैं, विज्ञान के मतलब उदाहरण उदाहरण है कि मतलब एक करे से ई होता है।
2: देखा
1: पूर्वज लोग,
2: हाँ देखा वो सब जोड़े हैं, ये सब जो जन पुरानी जो प्रथाएं हैं, जो तथ्य हैं, ये बेकार नहीं है। इनके जो ने कोनो ना कोनो जो ने वैज्ञानिक कारण भी हैं, हाँ तो देखा इनका हमेशा कभी भी देखा कहा जाता है ना पुराने लोगों की बात माने चाहिए, यही लिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कोई निराधार है, उनके सबके कुछ ना कुछ आधार
1: यही बहाने देखा आदमी पेड़ पौधा लगावत रहा, उनका बचावत रहा। कहा ना एक बार देखा कि पेड़ लगावा तो एक जैसे कि एक बिटवाक वाला थे,
2: हाँ बिल्कुल
1: उतना
2: बहु देखा आज, बिल्कुल देखा आज जो हम सब लोग अगर पेड़ लगाई तो देखा धीरे धीरे उसे इतना प्रेम हो जाता है, और देखा यही लिए कहा जाता है गदेलन की तरह जो पेड़ कैसे पाले करे। हाँ बिल्कुल,
1: तो हरियाली के हरियाली बनी रहा था, पर्यावरण कितना अच्छा रहा था, हमें सबके कितना सारा फायदा मिला।
2: गंगा बहनी तू थोड़ी देर हरियाली में बैठ जा तो हर सोचे की जो क्षमता है ना चारगुनी हो जाते।
1: और आजकल देखा मने दुई कमरा की जगह पे रह रही के आजकल नवा नवा शब्द डिप्रेशन चला वा फलाना चला, मानसिक तनाव कितना बा।
2: बिल्कुल,
1: तो देखा हरियाली में बैठ जा आधे घंटे तो मन इतना शांत होते है कि काम करे लागत है।
2: बिल्कुल बढ़िया, और देखा कुल मिलाए के स्वास्थ्य अच्छा तो सब कुछ अच्छा
1: है ना। अब देखा हरियाली के बाद एक बढ़िया से तुम्हें हम फिर से गाँव नहीं सुनवावे चाहते, सरोज सिन्हा बहनी से। तो चला सुना जाए, बहनी हरन भी सुने,
2: चला सुना जाए।

0: गंगा
1: हाँ बहनी
0: देखा फिर तो मन खुश कह दियो गीत सुनवाए की
1: है
0: और देखा
1: ना
0: सरोज सिन्हा बहनी खूब अच्छे से जो है गीत सुनाई, तो ये
1: हाँ
0: जो झुलनी
1: देखा हम कहत रहे ना कि अब की अगर हमारे धान बिछाए
0: वाला
1: तो हम अपने उनसे कहे है कि हमें झुलनी चाहिए,
0: झुलनी चाहिए
1: तो हम सोचे कि ना ऐसे ही एक ठो गाना ही
0: तो
1: सुन ली
0: हर
1: जाए
0: मन की
1: है
0: बात वो मानी
1: ना
0: करी आई
1: तो देखा जानकारी भी होई गया और गीत गाओ नहीं भी होई गया, अब तो कुछ स्वाद के बात होई के चाहिए।
0: अरे बिल्कुल। और देखा जब तो स्वाद की बात कहूँ तो देखा तो का आज खूब अच्छा चटपटा तीखा मसालेदार कुछ खिलाई।
1: अरे वाह
0: देखा बारिश के मौसम चलत भी है और
1: हाँ
0: उमा यदि तो का हम सकोड़ा खिलाई दे
1: आ
0: और
1: हा
0: वो
1: हा हा
0: भी चौलाई के
1: देखा तू बताओ था और हमरे मुंह में आएगी पानी
0: हाँ तो देखा गंगा हम बनाए तो है पर
1: हाँ
0: लई के नहीं आए कैसे, वो जो उन्हें लावे में बड़ा उमा रसा रहा थे ना तो गिर उड़ जाए तो
1: कौनो
0: तू
1: बात ना है ना, चलो टाइम तो हर घर रास्तों में पड़ा था ना, रस
0: हाँ
1: पाए के तब जाओ
0: वही हम कहे चाहते रहे कि तू आज चला
1: तो
0: हमारे घरे हम दोनों लोग बैठ के आज ये चौलाई का सकौड़ा खा। तो
1: हाँ
0: देखा चौलाई का जो सकौड़ा बना थे एक मां थोड़ा सा समय लगा थे और एक की तैयारी भी थोड़ा पहले से करेगा चाहिए कि देखा चौलाई का धोए के सुखाए ले, कई बार ऐसा होते कि देखा मैं कीड़ा भी होते पत्ते में तो एका ध्यान से गर्म पानी से हो सके तो धोए के बहुत बारीक बारीक काट ले
1: अच्छा
0: हाँ और एका एक किनारे रख दे। फिर मसाले की तैयारी किया जाए जो उनकी जैसे कि हम लोग मसाला तैयार करब सकोड़ा का, तो देखा ओके लिए हम लोगन का चाहिए खड़े मसाले माँ दालचीनी है, इलायची है, हरी इलायची है, लौंग चाहिए थोड़ी सी, चार तीन चार लगभग लगभग तो 4 लौंग चाहिए और लगभग 5 से 6 काली मिर्च और दालचीनी और जो थोड़े बहुत खड़े मसाले और भी पिसात हैं उन्हें उनका लई के उनका पीसे का है ओमा जो है लगभग 1 बड़ी प्याज, 2 टमाटर, लगभग 4 से 5 कली लहसुन, मिर्चा और अदरक, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, ये सब डाल के हमका मसाले के साथ है मपीसे का है। तो मसाला कभो कभो ऐसा होता है कि जब पीसे का होते तो कभो कभी पिसात नहीं तो का थोड़ा देर अगर गर्म पानी में भिगोए दे तो खूब बढ़िया पिसाए जाते हैं। तो इतना जब हमारा मसाला तैयार होएगा उसके साथ हमका चाहिए

0: हल्दी, नमक, थोड़ी सी हींग और तेज पत्ता। तो गंगा जब मसाला तैयार होएगा तो सबसे पहले जो चलाई सूखी रखी है, जो उन काट के हम लोग रखे हैं, उपमा थोड़ा सा बेसन मिलाए का है।
1: अच्छा।
0: हाँ, हल्का सा बेसन मिलाए का है ताकि जो उनकी जो उन करारा स्वाद है चौलाई का वो रहे।
1: अच्छा।
0: तो उमा हल्का सा बेसन, हल्का सा नमक और हो सके तो पीसी पीसी खूब अच्छी पीसी हुई हींग उमा हल्का सा डाल के और उका बेसन में खूब बढ़िया लपेट के फेटे का है ताकि जो हमारा सकौड़ा बने वो खूब अच्छा मसालेदार बने।
1: अच्छा।
0: उमा हो सके तो थोड़ा सा लहसुन और अदरक का जो ने पिसा पीस के उमा डाल दे और उका खूब बढ़िया से थोड़ा गाढ़ा रहे ताकि हमारे जो पकौड़ी है खूब अच्छी गोल गोल बढ़िया बन जाए। और उका खूब अच्छे सा फेटे का है, फेट के कढ़ाइया चढ़ाए के उसमें उमा तेल डाल के और हमका पकौड़ी की तरह हमारा जो सकौड़ा है उका छान कर निकाल ले का है।
1: अच्छा।
0: ओके बाद जो हम लोग मसाला पीस के तैयार किए हैं तेल में, वही मसाला तेल में सबसे पहले तेल में हमका तेज पत्ता डाले का है, थोड़ी सी हींग डाले का है, थोड़ा सा काला अरे

0: हल्का सा नमक, और हो सके तो पिसी पिसी खूब अच्छी पिसी हुई हींग ओमा हल्का सा डाल के, और ओका बेसन में खूब बढ़िया लपेट के फेटे का है, ताकि जो हमारा सकौड़ा बने वो खूब अच्छा मसालेदार बने। ओमा हो सके तो थोड़ा सा लहसुन और अदरक का जो ने पिसा पीस के ओमा डाल दे, और ओका खूब बढ़िया से थोड़ा गाढ़ा रहे, ताकि हमार जो पकौड़ी है खूब अच्छी गोल गोल बढ़िया बन जाए। और ओका खूब अच्छे सा फेटे का है, फेट के कढ़ाइया चढ़ाए के उसमें ओमा तेल डाल के और हमका पकौड़ी की तरह हमार जो सकौड़ा है ओका छान कर निकाल ले का है।
1: अच्छा।
0: ओके बाद जो हम लोग मसाला पीस के तैयार किए हैं तेल में, वही मसाला तेल में सबसे पहले तेल में हमका तेज पत्ता डाले का है, थोड़ी सी हींग डाले का है, थोड़ा सा काला अरे थोड़ा सा जीरा डाले का है, थोड़ी सी कटी प्याज डाले का है, अदरक डाले का है लगभग थोड़ा सा अदरक एक टुकड़ा छोटा, और लगभग 2 कली लहसुन इतना डाल के हल्का लाल भून ले का है। ओके बाद जो मसाला पीसे हैं वो मसाला भी डाल दे का है। ओके बाद लगभग खूब सुंदर अच्छी से बढ़िया से जो ना मसाला अपन तैयार हो जाए,
1: खूब भून ले,
0: खूब भून ले एकदम लाल हो जाएगा चाहिए। देखा भूने के यही होते तरीका, तेल छोड़ दे जब मसाला, और जब ये मसाला तेल छोड़ दे तो फिर समझ में आ जाएगा है कि
1: मसाला
0: पक गया है। अगर जो हमारा जो मसाला है उसका और थोड़ा सा गाढ़ा यदि करे चाहे तो लगभग 2 चम्मच उन्हें आप दही डाल सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच उन बेसन हम लोग साने रहे, यदि पकौड़ी से बचा हुए बेसन तो वही का इस्तेमाल कर ले, नहीं तो थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच जो है बेसन उमा मसाले में हल्का सा डाल दें।
1: अच्छा।
0: खूब बढ़िया सी अच्छी ग्रेवी जो ओके जो है मसाला तैयार हो जाए रसा, और जब वो खूब अच्छा खोल जाए तो जो हमारा सकौड़ा है जो पकौड़ी बनाए के हम लोग गोल गोल छान के रखे ओका उमा डाल दें, ऊपर से खूब अच्छा बारीक कटा धनिया डाल दें, और बस ओका गरम गरम मतलब ये बारिश के मौसम ऐसे निकाल के चटनी के साथ यदि खा तो का बात है।
1: मुँह में पानी आएगी, अब हमसे रुका ना जाता तो कल ही आवे के चाहता अपन घटे पे, लेकिन कोनो बात ना है ना।
0: चला देखा तो का कही थी ना कि आज चले चला तू अपने घर, हम दोनों बैठ के आज खाओ।
1: तो इतना बढ़िया चौलाई के सकौड़ों के रस मतलब विधि बताओ बहनी हर इनके। अब चला एक बढ़िया से गीत सुनाए दी हजय नदिया के पार फिल्म से हेमलता जी की आवाज में,
0: चला सुन लिया जाए।

0: जय बनी,
1: हाँ वंदना।
0: कितना निक के गीत रहा।
1: हाँ देखा, एक गीत माँ जैसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा कि गुम हो गए, शांति से सुने मैं, इतना अच्छा लगा था, ऐसा लगा था कि मन की अपनी सारी भावना
0: खोई
1: निकल के
0: जाए
1: बाहर आएगी।
0: आत्मा
1: हाँ
0: में।
1: एकदम बहुत अच्छा लगा था ये गीत सुने।
0: चलो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तो अब एक संदेश सुन लिया जाए और बनी हरन भी सुन ले।
1: तो चला सुना जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होता है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे। ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी है।
1: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है
3: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कोनी बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के।

0: बाद या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके आपके संदेश के हम सब के
1: बेसब्री से इंतजार रही।
0: जय बहनी।
2: हाँ जी,
0: देखा पनघटे पे आए के बाद कितनी जल्दी समय बीता था।
2: हाँ, ना बिल्कुल। और देखा अबहिन तो ऐसे लगा था अबहिन तो शुरू किए रहे, अबहिन बस चले के बेला हो गए,
0: चले के बेला हो गए। लेकिन देखा इतनी अच्छी अच्छी बात, इतनी अच्छी अच्छी गीत गाओ, नहीं स्वाद सब कुछ हो गया, कितना अच्छा लगा। लेकिन अब देखा घड़ी इशारा करत बा, है ना, तो चले के बेला तो होत बा। तो मन भारी मन से मन तो नहीं कहत बा, लेकिन इजाजत मतलब
2: विदा लिया जाए
0: बहनी अरिन से। राम राम बहनी अरिन।

0: 42 countries, including the European Union, the United Kingdom, Switzerland, Indonesia, Malaysia, and Thailand. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravalli Hills and ranges. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses supported by documentary evidence or other verifiable material through email at mshbcaravalli@gmail.com within 3 weeks. Martyrdom Day is being observed by the Congress and the two factions of the Trinamool Congress in West Bengal today. On the 21st of July 1993, 13 workers of the Youth Congress were killed by the police firing in Kolkata. In China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10, 21-14 defeat to Malaysia's Leong Chun Hao in Changzhou today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in any NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namche district, rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा

0: के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
1: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
2: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है और भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
3: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
4: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। That is all they're saying. Nothing wrong with it.
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

0: है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन आईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @iirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

0: मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 2:30 में और ये समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
3: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओं, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
3: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
3: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
3: जॉन बील मेला
2: जी,
3: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
3: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
3: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
3: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा

0: नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
1: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
0: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय, यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
1: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं।
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की, तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओ, माना जाता है कि अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं।
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की, तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरी गांव में जमा होते हैं, तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी, फिर वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरी गांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: सांगकेन।
2: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? आइए जानते हैं।
3: यमन भैया कहाँ हो भैया?
4: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
3: चिल्ला क्यों रहे?

0: बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
0: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
2: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
3: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
0: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
2: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
3: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
2: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
3: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
3: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
3: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
3: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
2: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
3: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चौतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
3: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
3: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
3: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
1: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
0: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
3: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
3: बिल्कुल ठीक कहा।
5: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
3: अरे
5: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखखेन का पर्व जो है।
3: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
1: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
3: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ। सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
0: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
5: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
3: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।

0: बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
1: थैंक यू।
2: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
3: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
2: अच्छा
0: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
3: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
2: जल उत्सव क्यों?
3: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
2: अच्छा।
3: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
2: हाँ।
3: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
2: जी।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
3: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
0: तो हम भी चले?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
0: चलो चलो चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
2: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
0: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
2: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
3: अरे।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
3: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
0: अच्छा।
3: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़ कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
0: जी अंकल।
3: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
3: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
2: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को, पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
7: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूस

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
4: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
3: कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
3: नमस्कार.
5: उमंग उमंग उमंग उमंग.
6: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे. प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था. मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर.

अभी आप संवेश्वर में देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम एफ 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। अपराह्न के 3 बज चुके हैं और इसी के साथ संपन्न होती हमारी ये सभा। शाम की सभा धरती के गीत कार्यक्रम से शुरू होगी 5 बजे। इस बीच हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध का

लीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए कार्यक्रम धरती के गीत। गायक कलाकार हैं गुलाब सिंह यादव और साथी। सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में देवी गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती के गीत, गायक कलाकार थे गुलाब सिंह यादव और साथी। अब आज का धरती के गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है,

0: पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

By the studio clock, शाम के बज चुके हैं 5:15 एंड यू हैव ट्यून्ड योर फेवरेट एंड यूथ प्रोग्राम युववाणी। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे साक्षी। दोस्तों, कभी ना कभी आपके पास भी एक ऐसा नोटिफिकेशन आया होगा, फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को द्वारा यूएन के इस रिपोर्ट को शेयर करने पर सबको मुफ्त डेटा मिल रहा है। थोड़ी देर बाद एक वीडियो आता है जिसमें एक बॉलीवुड स्टार कुछ ऐसा बोल रहे थे जो उन्होंने असल में कभी बोला ही नहीं। उसे देखकर लगता है कि भाई हम किस दौर में जी रहे हैं, जहां एक क्लिक पर पूरी दुनिया की जानकारी हमारे हाथ में आ जाती है। वहीं उसी एक क्लिक पर झूठ का एक ऐसा बवंडर भी आता है जो सच को कहीं छुपा देता है। इसीलिए दोस्तों, आज हमारे शो चर्चा का बेहद गंभीर और ज़रूरी टॉपिक है, सूचना क्रांति के दौर में भ्रांतियाँ और यथार्थ, यानी मिस इन्फॉर्मेशन वर्सेस रियलिटी इन द एरा ऑफ इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन। आज हम इसी डिजिटल चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए अपनी आरजे साक्षी के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों हम बात कर रहे थे सूचना क्रांति के बारे में, यानी इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। दोस्तों इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। आज हमारे पास सोशल मीडिया है और पलक झपकते ही हम सात समंदर पार की खबर रख लेते हैं। लेकिन इस वरदान के साथ एक बहुत बड़ा अभिशाप भी आया है और वो है फेक न्यूज़, डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन का जाल। दोस्तों चलिए कुछ सॉलिड फैक्ट्स और डेटा की बात करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये समस्या कितनी बड़ी है। द हिंदू में छपे एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया के सामने आज गलत सूचना और दुष्प्रचार यानी मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़े खतरों में से एक बनकर उभरा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया दुनिया में सोशल मीडिया के लिए सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इतने बड़े यूज़र बेस की वजह से हमारे देश में भ्रांतियां बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। और सुनिएगा, भ्रांतियों का ये खेल सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस तक सीमित नहीं है दोस्तों, अब इसमें एंट्री हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आपने सोशल मीडिया पर कई नेताओं और एक्ट्रेस के ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जो बिल्कुल असली लगते हैं पर वो होते नकली हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक रिसर्च डेटा के अकॉर्डिंग भारत में फैलने वाली फेक न्यूज़ में सबसे बड़ा हिस्सा राजनीति यानी पॉलिटिक्स का है, जो कि 46% का है। और इसके बाद आते हैं कुछ सामान्य मुद्दे, इनका परसेंट है 33.6%, और कुछ धार्मिक विषय हैं जो कि 16.8% है। यानी जो चीज़ें हमारे समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं उन्हीं को लेकर सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। दोस्तों अगर अब बात करें कि इन भ्रांतियों का हमारे रियलिटी पर क्या असर पड़ता है, तो जब कोई गलत जानकारी हवा में फैलती है तो वो सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन तक नहीं रहती, वो सड़कों पर हिंसा का रूप ले सकती है। जब देश में कोई संकट आता है, जैसे कोई आपदा या टेरर अटैक ही हो गया, तब ये फेक न्यूज़ और ख़तरनाक हो जाती है। रिसर्च गेट पर पब्लिश्ड एक हालिया केस स्टडी के अकॉर्डिंग साल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के दौरान सोशल मीडिया पर अचानक से भ्रामक

कम्युनिकेशन नैरेटिव्स और कुछ पुरानी तस्वीरों को नया बताकर फैलाया जाने लगा, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के बीच भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। और आज का यथार्थ ये है कि हम एक ऐसे इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर के दौर में भी जी रहे हैं, जहां झूठ को इतनी खूबसूरती से परोसा जाता है कि वो सच से भी ज़्यादा सच्चा लगने लगता है। इसी को रोकने के लिए सरकार ने अब सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, भारत सरकार अब एक ऐसा कानून ला रही है जिसके तहत सभी सोशल मीडिया और AI कंपनियों के लिए किसी भी AI जनरेटेड या डीप फेक कंटेंट पर कम से कम 10% हिस्से पर विजिबल लेबल और ऑडिबल नोटिस लगाना अनिवार्य होगा, ताकि यूज़र को पता चल सके कि ये सच है या सिंथेटिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब डिजिटल दुनिया में इतनी भ्रांतियाँ हैं, इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, तो हम खुद को कैसे बचाएं? हम रियलिटी को कैसे पहचानें? तो जब भी आपके पास कोई ऐसा मैसेज आए जिसे पढ़कर आपको बहुत गुस्सा आए या बहुत हैरानी हो, या तुरंत शेयर करने का मन करे, यानी कुछ एक्सेसिव जो आपकी फीलिंग्स हो वो आए, तो आप समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। इसलिए शेयर करने से पहले आप खुद से 3 सवाल पूछिए। किसने भेजा, कहाँ से आया और इसका सोर्स क्या है? अगर आप अपने आप को मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ से बचाना चाहते हैं, तो आप इन कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमेशा हमेशा विश्वसनीय सोर्सेज पर ही भरोसा करें। सेकंड है कि फैक्ट चेक टूल्स का इस्तेमाल करें। ऐसे बहुत सारे फैक्ट चेक टूल्स हैं, उनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। और तीसरा, डोंट फॉरवर्ड विदाउट चेकिंग। कभी कभी क्या होता है कि उस मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने में, उस फेक न्यूज़ को फैलाने में, और उसकी वजह से जो हिंसा होता है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारे समाज में, उसका एक रीज़न हम खुद बन जाते हैं उनको फॉरवर्ड करके। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हमें यही समझ आता है कि सूचना क्रांति हमारा सबसे बड़ा हथियार है, बशर्ते हम इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें। इंटरनेट की इस दुनिया में भ्रांतियों के अंधेरे को सिर्फ और सिर्फ हमारी जागरूकता का यथार्थ ही मिटा सकता है। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा चर्चा का विषय। हम आपके लिए ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव और अवेयर करने वाले टॉपिक्स और भी लाते रहेंगे, और हमारे पास आज भी ऐसे टॉपिक हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे प्रोग्राम को इन्फोटेनमेंट बनाने के लिए हम ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, जब हम कभी सुपर हीरोज़ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मार्वल या डीसी के करेक्टर्स आते हैं। लेकिन आज हमारे शो प्रेरणा पुंज में मैं आपको भारत के एक ऐसे रियल लाइफ सुपर हीरो से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी जादुई ताकत उड़ना नहीं बल्कि मिट्टी से सोना उगाना है। एक ऐसा आम इंसान जिसने अपनी जिद और लगन से अकेले ही प्रकृति का एक पूरा खजाना बचा लिया। आज हम बात कर रहे हैं भारत के वन मैन जीन बैंक कहे जाने वाले अद्भुत किसान सत्यनारायण बेलेरी जी की। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है केरल के कासरगोड जिले के एक छोटे से गांव नेट्टानी से। साल 2008 में सत्यनारायण जी ने सिर्फ 100 ग्राम धान के बीजों के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। उन्हें पारंपरिक और पुरानी फसलों को बचाने का एक जुनून सवार हुआ। लेकिन बॉस, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, आइए जानते हैं। द पद्म अवार्ड्स ऑफिस के ऑफिशियल साइटेशन के मुताबिक उनकी अपनी ज़मीन पथरीली और ढलानों वाली थी, जो धान की खेती के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं थी। पानी टिकता ही नहीं था। अब कोई साधारण इंसान होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन हमारे सत्यनारायण जी ने एक ऐसा कमाल का इनोवेटिव आइडिया निकाला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इजाद किया पॉली बैग मेथड। उन्होंने प्लास्टिक के छोटे छोटे ग्रो बैग्स यानी पॉली बैग में खाद और मिट्टी मिलाकर धान उगाना शुरू किया। वो इन बैग्स को पानी से भरी तिरपाल की क्यारियों में रख देते थे ताकि नमी बनी रहे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज उन्होंने अपनी मात्र 25 सेंट यानी सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर की छोटी सी ज़मीन पर धान की 650 से ज़्यादा पारंपरिक किस्मों को सुरक्षित करके एक अनोखा जीन बैंक बना दिया है। इसमें सफ़ेद, काले, लाल और बैंगनी और हरे रंग के चावल भी शामिल हैं। हम इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: वेलकम बैक दोस्तों, हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे हमारे आज के प्रेरणा पुंज सत्यनारायण बेलेरी जी के बारे में। आइए हम उनके बारे में कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों, द विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डेटा के

अकॉर्डिंग सत्यनारायण जी के इस खजाने में कई चमत्कारी किस्में रही हैं। जैसे पहला है त्रिनेत्र और शिवम। ये जो चावल की किस्म है, ये धान की जो किस्म है, ये दो बिल्कुल नई धान की किस्में हैं, खुद सत्यनारायण जी ने डेवलप की हैं। और दूसरा है कग्गा और मनीला। ये ऐसी किस्में हैं जो सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी में भी आसानी से उग सकती हैं। और तीसरी है एडी कुनी, और ये धान बाढ़ के पानी में भी डूबे रहने के बावजूद बच सकता है। और जो चौथी आती है उसका नाम है करिक जावली, इसे ब्लैक बासमती भी कहते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है जो आयरन से भरपूर है और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वरदान मानी जाती है। और दोस्तों सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है, वो इन बेशकीमती बीजों को किसी कंपनी को बेचते नहीं हैं, बल्कि देश भर के किसानों और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल मुफ्त बांटते हैं ताकि हमारी पारंपरिक खेती बची रहे। उनकी इसी निस्वार्थ देश सेवा और इनोवेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साल 2024 में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। जब वो राष्ट्रपति भवन में अवार्ड लेने पहुंचे तो उनकी सादगी ने पूरे देश का दिल जीत लिया। सत्यनारायण बेलेरी जी की लाइफ हमें सिखाती है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं तो शिकायत मत कीजिए, बल्कि अपने इनोवेशन से एक नया रास्ता बनाइए। वो सचमुच हमारे देश के एक चमकते हुए प्रेरणापुंज हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे प्रेरणापुंज सेगमेंट में ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए बहुत कुछ दिया और बहुत योगदान किया। और इसीलिए हम उनके बारे में जानते हैं ताकि उनके बारे में जानकर, उनके बारे में पढ़कर, उनके बारे में सुनकर हम कुछ उनसे सीख सकें और हम भी उनसे प्रेरणा ले सकें ताकि हम भी अपने समाज के लिए, अपनी मानवता के लिए कुछ योगदान कर सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कॉलेज खत्म होने के बाद सोचते हैं अब आगे क्या, या आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं? तो दोस्तों, आज मैं हमारे करियर की बात सेगमेंट में कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पर बात करने वाली हूँ। दोस्तों, करियर सिर्फ एक डिग्री या सैलरी का नाम नहीं है, ये है आपकी पैशन और हैप्पीनेस का सफ़र। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और अपने सपनों को देते हैं एक सही डायरेक्शन। अक्सर लोग पूछते हैं कि सक्सेसफुल करियर कैसे बनाएं, तो उसका सीधा सा जवाब है, फॉलो योर इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। अगर आपका काम ही आपका शौक बन जाए तो लाइफ में कभी वर्क प्रेशर फील ही नहीं होगा। आज के टाइम में स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, चाहे आप कोडिंग में अच्छे हों, राइटिंग में, या बिजनेस और मैनेजमेंट में। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसे अपग्रेड करते रहिए। दोस्तों, एक टर्म यूज़ होता है एप्टीट्यूड, जिसे हम और इसको एक अलग अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसको कहते हैं कि हर किसी के अंदर, कहते हैं ना कि हर एक पर्सन यूनिक होता है, तो वैसे ही हर किसी के अंदर भगवान ने कुछ टैलेंट दिया होता है। अगर आप उसको पहचाने, अपने एप्टीट्यूड को पहचाने, अपने इंटरेस्ट को पहचाने और उसको निखारते रहें, तो आप उसको एनरिच करके, अपनी अपनी उस चीज़ को एनरिच करके अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं और अपने उस इंटरेस्ट के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपका जो पैशन है वही आपका वर्क बन जाए तो आप उस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आप बड़ी हस्तियों के बारे में पढ़ें, जो जो फेमस और सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, तो शायद उन्होंने भी अपने अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया, तब वो उस ऊंचाई तक पहुंचे। कभी भी आप अगर फाउंडेशन में काम करेंगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम कुछ उन वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो हाल में आई हुई हैं। फर्स्ट है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की, और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की जो लास्ट डेट है वो है 10th of August 2026। इसकी मिनिमम एज

18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स. एंड प्लीज़ विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट टू कम्प्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन. एंड जो सेकेंड वैकेंसी है वो है UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, और इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है वो है 27th of July 2026, और इसमें मिनिमम एज है 21 ईयर्स की और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स. और इसके लिए आप अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं.

दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ें, जो कि हमारा बेहद खास सेगमेंट है, यानी प्रश्न मंच। दोस्तों, अभी आपने जो सॉन्ग सुना, ये हम यूथ्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला सॉन्ग है। दोस्तों, कभी ऐसा लगता होगा कि सभी रास्ते बंद हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि ये जो हमारी उम्र है, इसमें जिम्मेदारियों का बोझ सपनों से ज़्यादा भारी हो गया है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा अनुभव बढ़ता है, तो वैसे वैसे हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती है। और अगर हम आज के प्रश्न की बात करें, तो दोस्तों, हमारा जो कल का प्रश्न था, वो था कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? और इसका उत्तर है बैकाल झील। दोस्तों, इसके बारे में और इंटरेस्टिंग बात करें, तो इसकी अधिकतम लंबाई है लगभग 1642 मीटर, यानी 5387 फीट। और दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है, जिसमें अर्थ के कुल ताज़े पानी का लगभग 20% हिस्सा मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात करें इसके बारे में, तो बैकाल झील को दुनिया की सबसे पुरानी झील भी कहा जाता है।

और अपनी यूनिक जैव विविधता के कारण इसे यूनेस्को द्वारा 1996 में विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। अगर हम आज के प्रश्न की बात करें तो हमारा आज का प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जीव कौन सा था। आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvani@gmail.com पर। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250 पर।

दोस्तों, वक्त हो रहा है कि मैं आपसे विदा लूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर आपको आपका कोई सजेशन है, आप अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर कुछ और चीज़ें इनोवेट करना चाहते हैं, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे यानी साक्षी पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध

0: बूथ जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा की शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ खास खास कार्यक्रमों की। पहले डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। खेल दर्पण कार्यक्रम होगा रात 10 बजे, इसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:15 पर सुनिएगा पुरी उड़ीसा में आयोजित

आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित कर्टन रेजन कार्यक्रम। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे विजय शंकर त्रिपाठी से रामायण पाठ। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा दीक्षा पांडे का काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुनेंगे गार्गी द्विवेदी के स्वर में गीत और भजन। सबरस कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पंडित रामायण राव व्यास का गायन। पंडित नारायण राव व्यास का गायन शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर। ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब डालते हैं एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल 8:15 पर आप सुनेंगे पुरी उड़ीसा में आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित कर्टन रेजन कार्यक्रम। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे कोमल सिंह यादव से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर डॉक्टर यशवंत कुमार की वार्ता होगी पैरालिसिस में फिजियोथेरेपी से उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और दिन में 12:15 पर सुनिएगा प्रियंक कृष्णा का सैक्सोफोन वादन। 8:45 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 10:05 पर। 10:30 पर सुनिएगा लोकगीत गायक कलाकार आकांक्षा भारती और साथी कमला प्रसाद पाल और शोभालाल और साथी। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी मेरा हुनर मेरा व्यवसाय के अंतर्गत अगरबत्ती मोमबत्ती और साबुन निर्माण का लघु उद्योग। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी से नीति वचन। शाम 7:31 पर किस्सा गोई में सुनिएगा अजीम शायर मिर्जा गालिब पर केंद्रित कार्यक्रम। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा का समय होगा रात 9:30 पर। ये थी जानकारी इस सभा की शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ खास खास कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम

0: युववाणी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: पहली बार हुआ तुम इतने दिन की कहा, मैं ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए देश गान।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भावि परीक्षासु प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं निवारयितुं समन्वित प्रयासानां कृते आह्वानं विहितम्। नीट प्रश्नपत्र प्रकटन दोषिणां विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय प्रशासनस्य दृढ संकल्पः पुनरावर्तितः। विपक्षस्य विरोध कारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणं अद्य स्थगितम्।

0: www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सिक्किम राज्यस्य नामची मण्डलस्य समर हुंग क्षेत्रे एनएचपीसी तीस्ता चरण षट् जलविद्युत परियोजनायाः निर्माणाधीने सुरंगे अवरुद्धान जनान् सुरक्षिततया निष्कासयितुं तीव्रोद्धारकार्यम् अहोरात्रं प्रवर्तते। उद्धारदलेन सम्प्रति यावत् एकादश मृतात्मानां देहाः समुद्धृताः सन्ति। आशंक्यते यत् ह्यः भूस्खलनकारणात् ध्वस्ते सुरंगे न्यूनतमं 25 श्रमिकाः अद्यापि अवरुद्धाः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्रिणा प्रेम सिंह तमांगोले इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तां विधाय सहायतां प्रदातुं उक्तवान्। संप्रति नामची मंडल प्रशासनं एनएचपीसी अधिकारीभिः एसडीआरएफ एनडीआरएफ सिक्किम आरक्षिबलेन अग्निशमन आपत्कालीन सेवाभिः तथा स्वास्थ्य विभागेन सह समन्वयं कृत्वा निरंतरं आपतोद्धार कार्यं संचालयति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य अवोचत् यत् भारत उत्तर मैसेडोनिया देशौ लोकतांत्रिक मूल्यानां परस्परादरस्य आधारेण च स्वकीय प्रगाढ़ मैत्री संबंधं पुनः सुदृढ़ अकुरुताम्। स्कोपिये नगरे उत्तर मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना गोडोर्ना सिल्यानोवस्का दावाकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मू प्रत्यपादयत् यत् उभौ पक्षौ द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र व्याप्तिं समालोकितवन्तौ, सहैव क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं कृतवन्तौ।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: अस्य मासस्य 21 दिनांके एम वी गोल्डन लियो इति वाणिज्यिक पोते दुरापन्नस्य घातक आक्रमणस्य पृष्ठभूमौ भारतेन अद्य रूस देशस्य कूटनीतिकाधिकारी व्लादिमीर लादानोव इत्यसौ वैदेशिक कार्य मंत्रालयम् आहूतः। अस्मिन् दुःखादाक्रमणे चत्वारः भारतीय नागरिकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। अस्य भीषण प्रहारस्य निन्दां कुर्वन् स्वस्य गभीरां चिन्तां च प्रकटयन् वैदेशिक कार्य मन्त्रालयः स्पष्टीकृतवान् यत् एतादृशानि आक्रमणानि अन्ताराष्ट्रिय सामुद्रिक व्यापारस्य सुरक्षां स्थिरतां च क्षतिं नयन्ति। उत्तराखण्डराज्ये अश्रान्तं जलवृष्टेः तथा यात्रामार्गेषु सम्भाव्य भूस्खलनसङ्कटस्य कारणात् अवधानतया ह्यः स्थगिता सुप्रसिद्धा चारधामयात्रा अद्य पुनः समारब्धा। इयं पावनी यात्रा मण्डलप्रशासनाधिक आरक्षीयबलेन अथ अन्याधिकारीवर्गैः सह समन्वयं विधाय सुचारुरूपेण सञ्चाल्यते। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां श्वः महिला एकल वर्गस्य भारतस्य अग्रगण्या क्रीडिका पीवी सिंधुः स्वस्य देशस्यैव उन्नति हुड्डाम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर।

0: हाँ मन्नू भैया, का हाल चाल बा?
1: हो हाल चाल बढ़िया
0: बा। कहाँ नरसा नरसा लेके बैठा है आज, कोनो बात या है का भैया?
1: अरे भैया देखा हो बरसाती के समय बा।
0: हाँ
1: और साथे साथे देखा अभी बरसात में धीरे धीरे धीरे धीरे मेला का भी सिलसिला शुरू
0: हो जाता है। हाँ,
1: और खेती किसानी का मेला तो लागी जाता
0: है। सही बात है
1: भैया, देखा बात कहाँ ना हो तो जो उनको देसी मिठाई बा ना, ओकर बातें कुछ अलग है भैया। देसी लड्डू है और भैया अनरसा है
0: भैया। हम मनु भैया ही कहा कि हाँ, अनरसा जोन हुई भैया, एका देखा तो अपने खिया जोन अनरसा मिला था ना, हमका लागत है एक तरफ जलेबी और रबड़ी रख दिया, दूसरे तरफ अनरसा रख दिया। हम तो भैया अनरसा बरसात में खा।
1: भैया देखा हो एक बात बताई ना, हाँ, कि जब गर्मा गर्म मिला था ना,
0: हाँ,
1: एकदम ताजा ताजा,
0: हाँ,
1: देखा ओकर स्वाद अलग बा। एक बात और कहा,
0: हाँ भैया,
1: हम कहीं कि देखा भैया आजकल का जो जमाना बा ना, हाँ, गांव देहात पहले इसे चले हुए हैं।
0: सही बात।
1: हम कहीं कि देखा कहीं जाए के रहे,
0: हाँ,
1: हैं अब चाहे भैया लड़की का विदाई बा, चाहे कहीं जाए को होके, तो घरे पर लोग भैया बुलाए के इमरती बनवाए ले लोग,
0: हैं, हाँ,
1: बुनिया बनवाए ले लोग,
0: हाँ,
1: खजूरी बन जाए,
0: हाँ,
1: अनरसा बन जाए,
0: सही है,
1: और झपोली का झपोली जाए भैया, ठीक है ना। हम कहीं कि देखा गांव भर खाए के अघाय हो,
0: बड़ा नाम हो भैया की फनाले मन्नू भैया किया से तना आया झबिया आ रही हमारे।
1: बिल्कुल। और एक बात और,
0: हाँ भैया,
1: देखा स्वाद भी एक अद्भुत,
0: हाँ,
1: और स्वाद के साथ साथ भैया फायदेमंद भी। अभी देखा भैया कहा ना कि जौन एकदम बिल्कुल हो बढ़िया बढ़िया पैकेट में,
0: हाँ,
1: और मिठाई मान ला की कुल जाते कितना दाम लग जाते।
0: सही बात है,
1: खाए का स्वाद भी ना आवत है, और कहीं एक्को दिन रख दिया भैया यहर भर कहीं फ्रिज के अलावा, तो खराब भी हो जाता है, नुकसानदायक भी हो।
0: अब भैया कितना अच्छा, हम तो कही थी देखें जो देसी मिठाई भैया बारिश के समय में, वैसे भी बाहर के मिठाई खाए लाए, मतलब यहाँ तक कि आदमी सब्जी खरीदा था तो जब तक उसका धोए न ले अच्छे से मने खाते,
1: हाँ,
0: नहीं,
1: हाँ, हाँ,
0: तो
1: हाँ,
0: मिठाई में तो और तरीके से खराबी बड़ी तेज भुकड़ी लगा था।
1: भैया देखा हम बरसाते में ना कब, हम तो कब कि
0: हर मौसम
1: कुल जो परंपरा बा ना,
0: हाँ,
1: ई चले के चाहिए हो। बड़ा देखा याद आवला जब एकदम गरम गरम इमरती मिल जाए, और सोचा भैया जो कि लड्डू है, लड्डू एक एक महीना चले है।
0: सही बात,
1: एक एक महीना चले। अब कौन
0: गन्ना का रसवा याद है भैया जब पिराई होए,
1: भैया भैया भाई देखा हो एक बात बताएं कि ठीक है,
0: हाँ,
1: जो जमाना बदलत बा, तकनीक भी बदलत बा, धीरे धीरे देखा हर चीज एक नए रूप में आवत है।
0: सही बात है,
1: लेकिन एक बात बताई ना कि कबो कबो कहा होता है कि मन रहते भी ना लोग एक हो जाता ना कि सम्मान का बात बा, यह कर बात बा, चला भैया हाउ पैकेट में बढ़िया ला,
0: हाँ,
1: अपन देखा बजट भी गड़बड़ा था,
0: हाँ,
1: और बहुत आनंद भी होकर ना होता, मुला ये सब ना ही सोचे के चाहिए। और कुछ अपन जोन पुराना तौर तरीका रहा, जोन अपन कुल जोने की देसी खान पान रहा, साथे साथे मिष्ठान में भी एक से एक मिठाई भैया।
0: सही बात है भैया,
1: भाई ओहू के प्रति सोचे के पड़ी। और हम कही कि अगर एहू का हम तू सिलसिला चाली करी भैया है तो कितना बढ़िया रही।
0: ए भैया
1: भैया एकदम
0: सबसे बड़ी बात भैया कि इस जोन स्वरोजगार का कल्पना संकल्पना राष्ट्रीय स्तर पे आज के समय में की जाती है, आज से 100-150 साल अगर पीछे चला जाए, नहीं तो 20-30 साल पीछे चला जाए, कि गांव में भैया इतना सारी मिठाई देसी वाली बनती है, वहीं लोहारों मिल जाता है, वहीं कहारों मिल जाता है, सब कुछ कितना बढ़िया भैया हो जाता है कि सब सारी व्यवस्था वहीं आपके गांव मौजूद है और अर्थव्यवस्था एकदम भैया बढ़त चली जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम कहीं कि देखा हो ये तरीके से अपन इकुल जोन एक तौर तरीका रहा ना, ये तौर तरीका का अपन महत्व रहा है, और वो महत्व के जाने के चाहिए, समझे के चाहिए।
0: हम कहे मन्नू भैया खेते में का चलता है, धान उन लोग वही शुरू कराए नहीं
1: भैया का, अब ये समय तो देखा जो समय चलत बा, और धान तो ये समय खूब जो ना,
0: हाँ,
1: रोपाई तो हो गए बा भैया,
0: हाँ,
1: और देखा दौ राजा ये समय देवी देवा संझा सवेरे जो ना बरसात हो जात बा।
0: सही बात,
1: बढ़िया चलत बा। मुला देखा एक बात भैया,
0: हाँ,
1: कि देखा हो हर कौन एक खरीफ का समय होता, रबी का समय होता, जायद का समय होता, हमेशा खेती में कुछ न कुछ तो
0: लाग रहा था।
1: मुला देखा यही में समय निकाल के अपन खेत अपन माटी के जानल पहचानल बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
1: और हम कहें कि देखा जो माटी में अपन कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व तो होते भैया, और वही सूक्ष्म पोषक तत्व के दम पर आपन फसल का बढ़वार होता और पैदावार भी बढ़िया होता।
0: एकदम सही कहा मन्नू भैया, एक आदमी कैसे समझे चाहिए कि देखें हमका अपने शरीर बरे प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मतलब सारी चीज चाहिए तब हम स्वस्थ रही थे। ऐसे भैया हमारे जमीन आ जेका उपजाऊ बनावे खातिर बहुत छोटे छोटे मात्रा में बहुत छोटी छोटी चीज चाहता है जेका हम लोग
1: बिल्कुल हम कहीं कि देखा हो शरीर में।

0: में लोग जब जांच करावत हैं जाए
1: तो पता चला था,
0: तो पता चलता है कि अगर एको कोनो तत्व का कमी हो गए
1: तो ई बीमारी,
0: तो कोनो दिक्कत आ जाता हो। वही तरीके से माटी होता हो, माटी में अगर कोनो अब पता ही नहीं रही भैया कि कौन कौन तत्व बा, कौनी का अधिकता बा, कौने का कमी बा,
1: सही बात,
0: तब भैया फसल का भी जानकारी नहीं हो पाई कौन फसल लगाई। अगर मान ला कि सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में जानकारी ले लेते
1: हैं
0: तो वो तरीके से हम कहें कि उर्वरक का भी प्रबंधन किया जाए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वही हिसाब से कौन फसल लगाई एकर चयन किया जा सकत है। और देखा अगर यह तरीके से करिए तो निश्चित तौर पर मान के चला कि अपन पैदावार बढ़िया हुई और आमदनी भी अपन बढ़ी।
1: और एक बात मनु भैया कि आपको माटी जांच करावे खातिर ये नहीं है कि आपको 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाए,
0: आप
1: तो आप सबके ब्लॉक पे तहसीली पे देखें इतना बढ़िया अनुसंधान केंद्र कृषि विभाग खुद ही खोल दे बा, और आज बस माटी ले जाए चारों कोने से खोद ले बढ़िया माटी, बीचे से निकाल ले और ले जाए के वहां पे दई आवा प्रयोगशाला में, तोहरे नाम के साथ है रजिस्टर कह दी है मोबाइल नंबर भैया, तोहका मोबाइले पे फोनो कहके बता दी है कि तोहा भैया चलावा रिपोर्ट आएगी।
0: बिल्कुल भैया देखा हो अभी तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनते
1: हैं, सही बात,
0: हम कहीं कि देखा कितनी उन्नत कुल व्यवस्था हो गए बा, मुला ये व्यवस्था के भैया अपने जीवन शैली में अपने खेती किसानी की परंपरा और परिपाटी में लावे की जरूरत,
1: सही बात है। अच्छा भैया देखा इसमें जब धान का चलता है, देखें धान में अगर पोषक तत्व को भैया कमी हो जाए तो कितना प्रभाव पड़ा था, एक तनिक उदाहरण हम दे पाए कि देखें इसमें जैसे एक ठीक आप रोग सुने राहत हुई है लगभग कर रहे थे खैरा लोग लग जाता, अब सोचा कि जिंक का मात्रा अगर धाने में कम हो के तो खैरा लोग लगा एकदम तय है,
0: बिल्कुल तय है।
1: अब पता भैया जान जैसे धान लाख 15-20 दिन बाद एकदम दिखाई लगी कि पत्ती में भैया अरे भूरा भूरा हल्का कथई रंग पड़े लगा था, अब पता लगा आपका पूरा पूरा फसल नाश,
0: पूरा चौपट हो जाता है, जो खर्चा भी कितना पड़ जाता है।
1: अब भैया जो आप बताया वह माटी जांच कराया पहले से पता चल जाये भैया जिंक का तो कमी नहीं बा,
0: बिल्कुल बिल्कुल यह तरीके से अगर तैयार रहे ना कि जैसे बीज का उपचार के लिए भैया माटी का जांच बा, कुल चीज का पता बा, अगर कोनो तत्व का कमी बा वही तरीके से अगर देखा होत का है ना कि कितना लहलहात फसल बढ़त है आगे, और जैसे कोनो रोग दोख चाहे कीट लगत है तो भैया होत का है ना कि ओकरी बाद वो फसल के बचावे में कई गुना खर्चा लग जाता,
1: सही बात है। और किसान भाई एक अभिने भैया ध्यान दे लगी है धान की रोपाई करत के साथे साथे दो तीन चीज बहुत आवश्यक होता, पहले खेते में जिंक रहा है, लोहा रहा है और बोरान रहा है, तीनों को बड़ी अहमियत बा भैया, जो उन देखा भैया कहा दिन हमारे बाली भैया परे लाग हमारे बांझ निकल गई हमारे कुछ पड़ती नहीं बा, अगर बोरान का मात्रा भैया कम बा तो कौनो भी कुछ कैले तुम्हारा धान का बोन हमारे बाली लगी हमारे कुछ
0: पैदावार भैया, हम कही की देखा वही में पैया निकल जाए,
1: पैया निकल जाए,
0: पता चली की धान तो खूब देखे में लगी है।
1: और भैया इतना सस्ता है मन्नू भैया एक मतलब एक मात्रा डाव में 100 रुपया नहीं लगा, इतनी सस्ती एक दवाई और इतना इंतजाम है,
0: बिल्कुल भैया, तो हम कहीं कि देखा हो यही तरीके से चेत के खेती किसानी में लगे के चाहिए। अब देखा बतकही तो हो गए हो, और भी बतकही हुई पंचायत में है, और मौसम भी बनल बा, ये बतावा कहा सुनवावत है
1: भैया, आज तो अपने पंचायती में एकदम पिटारा भर के लिया ही कि पंच भाई हरेन सुन सुन के एकदम आनंद कई लई है भैया। आज तो देखा एक तो सबसे जरूरी बात जो ने विषय पे आज पे वही बातचीत तो भवे भाई, ओकरे बाद मनई की चाहे कि एक आध्यात्मिक रूप से कुछ सुने चाह, तो आज अपने पंचायती में भैया रामायण पाठ हो बा, और आज विजय शंकर तिवारी भैया आए यहाँ और वही कुछ देर बाद रामायण पाठ जब शुरू करी है तो सुनवाओ जाइए। एकरे अलावा भैया आज दूठी भैया लोकगीत रखा गया है, आई समझा कि आज पूरी पंचायती में एकदम जौन थक किसान आए हुई है खेते से लौ गई करके जीव हरियर हो जाए।
0: अरे बिल्कुल, तो हरियर करा
1: अब मनु भैया बतावा पहले का सुनो बतावा तो फिर आनंद आवे का
0: भैया। देखा हम तो कहें कि खेती किसानी में ना कहा जाता है कि खेती किसानी का बात रहता ज्यादा बढ़िया होता है, तो सबसे पहले तो भैया देखा विकास गीत बा,
1: अच्छा
0: दिनेश कुमार और साथी का, हम कहीं यहाँ कैसे सुना जाए,
1: बिल्कुल भैया सुनो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया,
4: देखा भैया, गवनई भी हो गए और सनेसा भी।
3: हाँ भैया, दिनेश कुमार और साथिन का गावा विकास गीत बड़ा नीक लाग भैया। और सही बात कहा, हाँ, जैसे शुरुआत पंचायत घरे के हो जाए भैया कि मन एकदम हरियर हो
4: भाई, बिना ढोल मजीरा के फिर कहाँ आनंदा होते है। और हम कही कि देखा हो, दिन भर का खेती किसानी का काम कही के पंच भैया थोड़ा सा राहत जब महसूस करते हैं, तो भैया देखा एक कार्यक्रम के सुन के जानकारी भी लोग लेते हैं और साथे साथे भाई थोड़ा दिमाग के भी तसल्ली मिला था, मनोरंजन भी जरूरी होता है।
3: मन्नू भैया, और एक चीज देखा, आप चाहे जौन रेडियो स्टेशन सुनत है या कोनो कार्यक्रम सुनत हुआ, आपके मन के बहुत चीज हो सका था, लेकिन जौन चीज पंचायत घरे में आवा था ना, अही लोग गीत भैया ढूंढे से मिला था कि भैया जैसे कहा था ना, सड़क का तराई ढूंढ लिया
4: भाई। तो हम कहें कि देखा हो, एकदम कहीं ना कि थकल दिमाग थकल शरीर का एक तरीके से खुराकी हो जाता
3: है,
4: गड़गड़ाहट है ना, ढोलक और झाल। तो भैया देखा ही तो होगी, लेकिन एक बात और जो कहत रहा ना, कि देखा खेती किसानी का काम रहता है, तरह तरह का इंसान के जीवन में तनाव भी रहता है।
3: बिल्कुल भैया।
4: तो और जीवन के कहा जाता ना कि जीवन का जो पथ बा ना, जो रास्ता है, बहुत आसान ना होता है। यही लिए भैया हम कहें कि गीत गवनी के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक चिंतन भी बड़ा जरूरी
3: हो जाता है। बहुत
4: बहुत कि वही से आत्मबल मिलता है।
3: बिल्कुल मिलता
4: है। कबो कबो कहा होता ना भैया कि दुनिया भर का दबाव, दुनिया भर का तनाव, खेती किसानी का, घरे के खर्चा का, कई चीज भाई रहता, सबके रहता,
3: सही बात,
4: कोनो ना कोनो हुआ है। तो यह मन देखा उलझ जाते हैं लोग, लेकिन ऐसन में भैया देखा जैसे नीत का बात होता, चाहे जो रामायण पाठ होता, उकर जो प्रसंग होते हैं ना, वो प्रसंग कहीं ना कहीं भैया देखा हो
3: जीवन का राह दिखाई
4: देता, राह दिखावते हैं, उत्साह देते हैं और यह संदेश देते हैं कि भैया चाहे कितना कठिन परिस्थिति होके हौसला कबो
3: नहीं,
4: कि मनई जीवन बा ना, तो मनई का जीवन इतना आसानी से भैया फूल का मार्ग ना मिली हमें,
3: सही बात है, सही बात,
4: मान के चला भैया। देखा हो डॉक्टर हरबंस राय बच्चन जी कहे है ना, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
3: ए भैया, जब हमारे लोग सीधे खेती नहीं करी थी, इतनी चुनौती से जमीन पे बोए के उमा से एक ठू अंकुरित करी थी बीज, इतना कठिन जब काम कर ली थी, तो जीवन आ और यह सब जीवन कर रंग भैया,
4: अग्निपथ भैया एक बढ़िया से शांति और सुकून से उत्साह के साथ जिए खाती जरूरी हो जाता है।
3: हाँ।
4: और यही लिए देखा जो ने कि अपन जो प्रारूप पंचेती का,
3: हाँ भैया,
4: मन देखा जो ना आज के दिन रामायण पाठ भी रखा जाता है।
3: हाँ।
4: तो हम कहीं कि रामायण पाठ बा विजय शंकर तिवारी का,
3: हाँ भैया,
4: तू हूँ सुना और पंचो सुने,
3: बिल्कुल भैया सुनवा हुआ का।
5: आज का प्रसंग काग भुसुंडी और गरुण जी के संवाद पर आधारित रामचरितमानस के उत्तरकांड से है। यह प्रसंग ज्ञान और भक्ति की महिमा को निरूपित करते हुए दोनों के बीच निहित अंतर की व्याख्या करने का प्रयास है। सुनी खगे से हरि भगत बिहाई,

जड़ करनी। हे पक्षीराज, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख बिना जहाज के जीवन रूपी महासमुद्र को पार करना चाहते हैं। सुने भूसुंड के बचन भवानी, बोले व गरुण हरसि मधुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम वर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भूसुंड के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। सुने

चाहते हैं। सुने भूसुंड के बचन भवानी, बोले व गरुण हरषि मधुबानी। तव प्रसाद प्रभु मम वर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भूसुंड के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। सुने

निधि मोहि। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभो, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। काहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोए मुन तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदर हो भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने अपने आप से कहा, परंतु आपने भक्त के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुन और गारी बचन सुख माना, सादर बोले व काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभो, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुण जी के वचन सुनकर सुजान काग सुन जी ने सुख माना और आदर से कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहें कछु अंतर, सावधान सोई सुन विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधानों को सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भाति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष संज्ञक है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला अर्थात माया स्वाभाविक ही निर्बल और जन्म से ही मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक नारहि जो विरक्त मत धीर, ना तू कामी अभिषय बसा विमुख जो पद रघुबीर। पर जो वैराग्यवान धीर बुद्ध पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख। सोई मोने ज्ञान निधान मृग नैनी, विदुमुख निरखे विवश हो ये हरि जानी। नार विष्णु माया प्रगट। विज्ञान के भंडार मुन भी मृग नैनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गुण जी, साक्षात विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट हुई है। यहाँ न पक्षपात कछु राखौं, वेद पुराण संत मत भाषौं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्ना गिरि हरि ते अनुपा। या मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता हूँ, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता है। हे गौण जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानै सबको। माया और भक्ति नारी संज्ञक है। पुन रघुबीर ही भगत प्यारी, माया खलु नर्त की विचारी। माया और भक्त दोनों ही स्त्री वर्ग के हैं, यह तो सब कोई जानता है। फिर भी श्री रघुवीर को भक्त प्यारी, माया बेचारी तो नाचने वाली नटनी मात्र है। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसहि जास उर सदाय अबाधि। श्री रघुनाथ जी भक्त के विशेष अनुकूल रहते हैं, उसी से माया उससे अत्यंत डरती है। इसके हृदय में उपमा रहित उपाधि रहित राम भक्ति बिना किसी बाधा के बसती है। तेहि भी लोक माया सकुचाई, कर न सके।

0: प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगा करके उसे मथे और मथ करके उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल लेवे। जोग यज्ञ करि प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाई। जोग यज्ञ करि प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई बुद्ध सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाई। तब योग रूपी यज्ञ पकड़ करके उसमें समस्त शुभा शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। जब ममता रूपी मल जल जाए तब बचे ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूप ही बुद्धि विशद घृत पाई चित्त दिया भरे धरे धन समता दियट दिखाई। तब विज्ञान रूपी बुद्ध उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पा करके उसमें चित्त रूपी देह को भर करके समता की दीवट बना करके उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेही कपास ते काड़ी तूल तुरी समार पुन बाती करे सुगाड़ी। तीन अवस्था तीन गुण तेही कपास ते काड़ी तूल तुरी समार पुन बाती करे सुगाड़ी। जागृत स्वप्न और सुसुप्त तीनों अवस्थाएं सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकाल करके फिर उसे सवार करके उसकी सुंदर बत्ती बनावे। यही विधि लेप दीप तेजिरास विज्ञान में जाते हैं जा समीप जरा मदातिग सलभ सब। ऐसे विधि ले से दीप तेजिरास विज्ञान में जाते हैं जा समीप जरा मदातिग सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे जिससे समीप जाते ही मद्याद से पतंगे जल जाए।
1: देखा भैया?
2: हाँ भैया देखा। ये रामायण पाठ रहा
1: विजय शंकर तिवारी भैया का पाठी का।
2: और देखा हो कितना अच्छा अच्छा प्रसंग रामायण में बा, रामचरित मानस में बा।
1: सही बात है।
2: हम कहें कि आपन इकुल जो उन ग्रंथ है ना, निश्चित तौर पे मान कर चला कि जीवन के हर पहलू पर हर समस्या का समाधान और ऐसा प्रसंग मिल जाएगी।
1: बिल्कुल भैया, बस हमका आवश्यक है, जरूरत यह है उका समझे का। और जो उन ज्ञानी मुनिजन सब बताए हैं उनका सार समझे कि आखिरों समझावे
2: ये भैया। देखा एक बात और बताई भू, कबो कबो का होता ना कि देखा भाई खेती किसानी में पंच भैया सब आस्था मान तो सब होबे करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो देखा कहीं पूजा होता चाहे रामायण पाठ होता तो एकदम बिल्कुल हाथ जोड़ के एकदम बैठ जाते हैं।
1: हाँ,
2: तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत मन लगा के सुनते हैं कि भैया तनको इधर उधर करब तो भैया देखा हमके दोष पड़ी। मुला एक बात हम कहब कि खाली ये जो शब्द है ना खाली कान में जाए से उतना हित ना हुई जितना कि एकरे हर शब्द के अर्थ के समझा और वो के अपने जीवन में उतार
1: आत्मसात करे कर
2: आत्मसात करे कर।
1: भैया आप एकदम सही बात कहें, हम एकदम साधारण उदाहरण सही से समझाए दे कि वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक भैया कहें कि तोरे खेते में डाले का है यूरिया डाले का समय हो गया है तो आप डाले तो जाए यूरिया ओकरे बजाय जाए दहुआ डिंक डाल दे तो का हुई पूरा बर्बाद हो जाए। यानी जौन चीज आपका आत्मसात करे कर रहा है यूरिया ले जाए डाले के रहा आप ओकरे बजाय जिंक डाल दे तो पता लाग पूरा बउराई गुआ खेत है कुछ पैदा नहीं।
2: जौन भी भाई ज्ञान का बात होत
1: ओका
2: जानकारी का बात होत
1: हाँ।
2: ओके भैया मन से सुने और फिर ओके गुने
1: सही बात
2: तब जो ना फायदा होता और तब बढ़िया होता।
1: एक चीज और मन्नू भैया देखा इसमें मौसम भैया एकदम लगभग लगभग बदल गया है। आज देखा सुबेरे एकदम बदरी बहर खूब पानी बरसे दोपहरिया बड़ी चटक धूप निकली।
2: हाँ देखा अब वो हम का करवाओ चौतरफा है ना कहीं सवेरे होता तो कहीं दोपहरिया में होता तो कहीं संझा का होता लेकिन मुला होत जरूर है बरसात।
1: सही बात है।
2: और देखा ये जरूरी भी होते है समय जब धान का फसल रोपाई जाते ना तब हम कहीं कि इतना भी रिमझिम रिमझिम अगर हो जाए गुहार ना तो उसे अपन फसल का बढ़वार बढ़िया रहा था।
1: सही बात है भैया। और ये बदले मौसम भैया जैसे कि हमारे लोग जो खेती किसानी काम है तो चाहे लड़कियाँ होए घरे गदेला होए चाहे बुजुर्ग होए मेरारू होए सब कोनो खेते में जाते हैं भैया और लगभग लगभग सब देखें भीगिन के लौटा थे अब खेते में समय धान के लोग हैं जा तो बड़ी सावधानी रखे चाहिए भैया कि आप घरे लौटा तो कम से कम पैर वैर धुल लिया कींचा का नहीं जोन तोहरे गोड़े में लाग रहा है अंगूठा से अंगूठा के बीच में माटी भरी रहा है उसका धुल लिया और कोशिश करा कि सरसों का तेल वगैरह बढ़िया होकर भैया लगा लिया ताकि समस्या बीमारी वाली ना आवे फोड़ी फुंसी ना हो नहीं तो इस मौसम में।
2: अरे भैया और तो छोड़

0: हो, अब देखा जो ने कि अभी कल हैं आए भैया, देखा जो ने कि ललन भैया
1: हाँ
0: आए भैया एकदम भीग गए रहे।
1: हाँ
0: हम कहे काहे न रुक गया भैया, तू बरसात उतरा कहीं ठहर गए तो कहे
1: सही
0: नहीं
1: बात,
0: पंचायती में जाए खाती, अब जहाँ ला कि अब जनते हवा पंचायती में आवे खाती,
1: सही
0: तबीयत एकदम
1: बात
0: पूरा
1: है।
0: आकुतान रहत है। अब वो भैया एकदम पूरा भीग गए ना, तो हम
1: बताओ।
0: भैया कहे कि ऐसा करा कि भाई पहले देखा कपड़ा वपड़ा जो कि वो कला बाल वाला अपन साफ कला पूछ ला तो तब सही रही, कहें कि देखा अगर भीग गया कहीं खेती किसानी के काम में तो लोग भीगत ही हैं भैया है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कोनो
1: बिल्कुल,
0: काम लग गए बाहरे गया तो भीगबे करवा।
1: सही बात
0: बोला
1: है।
0: हम कहें कि देखा तत्काल आए के कपड़ा वपड़ा बदल ले है, सूखा कपड़ा पहन ले, साथे साथे बाल बढ़िया से पोछ ले, बाल ना भीगल रहे के चाहिए।
1: सही
0: अब भाई
1: बात
0: हम
1: है,
0: कहें कि तेल उल देखा जो कि लगा हुआ के दुरुस्त रहे जो से कि सेहत बढ़िया रहे अपन।
1: बिल्कुल सही। क्या मन्नू भैया, एक चीज हम कहे चाहब अपने पंच भाइयन से, सबाई से कहे चाहब कि देखा भैया, हम लोग पंचायत में रोज आई थी और आपन बात हम लोग पूरी तरीके से आप सबस करी थी, ऐसी कोनो बात नहीं रहा जो हम लोग छिपाई या ना बताई, चाहे आपका लोक गीत आपके साथे हमका लोग का कहे खो या सुने खो, और चाहे खेती किसानी की बात करे खो। तो हमारे लोग को बड़ा मन होत कि देखा कुछ जने के संदेशा तो आ जाता था, लेकिन बहुत सारे अपन पंच भाई यहाँ जिनकर भैया संदेशा नहीं मिल
0: ए
1: पावत।
0: भैया
1: हाँ
0: हम आने का ना
1: हाँ
0: देखा हम कहीं की जो आकाशवाणी केंद्र बने
1: हाँ
0: एकर जो है कि जितना भी भाई लोग बड़े बड़े लोग प्रशासनिक पद पे बैठा है सब
1: हाँ
0: लोगन के ये चाहत होती है, और सब लोग
1: हाँ
0: ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो जुड़ा जाए, और जुड़ाव तब महसूस हो जब ओहर से भी प्रतिक्रिया आवत है कुछ ना
1: हाँ
0: कुछ
1: एकदम
0: है।
1: सही कहे भैया।
0: तो अब देखा जो ने कि रोजे जो ने कि बातचीत होता कि हाँ जो ने कि प्रतिक्रिया आयल कि ना आयल, हाँ फलाना हाई बात बतौलना धमाका हाई बात बतौलना,
1: सही
0: तो
1: बात
0: पंच
1: है।
0: भैया देखा अगर प्रतिक्रिया अपन व्यक्त करते रही हैं तो निश्चित रूप से कार्यक्रम का आनंद और आई और
1: सही बात है।
0: रोचकता भी एकर बढ़ी। तो हम कहें कि भैया देखा एक बार फिर से बता दा आज फोन नंबर पहले तो।
1: देखा भैया, फोन नंबर बा ऊपर व्हाट्सअप आप लोग कह सकत है, व्हाट्सअप नंबर आकाशवाणी के अटे, आप ऊपर जैसन संदेशा भेजबा हमरे सबके लगे पहुंच जाए। तो सबसे पहले नंबर नोट कर लिया, तो भैया नंबर बा 800-4926-2500। नंबर एक बार और बताई दी
0: हाँ
1: भैया,
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: भैया 800-4926-2500।
0: भैया वही के साथे साथे देखा फेसबुक विभाग आकाशवाणी का
1: हाँ
0: ओहो के भैया देखा पसंद करें लाइक करें ओहो पर अपन जो विचार बा जो टिप्पणी बा ओके व्यक्त करें। और हम कहीं भैया कि देखा हो पंचन भाई से इतना तो नंबर बताए दिया, हमार तो मन ये करत है ना कि जो बताए रहा ना कि दुई ठे लोकगीत सुनवाई है,
1: हाँ
0: तो
1: भैया
0: एक ठे भैया और लोकगीत बा उदय
1: हाँ
0: चंद्र का,
1: अच्छा
0: हम कहीं कि भैया ओहू के पंचन के सुनवाए दिया
1: बिल्कुल
0: जाओ।
1: भैया, बिना कहे तुरंत सुनवाए दे बस।

0: हाँ भैया।
1: देखा भैया, गौनाई तो हो गए, अब हम कहीं कि देखा हो बुन्नी बरसात का मौसम बा तो
0: हाँ हाँ
1: समय से
0: भैया
1: घरे निकल जा,
0: बिल्कुल
1: पंचन से आज्ञा लिया जाए,
0: बिल्कुल भैया।
1: पंचो
0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार।

0: प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रस्तावों में 3 अगस्त से विधानसभा के मॉनसून सत्र, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और विंध्य एक्सप्रेसवे जैसे अहम फैसलों को सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेसवे 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा विंध्य पूर्वांचल स्पर लिंक को भी स्वीकृति दी गई। श्री खन्ना ने बताया कि 3 अगस्त से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे।
1: राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का आगामी सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होकर 6 तारीख तक चलेगा और इसमें सप्लीमेंट्री भी आएगा।
0: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना में इस वर्ष करीब 50,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसमें राज्य के उच्च संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त स्नातक छात्राओं में से शीर्ष 5% छात्राएं इसकी पात्र होंगी।
2: इसमें उच्च संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे, उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
0: उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख वार्षिक से कम होगी। साथ ही छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, वाराणसी में 500 बेड के अत्याधुनिक कामकाजी महिला छात्रावास, अग्निशमन तथा आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25,78,00,000 रुपए के प्रस्ताव, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद ने प्रदेश में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
3: देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार में योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश की नई पहचान बनाई है।
4: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
5: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो

0: कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल अहम बैठक होगी। बैठक में ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप विभिन्न समितियों के पुनर्गठन, मंदिर के सीईओ समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आज प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: भगवान श्री रामलला मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली दूसरी बैठक के लिए इसके सदस्य अयोध्या पहुंचने लगे हैं। बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं कल होने वाली बैठक के मद्देनजर एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी और एडीएम सिटी योगानंद पांडे ने आज बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा के विपणन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसमें 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के 4th दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में 22,315 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हमीरपुर में पिछले 24 घंटों में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: बीते 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही झमाझम वर्षा किसानों के चेहरों में मुस्कान लौटा दी है और मौसम को भी पूरी तरह सुहावना कर दिया है। कुछ दिनों पहले वर्षा के अभाव में किसानों की बोई गई खरीफ की फसल उड़द, मूंग, तिल, अरहर, ज्वार की फसलें सूखने की कगार पर पहुंचने लगी थी, लेकिन मानसूनी वर्षा ने फसलों को जीवंत कर किसानों के चेहरों में मुस्कान लौटाने का काम कर रही है। हालांकि कहीं कहीं जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। शिव कुमार सेठी, आकाशवाणी समाचार, हमीरपुर।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर, कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम में प्रस्तुत है दीक्षा पांडे का काव्य पाठ।
5: मम गीत शीर्षक ग्रीष्म गता वर्षा आयाता। ग्री

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए गार्गी द्विवेदी के स्वर में गीत और भजन। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवा रहे हैं गार्गी द्विवेदी के स्वर में भजन, जिसके बोल हैं भज मन राम चरण।

गार्गी द्विवेदी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम के लिए थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नज़ारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर

सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है।
संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज

0: नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा, तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में ICP शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी

सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।

एहसास की धूप छाओं में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आज है 21 जुलाई और आज के दिन होता है हिंदी सिनेमा के उस गीतकार का जन्मदिन जिसने अपने सरल, सहज और दिल को छू लेने वाले शब्दों से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, आज जन्मदिन है मशहूर गीतकार आनंद बख्शी साहब का। 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में जन्मे आनंद बख्शी ने हिंदी फिल्म संगीत को ऐसे अनगिनत गीत दिए जो आज भी हमारी यादों का हिस्सा हैं। उनके गीतों में मोहब्बत थी, दोस्ती थी, जुदाई थी, जिंदगी का दर्शन था और सबसे बड़ी बात, एक आम इंसान के दिल की सच्ची आवाज़ थी।

आनंद बख्शी साहब के गीतों की यही खासियत थी कि वे बड़े बड़े अल्फाज नहीं चुनते थे, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की भाषा में दिल की बात कह देते थे। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म अमर प्रेम का वो गाना जिसमें जिंदगी का गहरा फलसफा छिपा हुआ है।

आज के चितपट संगीत कार्यक्रम में श्रोताओं, हमने याद किया उस गीतकार को जिनके शब्दों ने हिंदी सिनेमा के गीतों को एक अलग पहचान दी। आनंद बख्शी एक ऐसा नाम जिसने हजारों गीत लिखे और हर गीत में जिंदगी के किसी न किसी एहसास को आवाज दी। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। उनके गीत हमेशा यूं ही हमारे दिलों में गूंजते रहें, हमारी यादों को बहकाते रहें और आने वाली पीढ़ियों को भी मोहब्बत, दोस्ती और जिंदगी के खूबसूरत मायने समझाते रहें।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के

0: आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े

0: विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवारों को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे

0: अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leader.

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है। आबनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलात पर बहस की अपनी पहले की मांग से इन्हराफ करने का इल्जाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अराकीन के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतल्ला किया कि हुकूमत ने मामले पर बहस की मांग कबूल कर ली है। तहम मरकजी वजीर ने कहा कि जब हुकूमत

0: मौकफ से कांग्रेस लीडर को आगाह किया गया है तो जनाब गांधी अपनी पहले की मांग से पीछे हट गए और वो मजीद मुतालबात करने लगे। इस दौरान पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से बार बार रखनांदाजी के पेश नजर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून इजलास के दूसरे दिन बार बार शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी। अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नजर दोनों ऐवानों की कार्रवाई तीन मरतबा मुलतवी की गई। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामलात पर नारेबाजी कर रही थीं। रखनांदाजी के सबब दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर नहीं हो सका। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरों ने एहतजाज कर रहे अरकान से बार बार ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज़ करने का अहद किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। जनाब मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से भी जाना जाता है, खिताब करते हुए ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने मुल्क भर में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक की रोकथाम के सिलसिले में सभी मुतालका फरीकों से मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कल कौमी राजधानी में नीट UG 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान जख्मी हुए लोगों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी गए और वहां दाखिल जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। खुराक को डिब्बा बंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज कहा है कि हुकूमत तालीम के शोबे में इस्लाहात की खातिर अहद बस्ता है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से बात करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सभी शोबों में इस्लाहात की जरूरत पर मुसलसल जोर देते रहे हैं, जिसमें तालीम का शोबा भी शामिल है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी वजारतों में इस्लाहात की जा रही हैं। जनाब पासवान ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो अपनी तामीरी तजावीज पेश करे और बामानी बातचीत में शामिल हो।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत के दौरान ये हुक्म दिया। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और शुमाली मकदूनिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़िराद, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, सियाहत, जियाफत और फिल्म साजी जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने समेत तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर राजी हो गए हैं। सदर जमहूरिया आज स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी हम मनसब गोरदाना डवकोवा से बातचीत के बाद मीडिया से खिताब कर रही थीं।
4: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।

0: सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुश्तरक जमहूरी इकदार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक की है। सदर जमहूरिया ने कुदरती आफात से निमटने के बुनियादी ढांचे, आलमी हयाती ईंधन इतिहाद और बैनुल अक्वामी शमसी इतिहाद जैसी भारत की क्यादत वाली आलमी पहल में शामिल होने के शुमाली मकदूनिया के इरादे का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया ने शुमाली मकदूनिया के अजीम तरीन हीरो गॉडसे डेल्चेव को भी खराज अकीदत पेश किया। शुमाली मकदूनिया का दौरा खत्म करने के बाद सदर जमहूरिया रोमानिया का सफर करेंगी। मध्य प्रदेश असेंबली ने आज अपने मानसून इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया। कांग्रेस सरकार ने बिल को मुंतखबा कमेटी को भेजे जाने की मांग की, लेकिन रियासती सरकार ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के अराकीन असेंबली ने ऐवान के वस्त में एहतजाज किया, जिसके बाद कार्रवाई दो मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कार्रवाई में रुकावट के बावजूद बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। अब बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यकसा सिविल कोड UCC के अहम इल्तजाम के तहत मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी। मर्द और खवातीन को मसावी मौरूसी हकूक हासिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं गांव की सतह पर भी शादियों का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। कबायली बिरादरियों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तामांग गोले ने ऐलान किया है कि नामची जिले में समरदुंग में NHPC हादसे के सिलसिले में एक आला सतही तहकीकती कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के साथ आज हादसे के मकाम का दौरा करने के बाद वजीर आला ने सभी फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह हादसा चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से नहीं बल्कि मीथेन गैस के धमाके की वजह से हुआ हो। अब तक जाए हादसे से 12 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और ऐसा समझा जाता है कि दीगर अफराद अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नामची जिले के समरदुंग में NHPC तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के तहत जेरे तामीर सुरंग में फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी और DGP ने तलाश कार्रवाई के सिलसिले में सीनियर अहदेदारों के साथ नामची में एक जायजा मीटिंग की। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के वजीर आला से बात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जनाब प्रेम सिंह तमांग ने सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के लिए वजीर अजम की सताइश की है। दोनों रहनुमाओं ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज टनल का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मुनासिब जांच इस अफसोसनाक वाकये के सभी हकाइक को वाजह करेगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम हुकूमत मरने वालों के कुंभों को फौरी मदद फराहम करेगी। सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने भी नामची में मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा मीटिंग की ताकि बचाव मिशन को तेज किया जा सके। इस दौरान NDRF की एक और टीम नए आलात के साथ आज टनल में दाखिल हो गई। गैंगटॉक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: ईरान और अमेरिका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिससे स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुर्मुज पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने पाकिस्तान में सालिसकारों के साथ आज मुलाकातें की, जहां सिफारतकार अमेरिका और ईरान के दरमियान टूट चुके आर्जी समझौते को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान के शहर हुर्मुज को निशाना बनाया, जबकि उर्दून, कुवैत और बहरीन से ताज़ा ईरानी हमलों की खबर मिली है। ये हमले अमेरिका ईरान तनाज़े पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदेही करते हैं। भारत ने आज रूसी सिफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमिर लादानोव को तलब किया। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज MV गोल्डन लिव पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें ज़ाय हो गई थीं। वजारत दाखिला ने हमले पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की है और कहा कि इस तरह के हमलों से बैन अलावी बहरी तजारत की हिफाजत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के परुन शहर में तबाहकुन सैलाब में कम अज कम 20 अफराद हलाक हो गए और दीगर 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। तालिबान हुकाम की जानिब से एक बयान के मुताबिक परुन और उसके आसपास के इलाकों में सैलाब के पानी में बहने से 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। कुदरती आफात

0: के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी ने कहा कि नुकसान का जायजा लेने, लापता अफराद को तलाश करने और बचाव इकदाम में मदद की खातिर खसूसी बचाव टीमें तैनात की गई हैं। हुकाम ने ये खबरदार किया कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात खित्ते, मशरकी राजस्थान और वस्ती महाराष्ट्र में अगले दो दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और मगरबी राजस्थान में भी अगले तीन दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले एफआईएच आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी ने मर्दों के 20 मेंबरों का ऐलान किया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की सरबराही करेंगे। दरमियानी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने अपने नए तजुर्बे की बुनियाद पर खेल में दिलचस्प मुजाहिरा करेंगे। भारत इंग्लैंड के साथ पूल डी में रहेगा। पाकिस्तान और वेल्स अपने सभी पूल स्टेज के मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आलमी स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में भारतीय खातून खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन के खिलाफ 11-2, 11-1, 11-3 से जीत हासिल करके अगले राउंड में दाखिला हासिल कर लिया है। मर्दों के जुमरे में आर्यवीर दीवान, यूशा नफीस और गुरवीर सिंह ने पहला राउंड जीत लिया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया है। आमना हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मनी टॉक। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश खिदमत है कार्यक्रम कहकशां। कहते हैं कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है, और जब वही दर्द किसी गजल की शक्ल ले ले तो वो सीधे दिल तक उतर जाता है। मिर्ज़ा गालिब की बेहद मशहूर गजल है, ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मोहब्बत में मिलने की तमन्ना और न मिल पाने का दर्द, इस गजल के हर शेर में एक ऐसी कसक है जो सुनने वालों को अपने ही किसी अधूरे ख्वाब की याद दिला देती है।

बेगम अख्तर की गाई ये गजल अभी आपने सुनी। श्रोताओं, गजल की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ सुर नहीं बल्कि एक पूरी शाम की खुशबू बसी होती है, और ऐसी ही एक आवाज है गुलाम अली साहब की। उनकी आवाज में जब इश्क, जाम, साकी और महफिल का जिक्र होता है तो लगता है जैसे हम किसी पुरानी रूहानी महफिल में आ बैठे हों। अब आपको सुनवाते हैं ऐसी ही दिलकश गजल जिसमें साकी की मस्त निगाहों का असर है, मोहब्बत की खुमारी है और दिल को छू लेने वाली एक मीठी सी कैफियत है।

मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसमें मिलने की खुशी भी है और बिछड़ने का दर्द भी। कभी किसी से मिलना जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है, तो कभी वही मुलाकात दिल में एक ऐसी कसक छोड़ जाती है जो उम्र भर साथ रहती है। इसी एहसास को बेहद खूबसूरती से बयां करती है कार्यक्रम की अगली गजल। दर्द, तन्हाई और मोहब्बत की गहराई को अपनी पुर असर आवाज में पेश किया है मशहूर गजल गायक तलत अजीज साहब ने। सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

मोहब्बत में कभी किसी की एक नज़रे करम दिल को खुशियों से भर देती है और कभी किसी की बेरुखी दिल को तन्हाई के हवाले कर जाती है। इश्क के इन्हीं नाजुक एहसासों को जब शायरी का लिबास मिलता है तो एक खूबसूरत गज़ल जन्म लेती है, और जब इस गज़ल को अपनी मखमली और पुर असर आवाज़ में गाते हैं गज़ल सम्राट जगजीत सिंह, तो हर शेर सीधे दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। आइए मोहब्बत की इन्हीं खूबसूरत एहसासों में कुछ पल के लिए खो जाते हैं और सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये दिलकश गज़ल, जिसमें मोहब्बत भी है, शिकायत भी है और

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही कहकशा कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
1: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं नमित राज, और प्रस्तुति है आकाशवाणी नजीबाबाद की। कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको सुनवाएंगे 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भारत की ओर से प्रतिभाग करने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष कुमार से भेंटवार्ता, और साथ ही आप सुनेंगे इस हफ्ते के प्रमुख खेल समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का ये सफर बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों के साथ। खेल समाचारों की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले गए फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप की ट्रॉफी जीत ली है। रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में निर्णायक गोल दागा स्पेन के फेरान टोरेस ने। वहीं स्पेन के कप्तान रोड्रिगो पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। गोल्डन बूट का खिताब फ्रांस के किलियन एम्बापे को दिया गया, जिन्होंने टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 10 गोल दागे। तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फ्रांस ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार के विश्व कप में पहली बार कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया, जो अब तक के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला को इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम किया। श्रृंखला का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला गया, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी और 27 रनों से ये मुकाबला हार गई। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार 138 रनों की शतकीय पारी खेली। इस मैच में हरफन मौला खेल दिखाने वाले जैकब बेथेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने 91 रन बनाने के साथ एक विकेट भी लिया। वहीं जो रूट को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान जापान की स्टार खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराकर पहली बार जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। 31 वर्षीय पीवी सिंधु इस जीत के साथ ही जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। इस बार की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित होगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस 30वें संस्करण में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी 5 श्रेणियों पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 2009 के बाद पहली बार भारत में वापसी कर रहा है। भारतीय दल में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के नेतृत्व में 10 भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। अगली खबर बॉक्सिंग से। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियन अंडर 19 एवं अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते। भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते। 51 किलोग्राम भार वर्ग में चंद्रिका भोरेश पुजारी और प्राची ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं अंडर 23 महिला वर्ग में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। वहीं पुरुषों में स्वर्ण पदक विजेता रहे 50 किलो भार वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और मुक्केबाज गंगा ने 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।

0: बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी, जबकि सोर्ड मराइन मुख्य कोच की भूमिका में रहेंगे। विश्व कप के लिए उसी टीम को चुना गया है जिसे कुछ दिन पहले एशियाई खेलों के लिए चुना गया था। कुश्ती में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक अपने नाम किए। भारत ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। भारत के लिए अमन सहरावत ने 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं में नेहा सांगवान ने 59 किलो और काजल ढोचक ने 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा अंतिम पंघाल, मानसी अहलावत और हंसिका लांबा ने अपने अपने भार वर्ग में रजत पदक जीते। साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इन खेलों में 126 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों को जानने के बाद आइए कार्यक्रम खेल दर्पण के इस अंक को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहले भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और फिर खेल के मैदान में देश का गौरव भी बढ़ाया। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं तरुण सहरावत। मैं एक नजुवाद तहसील के एक छोटे सा गांव पड़ता चमरौला
0: जी,
1: मैं उसका निवासी हूं। और मेरे फादर मुझे MBBS कराना चाहते थे। अब मेरी रुचि क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्षेत्र कंपटीशन था एथलेटिक्स का, तो महावीर PTI जी थे एक हमारे, तो मैं बोला सर मैं भी खेलने जाऊँ। बोला नहीं नहीं पढ़ाई करो।
0: अच्छा।
1: मैं चला गया। अगले दिन मैं चुपचाप वहाँ जहाँ कंपटीशन होता वहाँ गया
0: जी।
1: तो मेडल तो नहीं आया वहाँ, कोई प्लेस नहीं आई, मगर PTI ने मुझे देख लिया, बोला इधर आ तू। मेरे 2-3 रैपट उसने साहब मारे।
0: अच्छा।
1: बस उसी टाइम ही पता नहीं क्या हुआ, मन ये किया कि अब मैं करके दिखाऊंगा। गांव में नहर थी, नहर पर प्रैक्टिस करता था मैं
0: जी।
1: नहर पर प्रैक्टिस कर करके मैं अपना जिला स्तर का कंपटीशन खेला, वहाँ मेडल आए। फिर मंडल स्तर 4 जिलों में खेला, वहाँ मेडल आए। तो ललक ये थी कि बस इंडिया खेलना। उस टाइम पर PTU से भागती थी
0: जी। अच्छा, उस समय आपकी उम्र क्या थी?
1: छोटा था, 6 क्लास में था।
0: 6 क्लास में थे आप, और 6 क्लास में आपने PT उषा।
1: हाँ,
0: PT उषा को देख के शुरू
1: हाँ,
0: किया था।
1: हाँ, PT उषा जी थी, उनके मेरे पापा उनकी कहानियाँ सुनाते थे
0: जी।
1: तो बस यही उन्हीं की देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। और एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, कोच नहीं मिला, फिर भी मैं हौसला नहीं छोड़ा। स्टेट चैंपियन में गए, वहाँ से मैं फिर जूनियर नेशनल में मेडल दिया
0: जी,
1: उसमें गोल्ड था। फिर यूनिवर्सिटी आया खेलने के लिए, जब इंटर हो गया वहाँ से मेरा सिल्वर मेडल था।
0: तरुण जी, खेलों की दुनिया से निकल के आप सेना में भर्ती हुए
1: जी,
0: ठीक है, तो जो सेना का अनुशासन था
1: जी,
0: वो कितना काम आया खेलों में?
1: सर, जब हम फौज के अंदर गए तो कुछ थोड़ा सा ऐसा था कि यार इनडिसिप्लिन टाइप रहता सिविल आदमी। जब हम वहाँ गए, हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग भी किया
0: जी,
1: और ट्रेनिंग में ये पता चला कि यार ये जो हम एक डिसिप्लिन में बॉडी रखते हैं, ये हमारे माइंड को भी फोकस करता, हमारी बॉडी को भी फोकस करता। तो डिसिप्लिन तो मस्ट है, उसके बगैर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते।
0: अच्छा, जैसे सेना में आप थे तो एक तो सेना की ड्यूटी होगी, एक आप खेल भी खेल रहे थे, तो दोनों को मैनेज कैसे करते थे?
1: ड्यूटी तो कभी कभी देनी पड़ती थी।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, और कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि मेरा स्पोर्ट्समैन अगर ड्यूटी देगा ज़्यादा तो फिर प्रैक्टिस में मेडल नहीं ला पाएगा। फिर भी ऐसा नहीं था कि हम फ्री सो रहे थे, हम ड्यूटी भी देते थे। कुछ ऐसी ड्यूटीज थी जो हम कर सकते थे, और हमारे जो बड़े सीनियर थे, कोचेस थे, उन्होंने यही सिखाया था कि यार कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा तो
0: खोना पड़ता जी।
1: तो ये चीज़ें तो नॉर्मल थी कि ड्यूटी वगैरह ये तो नॉर्मल हो जाती है, मगर एक मेडल लाने के लिए जो हमारा संघर्ष था वो कड़ा था।
0: बिल्कुल
1: जी, उसमें डाइट फोकस हो जाता, उसकी मेहनत हो जाती, कभी कभी ऐसा होता कि इंजरीज आ जाती हैं, कभी हैमस्ट्रिंग खिंच जाना, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाना, तो उससे क्या होता था, डिस्टर्बेंस तो होता था एक खिलाड़ी को।

0: आपने तरुण जी इंजरीज के बारे में बात की,
1: जी
0: चोट भी लग जाती है,
1: जी
0: तो ऐसे में हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा वीक कहीं ना कहीं होने लगता
1: बिल्कुल
0: है,
1: सर।
0: तो उससे कवर अप कैसे करते हैं अपने आप को?
1: सर जब एक स्पोर्ट्समैन को इंजरी हमें भी हो जाती है,
0: जी
1: और होता क्या है कि हम लोग एक्स्ट्रा कर जाते हैं कुछ वर्क,
0: अच्छा
1: जैसा अभी हैमस्ट्रिंग खींचने का मैटर हो जाता है कि भैया तुमने उस पर ज़्यादा लोड कर दिया इसलिए वो खींची। और एक कोई भी मसल खींचने के लिए कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन लगते हैं सही होने के लिए।
0: जी
1: हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं तुरंत एकदम, यार मेरा कंपटीशन आ गया। मैं भी स्पोर्ट्समैन होता क्योंकि वो मेहनत करने वाला बंदा होता है, रेस्ट कैसे करे,
0: बिल्कुल।
1: अंदर से इतना दर्द होता है कि वो जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ होता
0: अच्छा,
1: रहता है।
0: एक चीज़ और होती है कि जैसे एक तो अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें अगर बीच में ब्रेक हो गया 10-5 दिन का, तो
1: जी
0: वो भी बड़ा फर्क
1: बहुत
0: हो
1: सर,
0: जाता है।
1: वो फर्क इतना पड़ता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग 10 दिन छूट चुकी है
0: हाँ
1: तो हम 3 महीने पीछे चले जाएंगे।
0: बिल्कुल
1: उस बॉडी को कवर करने के लिए हमको कम से कम नहीं तो 15-20 दिन तक लगना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे अपनी उस जर्नी की जब तक आप सेना में रहे,
1: जी
0: तो रिटायरमेंट क्यों लिया था?
1: सर, इसका एक मेन कारण ये था कि जब मैं कभी इंडिया लेवल या फिर बाहर खेलने जाता था तो अपने
0: जी
1: क्षेत्र का बच्चा बड़ा कम निकलता था।
0: अच्छा
1: तो मुझे ऐसा लगा यार, मैं अगर मेरी सर्विस पूरी हो गई है, पेंशन मेरी मिलने लगी है,
0: जी
1: तो यार मैं चलता हूँ और अपने क्षेत्र के बच्चों को निकालने का काम करूँगा।
0: अच्छा
1: जी मैंने उसी के खातिर NIS किया, योगा कोर्स किया, न्यूट्रिशन का कोर्स किया कि मैं एक जब बच्चों को सिखाना जाऊँ तो मेरे पास सब कुछ हो जो प्रॉपर मैं उसको फेस करा सकूँ।
0: NIS का आपने जिक्र किया, NIS के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना
1: जी
0: चाहेंगे।
1: सर, NIS होता है एक अच्छा कोच बनाने के लिए।
0: अच्छा
1: उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि आपका कई सारे इवेंट मिलते हैं उसमें, जो एथलेटिक्स के, जैसे एथलेटिक्स वाला NIS कर रहा है या फिर कुश्ती में कर रहा है या फिर किसी और इवेंट में कर रहा है, अलग
0: जी
1: अलग इवेंट के अलग अलग होते हैं। वहाँ पढ़ाई होती है पूरी तरीके से, कैसे हम बच्चों को फेस करा दें।
0: अच्छा
1: हाँ, 0 से बिल्कुल एकदम, जब लास्ट में 1 साल हो जाता है, टेस्ट होते रहते हैं बीच में, 1 साल का होता है, या पटियाला होता है, ग्वालियर होता है, कोलकाता में भी होता है। तो मैंने जो किया था वो पटियाला किया था।
0: अच्छा
1: पढ़ाई भी बढ़िया होती है वहाँ, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हर एक टेस्ट को पास करना पड़ता
0: जैसे आपने कहा कि जो खेलों में प्रशिक्षण देना चाहते हैं
1: जी।
0: उनके लिए ये कोर्स होता है,
1: यस
0: तो कौन अप्लाई कर सकता है इसमें,
1: सर,
0: कौन?
1: अभी तो इसमें कैटेगरी रख दिया कि आपका नेशनल में मेडल होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
0: अच्छा,
1: जी
0: मिनिमम क्वालिफिकेशन
1: हाँ,
0: नेशनल
1: नेशनल में
0: का।
1: मेडल,
0: जी
1: या फिर आप कोई ऐसा ओपन नेशनल खेल रहे हो जो हाई लेवल की गेम है और आपका मेडल भी नहीं आया, क्वालिफाई भी कर जाए तो भी आप खेल सकते हो।
0: अच्छा
1: इसके लिए शॉर्ट भी है, 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स भी है NIS का, आप उसको कर सकते हो, उसमें भी प्लेटफॉर्म है।
0: यानी जो प्रशिक्षण वहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं इनका भी फिटनेस टेस्ट
1: बिल्कुल
0: होता
1: सर,
0: होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा, इस दौरान ही आपका जो ये खिलाड़ी वाला सफ़र था, जो आप
1: जी
0: बाधा दौड़ के प्लेयर हैं, तो ये भी चलता रहा कंटिन्यू
1: यस
0: साथ में,
1: जी
0: तो थोड़ा सा वहाँ का अनुभव हम जानना चाहेंगे कि आपने
1: जी
0: एशियन गेम्स में परफॉर्म किया और वहाँ पे सिल्वर मेडल आपको प्राप्त हुआ,
1: जी
0: कैसा लगा ये उपलब्धि पाकर?
1: सर, मैं जब खेलने के लिए गया तो अनुभव ये रहा कि मैंने ये देखा कि यार हमारे इंडिया से बाहर का कंट्रीज का, वहाँ एक तो टेक्निकल फेस ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, और दूसरा वहाँ के कोच अव्वल दर्जे के हैं। हमारे इंडिया में भी हैं बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या ना कि माहौल नहीं मिल पा रहा,
0: अच्छा
1: दूसरा ट्रैक नहीं मिल पा रहा किसी फील्ड पे जाने के लिए। अभी मैंने एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ओपन किया है
0: जी
1: जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस एथलेटिक्स की, एथलेटिक का फिजिकल फिटनेस होती है वहाँ।
0: अच्छा
1: जब आप अच्छे लेवल का फिजिकल फिटनेस करोगे तभी तो किसी गेम में जाओगे,
0: हाँ बिल्कुल
1: उसका टेस्ट होते रहते हैं स्किल टेस्ट, स्पोर्ट्स के, रनिंग के हों चाहे फिर किसी भी चीज़ के हों, तो फिर डिसाइड होता है कि भैया इसको इस गेम में उतारा जाए, 100% रिजल्ट देगा।
0: तो क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप वहाँ, क्या क्या कराते हैं बच्चों को?
1: सर मैं वहाँ बच्चों को एथलेटिक्स का ऑल गेम कराता हूँ,
0: जी
1: जितने भी गेम हैं, चाहे वो जैवलिंग हो, लॉन्ग रेस हो, 100 मीटर हो, हर्डल्स हो, या फिर लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, सबका हम बढ़िया से उनको
0: जी
1: इवेंट वाइज जो प्रैक्टिस कराते हैं। दूसरा, फिजिकल फिटनेस बहुत अव्वल दर्जे का, हम लोग उनको भी ट्रेनिंग देते हैं जो अभी फिजिकल फिटनेस की तैयारी

0: कर रहे हैं, जैसे पुलिस की हो गई
1: अच्छा,
0: या आर्मी की हो गई, उनको भी तैयार करते हैं। हाँ, जो बड़े बच्चे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे हैं जो अभी स्टेट खेलने जा रहे हैं, या जिला स्तर में गोल्ड मेडल है, जो स्टेट में मेडल है, नेशनल की तैयारी भी कर रहे हैं, उस टाइप के बच्चे भी हमारे पास हैं।
1: आगामी अगस्त में
0: जी
1: आपका सिलेक्शन हुआ है दक्षिण कोरिया में
0: जी
1: वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी?
0: सर, काफ़ी ज़्यादा तैयारी उसके लिए मेरी, और कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे में वर्क कर रहा हूँ सर।
1: अच्छा।
0: हाँ, बिजनौर हमारा भी कच्चा ट्रैक है, वहाँ से मुझे स्पीड वर्कआउट करने के लिए, हर्डल्स पे वर्कआउट करने के लिए मैं हरिद्वार जाना पड़ता है मेरे को,
1: अच्छा।
0: हफ्ते में 3 डेज़। एक सेक्शन मैंने रखा इवनिंग का, मैं यहाँ से बिजनौर से 11 बजे निकलता हूँ, और फिर हरिद्वार थोड़ा रेस्ट करके, और फिर मैं ट्रैक पर 3 बजे या 4 बजे जाता हूँ, 8 बजे मैं वर्कआउट करके फिर वापस आना पड़ता है बिजनौर।
1: अच्छा, ये डेली को डेली का
0: हाँ,
1: रूटीन
0: हफ्ते
1: है
0: में
1: आपका,
0: 3 दिन।
1: हफ्ते में 3 दिन।
0: जी,
1: अच्छा।
0: और उसमें क्या ना, देखो ऐसा ना, स्पोर्ट्स में पैसा बहुत खर्च होता है भाई, बहुत ज़्यादा। आपके शूज़, आपके स्पाइक्स, आपकी किट महंगी आती हैं बहुत, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं हमारे पास
1: जी।
0: कि उनको डाइट नहीं मिल रही, मैं खुद प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि उनमें टैलेंट है।
1: जी
0: तो हम यही चाहते हैं कि जो बच्चा जिला स्तर में या फिर मंडल स्तर में मेडल आता है स्टेट स्तर में, उनको कम से कम ये तो हो कि हाँ भाई डाइट प्रोवाइड करा दो, क्या क्या खाना, जैसे एक साईं की डाइट चलती है प्रॉपर फेस में, उनको दिलाओ, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रैक अच्छा होना चाहिए।
1: सही बात है। प्रतिभा देखिए हर क्षेत्र में है, लेकिन सही गाइडेंस की
0: यस
1: ज़रूरत है और सही
0: जी
1: सुविधाओं की ज़रूरत है। एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी अभी आ रही है कि जैसे आजकल बच्चे स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं
0: जी
1: खिलाड़ी, तो वो कितना सही है और उसके क्या प्रभाव
0: जी
1: पड़ते हैं बॉडी पे?
0: सर, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है,
1: जी।
0: मैं भी सोचने वाला था, इसको बताने वाला था। ये जो एक अभिशाप है स्पोर्ट्स में, हमारे बच्चे जो ये स्टेरॉयड वगैरह ले रहे हैं ना, दे कौन रहे आप, पहले तो ये जो स्टेरॉयड, अगर ये सक्सेस होता तो भारत सरकार क्यों बंद करती इसको? ये एक ऐसा नशा है, ये ऐसा पॉइजन है जो हमारे स्पोर्ट्स को ख़त्म कर रहा है।
1: खत्म कर रहा
0: जी, तो ये बहुत गलत है और मैं इसके हमेशा विरोध में खड़ा रहूँगा
1: है।
0: कि ना हो। अच्छी अपनी डाइट खाओ, घर का खाना बहुत अच्छा खाओ, ट्रेनिंग स्मार्ट तरीके से करो।
1: जी, तो बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। जड़ पे काम करना ज़रूरी है। कोई भी समस्या तभी ख़त्म हो सकती है जब हम उसकी
0: बिल्कुल
1: जड़ पर काम करें।
0: जी
1: एक लास्ट
0: जी
1: क्वेश्चन
0: जी जी
1: और मैं लेना चाहूँगा कि जैसे हमारा क्षेत्र बिजनौर है,
0: जी
1: छोटा ज़िला है
0: नहीं
1: और प्रतिभा की कमी नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: तो अपने यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को क्या गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप?
0: मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को यही गाइडेंस देना चाहता हूँ भाई कि गलत राह पर चलो मत, और भैया मेहनत करो। अभी कुछ देर पहले सर बोल रहे थे स्टेरॉयड का, उसे तो यूज ही मत करो, उसको यूज करोगे आपके फेफड़े, आपके लीवर, ये सब खराब हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, मेहनत करो, बस शॉर्टकट कुछ भी नहीं है सर। साथ में मैंने एक चीज़ और ऐड की है, हमारा जो यूथ है वो गलत ट्रैक पर जा रहा है, तो मैंने उस यंग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहा हूँ, और हर गांव-गांव जाके
1: अच्छा।
0: पेरेंट्स को समझाया जा रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ, तो इस चीज़ का फेस कर रहे हैं। दूसरी बात ही जो अभी बताई थी हमने कि भैया स्टेरॉयड नहीं लेना, उस पर भी हम विचार करते हैं और घर वालों को भी समझाते हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बच्चे जो हैं, माँ बाप परेशान हैं उनसे कि यार
1: जी
0: हमें सुनते नहीं हैं।
1: जी मतलब ये ऐसे युवाओं की बात आप कर रहे हैं कि जैसे
0: यस
1: जो एक तो बेरोजगार हैं,
0: हाँ
1: पढ़ाई
0: यस
1: लिखाई कम की
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: और ज़्यादातर नशाखोरी की तरफ बढ़
0: यस
1: रहे हैं।
0: यस। अगर हमारा यूथ सही चलेगा, हमारा समाज बदलेगा, हमारा जो समाज की ग्रोथ बदलेगी, सभ्यता चेंज होगी, हमारे अगली पीढ़ी मजबूत होगी।
1: अगली पीढ़ी मजबूत होगी।
0: जी
1: बिल्कुल सही आपने
0: जी
1: बात की, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्रिमिनेलिटी भी बढ़ेगी।
0: यस बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: तरुण जी, आपने सेना में रहकर देश की सेवा की, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन किया और अब नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने का काम कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामना है कि आपके मार्गदर्शन में और भी प्रतिभाएं आगे आएंगी और देश का गौरव बढ़ाएंगी।
0: धन्यवाद सर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए अब आपको सुनवाते हैं नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भाग लेने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष कुमार से भेंट वार्ता। श्रोताओं, कार्यक्रम खेल दर्पण में आज हमारे साथ हैं युवा कबड्डी खिलाड़ी तनिष। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है तनिष।
2: धन्यवाद सर।
1: तनिष, भारत और नेपाल के बीच में

0: द्विपक्षीय सीरीज हुई थी कबड्डी की, उस कबड्डी टीम के आप प्लेयर हैं। लेकिन सबसे पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रो चाहेंगे।
1: सर, मैं मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज नजीबाबाद जिला बिजनौर का स्कूल का छात्र हूँ। मैं फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ। मुझे 8th क्लास से ही कबड्डी खेलने का शौक हो गया था। स्कूल में बहुत से लड़के कबड्डी खेलते थे, जो शुरू में हमें डर लगता था कब होती कि मेरी पैर हाथ नहीं टूट जाए, डर लगता था इस वजह से। फिर जब मैं उसमें फोकस करा तो फिर मेरा डर भागा। फिर हमारे स्कूल में GIC वर्सेस MDS के स्कूल के टीम का मैच हुआ और हमने उसमें पहला स्थान पाया। जब से मुझे बहुत शौक लगा कबड्डी खेलने का।
0: अच्छा तनिष, कबड्डी खेलने का आपको शौक है और आपने, जैसा आपकी बातों से लग रहा है, कि स्कूल लेवल से आपने शुरू किया और 8th क्लास से शुरू किया। तो ये जो द्विपक्षीय सीरीज हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, तो इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए।
1: सर, मैं अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ। मेन कबड्डी प्लेयर मेरा दोस्त विवेक है,
0: अच्छा
1: तो उसने मुझे बताया हापुड़ में ट्रायल चल रहे हैं।
0: जी।
1: वहाँ पर एक कोच थे अरुण कुमार सर, उन्होंने ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन के होने के बाद मेरा इंडिया वर्सेस नेपाल के लिए सिलेक्शन हुआ। मैं राइट कॉर्नर रहा हूँ।
0: तनिष, टूर्नामेंट में जैसे हम गए नेपाल, तो आप पहली बार इंडिया से बाहर गए होंगे,
1: यस सर।
0: कैसा महसूस हुआ?
1: सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इंडिया में पहली बार गए, इंडिया से बाहर जाते ही जब बॉर्डर से गुजर रहे थे, कुछ अलग सी फील आ रही थी सर।
0: अलग सी फील आ रही थी, डर भी लग रहा होगा।
1: जी सर जी।
0: अच्छा, इस टूर्नामेंट में कितने मैच हुए थे दोनों टीमों के बीच में?
1: सर 2 मैच हुए थे, बस 3, सॉरी सर, तीन
0: तीन
1: तीन
0: मैच हुए
1: जी,
0: थे।
1: जिसमें 2 मैच जियो जी जाती है उसका फाइनल था।
0: अच्छा,
1: जी सर
0: यानी 2 मैच नेपाल ने जीते और एक
1: जी
0: मैच
1: जी
0: इंडिया
1: सर
0: ने जीता। अच्छा, कबड्डी का आपको शौक है
1: जी सर
0: तनिष, तो आपने बताया कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को और कबड्डी को कैसे मैनेज करते हैं?
1: सर सुबह में मैं रनिंग करने जाता हूँ, जो कि मेन है कबड्डी के लिए,
0: जी।
1: कि जिसकी वजह से सांस ना फूले। 40 मिनट का गेम होता है कबड्डी का। और शाम को 5 बजे के समथिंग मैं अपने ग्राउंड पे जाता हूँ। ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता हूँ 3 घंटे। 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद शाम को करीबन 9 बजे से लेके 10, 10:30 बजे लोग पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी कोच के अंडर में कर रहे हैं?
1: सर कोच के अंडर में मैं JD अकेडमी में करता था, पर अभी गर्मी की वजह से मैं यहाँ पर नोएडा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जैसे घर पे ही कर रहा हूँ।
0: तो कहाँ देखते हैं अपने आप को आगामी जो 1-2 साल में अपने आप को, क्योंकि अभी आपकी उम्र काफ़ी कम है तनिष, तो आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
1: सर बस इंडिया की तरफ से खेलने का सपना है मेरा सर, इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है।
0: इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है। चलिए, थोड़ा सा हम अपनी बात को आपकी पर्सनल लाइफ से जोड़ते हैं। देखिए, जो भी श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं तनिष,
1: जी
0: तो वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि खिलाड़ी ने कौन सी उपलब्धि हासिल की, वो जानना चाहते हैं कि उसके पीछे की मेहनत आपकी कैसी रही। तो जब आपको पता चला कि आप द्विपक्षीय सीरीज जो नेपाल के साथ इंडिया की हुई उसमें आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो उसके बाद तैयारी के लिए कितना वक्त मिला था आपको?
1: सर, मुझे करीबन 1 महीने के समथिंग मिला था, जिसमें मैंने अपने पूरे 100% दिया। सुबह भी शाम भी प्रैक्टिस कर रहा था मैं। फिर मैंने सर थोड़ी सी टाइम के लिए पढ़ाई रोक दी थी।
0: अच्छा।
1: जी सर, फिर मेरे क्लास टीचर बोल रहे थे तो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ये है वो है। मैंने सर अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस चल रहे हैं, सर ने चलो कर लो। हमारे PTI सर हैं आलोक सर, वे भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए।
0: अच्छा, तो पूरी तैयारी की, आपको 1 महीने का समय मिला, उसका पूरा आपने सदुपयोग किया
1: जी
0: और
1: सर
0: जी जान मेहनत की। अच्छा, इसके अलावा, जैसे ये तो एक टूर्नामेंट की बात रही, इसके अलावा आपने कुछ मंडल स्तर पे खेला हो या नेशनल
1: जी सर
0: वगैरह
1: जी
0: खेला हो?
1: हाँ सर, हमारे स्कूल से स्कूल की टीम गई थी सर, वहाँ से किरतपुर, किरतपुर से नांगल जट, नांगल जट से अमरोहा, अमरोहा में जाकर मंडल स्तर खेलता है अमरोहा में, तो अमरोहा में जाकर अमरोहा की टीम फाइनल हुई थी। पर उसमें मेरा सर सिलेक्शन हुआ था, पर वहाँ पर कुछ ऐसा कारण हुआ कि मैं जा नहीं पाया।
0: मंडल स्तर के लिए।
1: जी
0: अच्छा तनिष, जैसे देखिए कबड्डी का जो ये गेम है,
1: जी
0: इसमें चोट भी काफ़ी लगती है,
1: जी सर
0: तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब इतनी ऐसी चोट लगी कि आपने सोच लिया छोड़ ही दूँ कबड्डी
1: जी
0: को?
1: सर इंजरी की बात मैं स्कूल में ही बता रहा हूँ। मैं स्कूल में बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहा था।
0: अच्छा।
1: जी सर, तो मेरे गोड में इंजरी आई थी बहुत तकड़े वाली, तो मैंने ये तक बोल दिया था आज के बाद कबड्डी नहीं खेलूँगा। फिर
0: अच्छा।
1: सर 3 दिन बाद फिर दोबारा खेलने चालू कर दी। फिर 3 दिन बाद जिन बच्चे ने मेरी इंजरी कर दी थी, उन बच्चों के ऊपर ही टैकल पॉइंट करे मैंने।
0: बहुत बढ़िया। तो ये होता है कि इम्प्रूवमेंट हमारा, कि इंजरी को हमने बहाना नहीं बनाया कोई, और उससे हम उबर कर वापस आए। एक बात मेरे जहन में अभी आ रही है कि कबड्डी ही क्यों?
1: सर कबड्डी शुरू से फेवरेट स्पोर्ट्स है। छोटा सा था मैं सर, करीबन मान के चलो 9 साल तक का, तो मेरी एक दीदी है वहाँ पर, तो उनके समूह के संथिंग जो ना मैं सानपुर, ये यहाँ
0: जी
1: पर कबड्डी खेलना,
0: जी
1: यहाँ
0: जी
1: से
0: जी
1: ही फर्स्ट आया था प्राइस मैंने।
0: अच्छा।
1: जब से और भी ज़्यादा लगन लगी, फिर स्कूल में कबड्डी खेलने लगी।

0: तो इसलिए आपका इंटरेस्ट कबड्डी में
1: जी
0: है। तो परिवार का कितना सपोर्ट है इसमें?
1: सर, परिवार का भी सपोर्ट है, पर घर वालों को भी डर लगता है कि कहीं बच्चा चोट फिट ना खा ले, इसलिए पापा भी थोड़ा मना करते थे कबड्डी मत खेलो, पर मैंने फिर भी छुप छुप के खेली।
0: अच्छा, एक कबड्डी का प्लेयर होने के नाते अगर मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल करूं, कबड्डी में अगर कोई सफल होना चाहता है बच्चा, तो क्या चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा?
1: सर पहले फोकस करना, कबड्डी पे फोकस करो और अपनी मेहनत में लगे रहो, ये मत सोचो कि मेरे से खेल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा जब मेहनत करते रहेंगे, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है सर।
0: कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि लंबाई में ज़्यादा होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, तो लंबाई का कितना फ़ायदा मिलता है?
1: सर लंबाई के लिए एक तो रेडर ही फ़ायदा देता है, क्योंकि ग्राउंड अलग अलग टाइप के होते हैं, सीनियर का ग्राउंड लंबा होता है, जूनियर ग्राउंड छोटा होता है, तो रेडर का फ़ायदा लंबाई से बहुत ज़्यादा होता है
0: अच्छा,
1: कि रोकना मुश्किल हो जाता है रेडर को।
0: रेडर को
1: जी
0: यानी लंबाई का कहीं
1: जी
0: थोड़ा सा
1: सर
0: इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है
1: जी
0: खेल
1: जी
0: पे।
1: सर जी
0: अच्छा, थोड़ा सा हम बात बारे में करेंगे कि जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं इसका, वहाँ पे क्या कैसा माहौल रहता है, किस तरह से सिखाते हैं कोच? जैसे सपोज़ आप यहाँ पर थे, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कबड्डी के बारे में आपको नहीं पता होंगी, तो वहाँ पे जाके आपका अनुभव कैसा रहा, कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, स्ट्रेटेजी सीखने को मिली?
1: सर कोच हमारे मतलब हर चीज़ बताते थे, मुझे जो ना राइट कॉर्नर पर चैन मारने नहीं आते, जैसे बोलते हैं कि रेडर को रोके कैसे जाए, मतलब कवर कवर की कोई गलती नहीं होती, कवर को दिखाना दिखाना होता है, तो उन्होंने मुझे ये भी सिखाई कैसे लगती है, अपने हाथ से हाथ पकड़ के सिखाई, माई बेस्ट कोच मैं उन्हें मानता हूँ सर।
0: अच्छा, एक बेहतर कबड्डी प्लेयर बनने के लिए और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जो मतलब आप सोचते हैं कि
1: सर
0: एक एक खिलाड़ी को मिलनी ज़रूर चाहिए?
1: सर कबड्डी प्लेयर को तो ऐसी बात है सर, डाइट पर अपना फोकस देना चाहिए, क्योंकि ये खेल जान गई है, जब वो शरीर में जान नहीं होगी तो बेकार है खेलना।
0: तनीष, आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा। आपने आज बताया कि आपकी उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन देखिए सपने बड़े होने चाहिए श्रोताओं, तो इसी तरह मेहनत करते रहिए। तनिष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। आलेख एवं वाचन स्वर नमित राज का था और प्रस्तुतकर्ता थे अंकित सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र पर तैयार हुआ और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: खेल दर्पण।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन। राग है हमीर।

अभी आपने सुना पंडित नारायण राव व्यास का राग हमीर में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं